0: We used to, go everywhere together, and all the friends in our class, they all used to come with their spouse. Sir, main aur Jairam akele the, so all friends telling me that why can't you think it over and why can't you come forward? And with the permission, I should say, with the permission and agreement of our children, both, his children and my children, we are staying together and running our life together. And it's my second life, what I've got, and it's a beautiful life.
1: Beautiful, beautiful. I must say, ma'am, I must say, and friends, did you listen to it? It really doesn't matter whatever goes on in our life. We should keep on going. And more important thing is happily. We should be contented. We should be happy. We should be peaceful. So Sita ma'am has told her story, which is quite beautiful, quite peaceful. Okay, I mean, this is quite modern and, you know, quite, I must say, encouraging for a number of people who are actually sulking in their skins. Ki kya hai, hamari zindagi khatam ho gayi, abhi kya karna hai, bas upar wale ke paas jane ka intezaar karte hai. I don't know, I mean, personally, mere ko ye cheez zyada jamti nahi hai. Well, kisi ki bhavnaon ko main chote hi pahuncha sakta, phir bhi, zindagi ko jeene ka naam hai. चलिए सीता मैम, हम जिस विषय में बात करने आए हैं उसको शुरू करते हैं. आजकल लोग धर्म और आध्यात्म यानी कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी को बहुत इजीली मिक्स कर देते हैं क्योंकि डेफिनेशंस क्लियर नहीं है. कई बार गीता पढ़ने की बात कर दी जाती है विच इज वेरी वेरी हाईली रेटेड, समझ में किसी को आता नहीं है. तो रिलीजन हुआ और आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी हुआ, मिक्स कर देते हैं. मैम थोड़ा सा अंतर बताइए ना दोनों के बीच में.
0: श्योर, एक्चुअली स्पीकिंग ना, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन बोथ आर सेम ओनली, इट्स नॉट द सेम एक्चुअली. व्हाट इज द, व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज बिलीफ, रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस,
1: राइट,
0: व्हिच हैज बीन फॉलोड बाय एजेस through our families or communities, whatever you may say. But in a simple sentence, if you say, it's a structured path to connect with the God. Ultimately, religion also teaches that you believe this God, that God. And like, you know, Hindus, we say Rama, Krishna and all. Like Muslims, they say Allah and Jesus in Christianity. So ultimately, the structure is to connect with the God. So that is what this spirituality does. So not much difference, but there is a difference.
1: Right.
0: And it all depends upon how a person takes it.
1: ओके ओके, सो आगे बढ़ते हुए मैम बताइए ना, व्हाट कुड बी, आई मीन व्हाट शुड वी अंडरस्टैंड अबाउट रिलीजन? धर्म क्या है, रिलीजन क्या है और आध्यात्म क्या है?
0: सी, रिलीजन, इट्स ओके इफ इट टॉक इन इंग्लिश?
1: या, श्योर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल मैम.
0: रिलीजन कैन बी द पाथ टू स्पिरिचुअलिटी, द एक्चुअल इनर जर्नी. Okay. And spirituality is the discovery of self-discovery, feeling connected to God. That is the difference. So one has to understand, see, we cannot combine both together, but once if you want to enter into spirituality, first you should follow your religion also properly. You should not jump from one to another, you know. So, like that, if you follow, definitely आप ना दोनों में अंतर आप पहचान पाओगे.
1: Right, right. I get your point, ma'am. I get your point. Okay, दोस्तों आपको समझ में आया. सीता मैम बहुत आराम से समझा रही हैं कि अगर हम लोगों को, हमने रिलीजन को फॉलो किया फर्स्ट, रिलीजन को, अगर जो भी रिलीजन हमारा है उसमें हम लोगों को कोई डिफरेंसेस नहीं है. वट एवर रिलीजन वी आर फॉलोइंग, वी शुड फॉलो फर्स्ट एंड देन विल लीड, विल गो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. दैट्स द पाथ. एंड उन्होंने बताया रिलीजन यानी कि धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ, and spirituality, adhyat.

0: इस सर्चिंग फॉर आवरसेल्व्स टू गॉड, हम लोगों का कनेक्शन कैसा है भगवान के साथ, उसकी खोज जो है वो स्पिरिचुअलिटी है। ब्यूटीफुल मैम, ये डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई कि आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, धर्म का मीनिंग क्या हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेथड्स। तो प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए मैम, मुझे थोड़ा एनलाइटन कीजिए, थोड़ा बताइए कि रिलीजन फॉलो करने की बात की ना पीछे आपने, सो हाउ शुड वी डू इट, मतलब मेथड 1, 2, 3, 4 प्रैक्टिकल मेथड रिलीजन फॉलो करने के लिए।
1: अच्छा, मैं पहले स्पिरिचुअलिटी की बताऊं?
0: हाँ, ओके ओके, आपको जिधर भी ठीक लगता है।
1: फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, पहले अपने को अंदर से देखना जरूरी है। सो स्टार्ट लुकिंग इनसाइड फर्स्ट। ओके, आपने अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं, मैं मेरी इस जन्म का मतलब क्या है। Where do we go for peace? All this will lead you to the spirituality. See, it's not very that आप बहुत सारे books पढ़ोगे और books सर books पढ़ सकते हैं, मगर उसमें क्या होते हैं, कभी we get confused. हाँ, कोई धर्म ऐसे बोलते हैं, कोई धर्म ऐसे, but you listen only to your mind. Whatever you feel is right for you in a right way, you should follow that. This is what I have been doing, and I advise everybody to do the same thing, because that is how you lead towards the spirituality. Religion, what is religion? Religion is again, see, we have been brought in a community. And we right from our childhood, we'll be following, our parents will say, go to temple, go do this puja, that and all, you know. So we just follow whatever our religion say. But in that, in due course, by going to this temple and everything, in due course, you develop into spirituality. This is what the difference between the religion and spirituality, how to enter into religion, how to enter into the spirituality.
0: ये तो spirituality के बारे में हो गया मैम, अब religion के बारे में बताइए ना, what methods, practical methods की हम बात कर रहे हैं, कि आपने कहा ना कि हम एक religion follow करें, so how should we follow it?
1: So देखिए, रिलीजन फॉलो करने के लिए कहेंगे हम लोग है ना, जंप नहीं करना चाहिए दिस रिलीजन टू दैट रिलीजन, सो यू रियली गेट कंफ्यूज। सो वंस इफ यू आर बॉर्न इन अ वॉट एवर द कम्युनिटी इज, ओके, सो यू ट्राई टू फॉलो योर ओन रिलीजन। देर इज नो हार्म इन फॉलोइंग एनी रिलीजन, बट यू हैव टू स्टिक टू योर ओन रिलीजन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू शुड से अवर रिलीजन एज फॉर द हिंदू धर्म, वी गो टू टेम्पल, राइट, हम लोग के ना पूजा करते हैं घर में, कुछ शांति वगैरह करते हैं, सो यू शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय अदर्स हू इज एट यू, अरे तुम्हारे तो हिंदू में बहुत सारे गॉड है, नहीं, इट्स नॉट दैट। So you should think that our Hindu dharma is so huge, it has spread everywhere, so that is why so many gods and goddesses. But where I mean that if Christianity follows one Jesus, it's not wrong. See, they are strong and they are able to follow one religion. There is no harm in following one religion, and you should follow your own religion.
0: Okay. Let me understand this, ma'am. Following one religion means, if at all I am a Christian, let's say. So okay, going to the church every Sunday and praying to God, praying to Jesus, is the method of following religion?
1: See, one has to follow. At the meantime, see, one should be a good human, first of all.
0: Right.
1: All the religion teaches only one thing, be a good human. See, doing good things to the society, whatever the good things you are following, that will be followed by your next generations, you know. So we are the pillars, the parents are the pillars to start our new next generation. So when you don't do anything properly, obviously your children will not be following. So it all depends upon the parents who are the pillars of the family.
0: Okay, that's very nice. दोस्तों, जिस तरीके से सीता मैम ने यहां पर हमें बताया रिलीजन किस तरीके से फॉलो किया जाता है और किया जा सकता है एक बहुत ही पवित्र तरीके से, पायस तरीके से, और हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो भी सीता मैम ने बताया। चलिए यहां पर एक हल्का सा, यस मैम प्लीज।
1: स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट गोइंग टू टेम्पल पूजा करना, मैं ये नहीं कर रही हूँ, दिस विल नॉट हेल्प। स्पिरिचुअलिटी हैज गॉट द रियल मतलब है कि हमें अपना अपने आप के अंदर की शांति को ढूंढना चाहिए और कि विच विल टेक यू टुवर्ड्स द गॉड, भगवान को ढूंढना है। दिस इज फ्रॉम जर्नी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। When you get disturbed and not able to handle the situation, मन को एकदम शांत और स्टेबल रखना चाहिए। It is very difficult, but nothing is impossible in this world. ठीक है, पैनिक होने से बात और बिगड़ जाती है। अंदर की स्पिरिचुअलिटी जागने से yourself can find the difference in you and that will reflect on your face also. कभी कोई साधु संत को देखते हैं वो आर टू मच इनटू स्पिरिचुअलिटी, यू कैन रियली सी द ब्लिस ऑन देयर फेस। व्हाई दिस इज कमिंग? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, आई मीन दे हैव गॉन इनसाइड एंड दे हैव अंडरस्टूड द रीजन ऑफ देयर कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड। That is why Ramakrishna Paramahamsa, Satya Sai Baba, and all those people, Vivekananda, everybody, because they understood what is really is there inside them, what for they have come to this world. So they fulfilled all the things, what the reason for what they came into this world.
0: Right, ma'am. Right. That is so beautiful. दोस्तों, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भला क्यों? स्पिरिचुअलिटी को हम क्यों प्रैक्टिस करें, रिलीजन को हम क्यों फॉलो करें? विचार कीजिए, सोचिए। सीता मैम ने अभी जो कहा उसके बारे में जरा सोचिए। हम वापस आते हैं एक बहुत ही प्यारे से भजन के बाद। मैम, आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस।

0: अमेजिंगली ब्यूटीफुल। सीधा मैम, आपने बहुत कन्वीनियंटली, बहुत कंफर्टेबली, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया कि किस तरीके से हम लोग आज के वक्त में स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये सब हम लोग अपनी कंपनीज में देखते हैं, बट हमारे पास बहुत इजीली टूल्स अवेलेबल हैं जो हम अपने घर पे ही कर सकते हैं। आपने पुरानी बात भी बताई कि जब आपकी फैमिली में आप खेल के आते थे तो क्या क्या होता था। ओके, नाउ हुआ क्या मैम, आपने कहा कि उस जमाने में जब हम लोग थे तो टीवी नहीं था, फोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो कंपैरेटिवली इट वाज इजी कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएं। लेकिन आज का जमाना तो सोशल मीडिया का है मैम, अब उसको हम डिनाय तो कर नहीं सकते, उसको हम अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक भी नहीं सकते। आफ्टर ऑल अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो भी सोशल मीडिया को ही यूज करते हुए कर रहे हैं, तो इस सोशल मीडिया को हम अपने बेनिफिट के लिए, यानी कि स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस होने के लिए कैसे यूज करें मैम, इसके कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए ना।
1: सोशल मीडिया इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, इट ऑल डिपेंड ऑन एन इंडिविजुअल हाउ ही और शी टेक्स। एक्चुअली स्पीकिंग क्या होता है, आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, everything is, all those medias are there, in that you can really hear, see, even when you are traveling also or when you are stressed off, you can hear to nice soothing bhajans and nice soothing instruments which will release your stress, because that is what is happening in all those this thing, you know, like stress management companies, what they do is they make you sit silent, calm, and they play some music, and they say that you do meditation. See, meditation is not that easy what you all think, but it will make you perfect by doing practice. To me, when I started my meditation, hardly I was able to sit for 5 minutes. So you cannot expect, aaj maine baith gayi to tomorrow I should get the result. Nothing you can get immediately. It is not Swiggy or Maggi, within 2 to 10 minutes you get everything, right? Sitting at home you get everything. It's not that way. But the practice makes you perfect. You should I mean they have to put little, for anything you have to put little effort. Without effort, nothing is available, nothing you gain, right? So here spirituality is also like that only. Your social media to use kijiye, magar not too much. See, whichever is good, there are so many good things also in social media, right? So you'll have to get some nice quotes which sometimes enters our heart and changes the whole situation. See, you do know, aapko pata nahi chalti hai ki kab bhagwan ka call aapke aur aati hai. See, you won't know. So you will be listening to something, in that you may get some answer. So keep listening to such nice quotes, read some nice books. See, if you don't know to read in the book, you go in the e-book. You can go through your e-book and you can read some good books and you can gain some nice, you know, knowledge.
0: जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया को सीता मैम भी रिजेक्ट नहीं कर रही हैं, बहुत कंफर्टेबली, ऑब्वियसली उनका जो एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, उसको देखते हुए उनको पता है क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है, बेनिफिशियल है, और क्या चीज़ हमारे लिए ख़राब है। मैं मानता हूँ इस दुनिया में किसी को समझाना कि ये चीज़ आपके लिए ख़राब है, समथिंग लाइक इफ इट ऑल समबडी इज स्मोकिंग और मे बी समबडी इज हैविंग वाइन अल्कोहल, अगर हम उसको सिखाने जाते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन अंदर अंदर उसको भी मालूम होता है कि ये बात तो ठीक कह रहे हैं, ठीक है मेरी गलती है, लेकिन उस वक्त तो उसके अंदर रेजिस्टेंस आता है। सेम वे आज के सोशल मीडिया को हम गलत तरीके से इस्तेमाल करने की तरफ बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों एक मानवीय संरचना है, एक साइकोलॉजी है, टुवर्ड्स नेगेटिविटी वी गो वेरी फास्ट, बट हमें मालूम है व्हाट इज पॉजिटिविटी, व्हाट इज नेगेटिविटी। सीता मैम वही समझा रही हैं। आइए दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए सीता मैम की जो बातें हैं उनको विचार करते हुए एक भजन सुनिए, Let me come back.

0: अमेजिंगली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। सीता मैम, कई सारी बातें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है आज आपकी बातें सुनकर। बहुत सारे यंग जनरेशन भी आपकी बात सुनकर महसूस कर रही होगी कि आप जो कह रहे हैं वो सेंसिबल है। मोर ओवर, अपनी जिंदगी को खुश और पीसफुल बनाने का जो तरीका है वो आपने एग्जेम्प्लीफाई भी किया है इस उम्र में आके। तो जाहिर सी बात है, यंग जनरेशन को तो आपसे कनेक्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दे वुड फील हैप्पी दैट ओके, सीता मैम इज वन हु इज क्वाइट मॉडर्न एंड ट्राइंग टू मेक हर लाइफ पीसफुल एंड हैप्पी, तो व्हाई शुडंट वी फॉलो हर। तो अगर यंग जनरेशन आपके इस प्रोग्राम को सुनकर सीता मैम आपको फॉलो करने की सोचे कि चलिए सीता मैम से कुछ सीखते हैं और शायद सीता मैम कुछ अच्छी बात कह रही हैं, सो लेट मी लर्न फ्रॉम सीता मैम, तो आप यंग जनरेशन को 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या मेथड देना चाहेंगे सो दैट दे कैन बिकम रिलीजियस एज वेल एज स्पिरिचुअल? प्रैक्टिकल मेथड बताइए मैम।
1: अपने आप पे करना है या अपने बच्चों के ऊपर करना, ये जरा बताइए मुझे।
0: मैम फ्रैंकली जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हो सकता है उसमें से बहुत लोग पेरेंट्स हों, हो सकता है उसमें बहुत लोग यंग जनरेशन हों, उनके बच्चे हों। अब ओके, ऐसा करते हैं मैम, बिल्कुल किसी भी एक प्लेन एंड सिंपल पर्सन के लिए जो भी आपके इस प्रोग्राम को सुने।
1: First of all, I mean, the charity begins at home, okay. Right? So, the whatever, I mean, बच्चों को जो करना चाहते हैं वो अपने आप में पहले शुरू कीजिएगा। Start with 2 minutes a day with the God, and that is not with God, that is for yourself. You take 2 minutes time a day for you, slowly you can increase. See, I'm not saying ki aap log bahut der tak baithe hain, nahi, 2 minute but fixed time. See, like how aaj Samir ji se main baat kar rahi hu to apne mere ko ek fixed time diye the, to fixed time mein hamari shuru hui like that. So it's the same thing, you will have to fix it time with the God, and that is only you and your God. So, उससे क्या काफी यानी ये होती है, रिजल्ट मिलती है कि अपने आप से क्या रहती है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो उस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल इवनिंग 6 o'clock, ओके, सो यू आर सिटिंग एट वन इज एंड डूइंग समथिंग, सो ऑन दैट पर्टिकुलर डे व्हेन यू आर आउट यूर दैट अंदर की जो घंटी बजने लगती है कि हाँ इट्स टाइम फॉर माय मेडिटेशन, सो डोंट थिंक दैट यू हैव टू गो टू द सेम प्लेस, यू कैन इवन विजुअलाइज वेयर यू आर डूइंग एवरी डे, दैट इज आल्सो पॉसिबल। सी समटाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन ए पर्सन इज डूइंग मेडिटेशन एवरी डे, ही और शी फॉल सिक, हॉस्पिटल में है, बेड में है, तो नहीं कर पाते, मगर दे I mean, they can understand where they know that where they were sitting, how they were doing, everything they can visualize and do it. See, here I would like to share one of my experiences with one of my friends. Actually, one of my friends, she lost her eyesight. So I was doing both the eyes, she lost it. She's a very good friend of mine. So I was praying for her, but still, I pray for her, I always feel that the individual has to do something. See, if you start thinking, meri aankh gayi, so that universe will never listen to the positive thinking, the universe will hear only the negative word, nahi dikh rahi, so that is the only, the nahi, that will capture, that is the first word with यूनिवर्स हियर्स, सो इन दैट क्या हो रहती है कि नहीं शब्द पहले आ जाती है, देन आफ्टरवर्ड्स यू विल नेवर बी एबल टू सी, सो आई जस्ट टोल्ड हर यू डोंट हैव एनी नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, यू जस्ट थिंक दैट you are seeing, and you know your house, you know where is your kitchen, how do you cook, you know that there is your cupboard, how do you close, fold your clothes and everything. You start doing that, visualizing that I am doing this, I am cooking for my husband, I'm today I'm wearing this cloth, and all those things you start doing, and you come back to me after a month. So I am proudly, I can say, though she was not able to do with both the eyes, now she is able to see with one eye. So moment she got her eyesight, she called me on a video and she said, Sita, I wanted to see you.
0: Wow. Okay.
1: So, this can happen. This can happen. Why? This is within you, your prayer, your manifestation. And you know, like, start manifesting that I can do it, I will do it. So

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर, मुझे यानी आपकी आरजे दोस्त, आपके तरानों की हमसफर आरजे तनुषा को। आज की बातें इधर की उधर की शुरू करते हैं एक गाने से, एक ऐसा गाना जो हमने शादियों में सुना है, महफिलों में सुना है, सूफी कॉन्सर्ट्स में सुना है। छाप तिलक सब छीनी रे,

कभी सोचा है ये गाना असल में किसके लिए लिखा गया था? किसी दुल्हन के लिए, प्रेमिका के लिए? नहीं दोस्तों, ये एक शिष्य ने अपने गुरु के लिए लिखा था और इसके पीछे की कहानी शायद गाने से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दिल्ली, जी हाँ दिल्ली, लगभग 700 साल पहले की दिल्ली। एक सूफी संत थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। उनके दरवाजे पर रोज लोग अपना दुख लेकर आते थे। कोई परेशान था, कोई टूटा हुआ था, कोई उम्मीद लेकर आया था। लेकिन एक दिन गुरु खुद टूट गए। उन्होंने अपना कोई बहुत ही करीबी खो दिया था। ना वो किसी से ठीक से मिलते थे, ना बात कर रहे थे, ना मुस्कुरा रहे थे। सोचिए, जो इंसान हजारों लोगों के आंसू पोंछता था, आज उसे अपने खुद के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिल रहा था। तब उनके एक शिष्य आए, नाम था अमीर खुसरो। जी हाँ, खुसरो ने देखा कि गुरु का मन कितना उदास है। अब वो क्या करते? कोई भारी प्रवचन देते, कहते गुरुजी सब माया है? नहीं, खुसरो ने कुछ और किया। उन्होंने बातों से बहुत आगे चलकर कुछ और किया। उन्होंने पीले कपड़े पहने, हाथ में सरसों के पीले फूल लिए और गुरु के सामने नाचने और गाने लगे। अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक उदास माहौल और बीच में एक आदमी पीले कपड़ों में फूल लेकर नाच रहा है। लोग सोच रहे होंगे, भाई इनको क्या हो गया, कोई इन्हें रोको। लेकिन खुसरो को पता था, कभी कभी दर्द का इलाज समझना नहीं होता, समझाना नहीं होता, बस किसी के चेहरे पर एक मुस्कान वापस लानी होती है। और हुआ भी वही, निजामुद्दीन औलिया बहुत दिनों बाद मुस्कुरा उठे। कहते हैं खुसरो ने ये दृश्य वसंत के रंग से प्रेरित होकर रचा। पीला रंग, सरसों के फूल, नई ऋतु और एक शिष्य।

अब एक मिनट, छाप का मतलब क्या होता है? पहचान। और तिलक एक पहचान का निशान। तो खुसरो कह रहे हैं, तुमने एक ही नजर से मेरी सारी पहचान छीन ली। मैं जो था वो मैं नहीं रहा। और यही तो गहरे प्रेम की अजीब बात है। जब हम किसी को सच में अपना मान लेते हैं तो उसकी खुशी में हम खुश होते हैं, उसका दर्द हमें चुभता है और उसकी जीत पर लगता है जैसे मैं जीत गया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? किसी अपने को दुखी देखा और बिना उसके कुछ कहे आपका मन भारी हो गया, आपके दो आंसू छलक आए? या किसी अपने की सफलता पर आपको ऐसा लगा कि मेडल आप ही को मिला है? यही तो है मैं और तुम के बीच की दीवार जो गिर जाती है। चलिए रेडियो के इस पल में एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, बस इस बार दिल से सोचिएगा। आपकी जिंदगी में वो कौन है जिसकी खुशी आपको अपनी खुशी लगती है, जिसके दर्द की खबर मिलते ही आपका दिल हल्का सा रुक जाता है, जिसके सामने आपको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती? हो सकता है वो आपके माँ बाप हो सकता है कोई दोस्त, कोई गुरु, कोई जीवन साथी, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका नाम आपने कभी किसी को बताया तक नहीं, बस दिल ही दिल में प्यार करते रहे, प्रेम करते रहे। बस उस चेहरे को याद रखिए। प्रेम कोई एक पहचान नहीं। खुसरो और निजामुद्दीन की कहानी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें सिर्फ गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं है, इसमें प्रेम की एकता है। वसंत एक अलग परंपरा से आया है और खुसरो उसके रंग को अपने गुरु के आंगन में ले आए। ना किसी ने पूछा ये किसका त्योहार है, किस जाति का त्योहार है, ना किसी ने दीवार खड़ी करी। बस एक बात थी उस माहौल में जो था प्रेम। शायद इसीलिए 700 साल के बाद भी वो गीत इतना जिंदा लगता है। हम उसे शादी में गाते हैं, महफिल में गाते हैं, सूफी कलामों में सुनते हैं और हर बार वो कुछ ना कुछ कह जाता है। लेकिन इस कहानी का एक बहुत भारी हिस्सा भी है। एक दिन निजामुद्दीन औलिया दुनिया से चले गए और उस वक्त खुसरो उनके पास नहीं थे। जब उन्हें खबर मिली खुसरो टूट गए। खुसरो की छाप तिलक तो हम जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने एक और पंक्ति दी है। चल खुसरो घर अपने, रैन भाई चहूं देश। अर्थ जैसे रात हो गई है, अब घर लौट चलो खुसरो। गुरु चले गए और जैसे उनकी रोशनी भी साथ चली गई। कुछ ही समय बाद खुसरो भी दुनिया से चले गए। आज दिल्ली की निजामुद्दीन में गुरु और शिष्य की मजारें एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं। जैसे कहानी अब भी वही है, गुरु आगे और शिष्य उनके कदमों के पास। तो दोस्तों, हम जिंदगी भर अपनी छाप बचाने में लगे रहते हैं, कभी बचाने में कभी बनाने में। मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मेरी जगह क्या है, लेकिन कभी कभी प्रेम आता है और कहता है थोड़ा सा अपने आप को छोड़ो। इसका मतलब खुद को मिटा देना नहीं, बल्कि इतना बड़ा हो जाना कि अपने अंदर किसी और के लिए भी जगह बन जाए। जैसे एक बूंद समुंदर में गिरती है ना, तो वो खत्म नहीं।

होती समंदर का हिस्सा बन जाती है। अगली बार जब कहीं आप छाप तिलक सुने, सिर्फ इसे एक शादी का गाना या एक सूफी गाना मत समझिए। एक पल के लिए याद कीजिए एक ऐसा शिष्य जिसने पीले कपड़े पहने, हाथ में सरसों के फूल लिए और अपने टूटे हुए गुरु के सामने नाच कर उनकी मुस्कान वापस ला दी। शायद प्रेम का सबसे खूबसूरत रूप वही है, जब हम किसी को बदलने की नहीं, बस उसके चेहरे पर फिर से वो पुरानी रोशनी लाने की कोशिश करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, Only on SN Radio and Radio Tatya Bhil 90.8 FM। जाने से पहले एक सवाल और आपके लिए, आपकी जिंदगी में वो कौन है जिसने आपको खुद से बेहतर बनाया है, आपका छाप तिलक छीन लिया है? नाम जरूरी नहीं, बस आज दिल से उनके लिए शुक्रिया कहिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक थोड़ा कम मैं और थोड़ा ज्यादा हम बनकर तो देखिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: चिंटू जो है पैराशूट बेच रहा था बाजार में, चिल्ला चिल्ला के बोले, हवाई जहाज से कूदो, बटन दबाओ और जमीन पर सुरक्षित पहुंच जाओ। तो एक ने पूछा कि भैया अगर पैराशूट ना खुला बटन दबाने के बाद? तो चिंटू बोला, पूरे पैसे वापस।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे आपकी अपनी आज तनुषा आपके तरानों की हमसफर को। आज की कहानी एक तितली की है। जी हाँ, एक तितली की है, एक बेटी की है, एक पिता की याद की है और एक ऐसी यात्रा की है जहाँ मंजिल सिर्फ एक तितली को ढूंढना नहीं था, मंजिल थी एक पिता को दोबारा पाना। जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि दुनिया में एक बहुत ही दुर्लभ तितली है और उस तितली का नाम आपके पिता के नाम पर रखा गया है, तो क्या आप भी उसे ढूंढने निकल जाएंगे? फोटोग्राफर रेना एफेंडी ने यही किया और उनकी कहानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही अजीब भी है। रेना के पिता रुस्तम एफेंडी एक मशहूर बटरफ्लाई साइंटिस्ट थे, यानी तितलियों के जानकार थे। बचपन से ही उन्हें तितलियों का जुनून सा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों तितलियों का अध्ययन किया था, लेकिन उनकी बेटी रेना को कई सालों बाद पता चला कि एक तितली का नाम उनके पिता के नाम पर भी रखा गया है, सेटियरस एफेंडी। एक दिन रेना ने अपने पिता का नाम इंटरनेट पर खोजा और उन्हें इस तितली के बारे में पता चला। सोचिए, पिता दुनिया में है नहीं, लेकिन कहीं दूर पहाड़ों में एक छोटी सी तितली है, उनके नाम को अपने पंखों पर लेकर उड़ रही है। कितनी अजीब बात है ना? इंसान चला जाता है, लेकिन कभी कभी उसका काम, उसका नाम प्रकृति में गूंजता रहता है, उड़ता रहता है, अपने रंग फैलाता रहता है। अब कहानी यहाँ से और इंटरेस्टिंग होती है। ये तितली जिस पहाड़ी इलाके में मिलती है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का एक क्षेत्र है, दो देश जिनके बीच लंबे समय तक तनाव और संघर्ष रहा है। और जिस सीमा के आसपास ये तितली उड़ती है वहां पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं है। रेना के पिता कभी इन इलाकों में बिल्कुल आसानी से आते जाते थे। उनके लिए ये पहाड़ तितलियों की एक दुनिया थे, लेकिन वक्त बदल गया और जहां कभी लोग आते जाते थे वहां सीमाएं आ गईं। जहां कभी रेलवे चलती थी वहां जंग के निशान रह गए। और रेना ने सोचा, मैं भी वही रास्ता ढूंढूंगी जहां कभी मेरे पिता चले थे। अब जरा सोचिए, क्या रेना एफेंडी सिर्फ एक तितली के पीछे जा रही थी? शायद नहीं, वो अपने पिता की यादों के पीछे पीछे जा रही थी। उन्होंने अपने पिता को बचपन में तितलियों के पीछे जाते देखा था और अब वो खुद उन्हीं पहाड़ों में खड़ी थी। बस फर्क इतना था, पिता की जगह अब बेटी थी। कितनी अजीब होती है ये यादें। कभी एक पुराना गाना, कभी किसी की खुशबू, कभी एक जगह और कभी बस एक तितली। और अचानक कोई इंसान हमें बहुत दूर होते हुए भी बहुत पास महसूस होने लगता है। रेना की तलाश उन्हें आर्मेनिया ले गई। वहां उनकी मुलाकात हुई पार्केव कज़ानिया से। पार्केव एक आर्मेनियन इंसेक्ट कलेक्टर और टैक्सीडर्मिस्ट थे, और सबसे खास बात, वो रेना के पिता के दोस्त और शिष्य रह चुके थे। रुस्तम अफेंडी उनसे उम्र में काफी बड़े थे। उन्होंने पार्केव को तितलियों को ढूंढना, पकड़ना और संभालना सिखाया था। पार्केव ने रेना के पिता को याद करते हुए कहा, दोनों एक ही सेब के दो हिस्से थे। जरा सोचिए, एक बेटी अपने पिता की तलाश में एक दूसरे देश पहुंचती है। क्या ये मुलाकात किसी खजाने से कम थी? बिल्कुल नहीं। पार्केव के घर में पुराने जमाने की चीजें थी,
वो टैक्सीडर्मिस्ट थे और पुराने डब्बों में तितलियों के कलेक्शंस, पुराने औजार और उनमें छुपी छुपी बहुत सारी यादें, फ्रैगमेंट्स ऑफ अ शेयर्ड पास्ट, जैसे एक कमरा नहीं पूरा गुजरा हुआ वक्त संभाल कर रखा। और फिर रेना ने वो तितली देखी, सत्येरिस एफेंडी, एक ऐसी तितली जिसका नाम उसके पिता से जुड़ा था। सोचिए, आप अपने पिता को छू नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन आपके सामने एक जीव है

जिंदगी में कितनी चीजें संभाल कर रखते हैं, पुरानी फोटोग्राफ्स, लेटर्स, किसी का दिया हुआ पेन, माँ की पुरानी रेसिपी, पापा की घड़ी या किसी अपने की आवाज की रिकॉर्डिंग। क्यों? चीजें कीमती इसलिए नहीं होती क्योंकि वो महंगी होती हैं। वो कीमती इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें किसी अपने का हिस्सा रह जाता है। और रैना के लिए शायद वो तितली भी एक ऐसी ही याद थी। अब आप बताइए, अगर आपको अपने किसी बहुत खास इंसान की याद से जुड़ी सिर्फ एक चीज बचानी हो तो वो क्या होगी? एक फोटो, एक गाना, एक खत, एक पुरानी जगह, एक आवाज की रिकॉर्डिंग या कोई छोटी सी चीज जिसे दुनिया देखे तो कह पड़े इसमें क्या खास है? लेकिन आप जानते हैं कि इसमें मेरी पूरी दुनिया बसती है। शायद यादें भी तितलियों की जैसी होती हैं। उन्हें मुट्ठी में बंद करोगे तो टूट जाएंगी, लेकिन उन्हें प्यार से याद करोगे, उन्हें उड़ने दोगे तो बार बार आपके आसपास आके उड़ेंगी और आपके मन को प्रफुल्लित करेंगी और आपके मन में अपने उन खूबसूरत रंगों के एहसास छोड़ जाएंगी। रैना की कहानी हमें ये भी बताती है कि कभी कभी हम किसी इंसान को दोबारा पाने के लिए उसके कदमों के निशानों को ढूंढते हैं, और रास्ते में हमें सिर्फ वो इंसान नहीं मिलता, हमें अपना एक ऐसा हिस्सा भी मिल जाता है जो शायद हम बहुत सालों से ढूंढ रहे थे। एक बेटी एक तितली को ढूंढने निकली थी, लेकिन रास्ते में उसे अपने पिता की दुनिया मिल गई, और शायद

90.8 FM पर आज किसी अपने को याद कीजिए, शायद एक पुरानी तस्वीर देख लीजिए, शायद उनका पसंदीदा गाना सुन लीजिए और अगर मुमकिन हो तो उन्हें बता दीजिए कि आप उन्हें याद करते हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, बहुत नाजुक, बहुत खूबसूरत और वक्त से भी बहुत ज्यादा कीमती। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: आज के जमाने में सत्संग देखो भैया वही बढ़िया होता है, जहाँ पर पोहा मिले, गरम गरम चाय मिले, मंगौड़ी की पकौड़ियां मिल जाएं। वरना देखिए ज्ञान तो ऑनलाइन भी भैया बहुत अवेलेबल है।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे मुझे यानी आपके तरानों की हमसफर आरजे तनुषा को। और आज की बातें इधर की उधर की में हम थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी गहरी, थोड़ी सी अंदर जाने वाली बातों को डिस्कस करेंगे। आज की बात अलग है, ना कोई बड़ी कहानी है, ना कोई लेक्चर है, बस एक आपका आपसे सवाल है। आपने आखिरी बार खुद से सच में खुद से बात कब करी थी? फोन से तो रोज ही बात होती है, व्हाट्सएप से होती है, इंस्टाग्राम से होती है, सभी लोगों से हम हर समय कनेक्टेड है, लेकिन खुद से, जी हाँ आपसे। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान दुनिया से नहीं अपने आप से हारने लगता है, और फिर एक दिन वो चुपचाप आईने के सामने बैठ जाता है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी, जब इंसान अंदर से इतना टूट जाता है कि अपना दर्द किसी के साथ कह नहीं पाता, तो एक दिन वो आईने के सामने बैठकर रो पड़ता है, क्योंकि आईना सवाल नहीं करता। आईना ये नहीं कहता कि तुम इतने कमजोर कब हो गए, तुमने खुद को संभाला क्यों नहीं, तुमसे गलती कैसे हो गई। वो बस सामने रहता है, शांत, चुप, अडोल। आप रोते हैं और वो आपको रोता हुआ देखता है। आप मुस्कुराने की कोशिश करते हैं और वो भी देख लेता है। और शायद इसीलिए कभी कभी आईना इंसान का सबसे खामोश दोस्त बन जाता है। सोचिए, आप आईने के सामने बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं, और मन में सिर्फ एक सवाल है, मेरे साथ ही क्यों, ये दर्द मुझे ही क्यों मिला, ये रिश्ता क्यों टूटा, ये मौका मेरे हाथ से क्यों गया। जिस इंसान पर भरोसा किया उसने क्यों तोड़ दिया, मैं ही क्यों। कभी आपने ये सवाल पूछा है खुद से? मुझे लगता है बहुत लोगों ने पूछा होगा, बस सबने किसी को बताया नहीं है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप आईने के सामने बैठे हैं, आप रो रहे हैं, और अचानक आपका रिफ्लेक्शन आपसे बात करता है। वो कहता है, मुझे भी नहीं पता क्यों, मैं ये भी नहीं बता सकता कि तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन एक बात जरूर बता सकता हूं, तुम अब भी यहां हो, तुम टूटे नहीं हो, खत्म नहीं हुए, तुम रोए हो लेकिन हार नहीं गए, तुम टूटे हो लेकिन खत्म नहीं हुए, तुम्हारे अंदर दर्द है लेकिन तुम्हारे अंदर सांसें भी हैं, और जब तक सांसें हैं कहानी बाकी है। हम अक्सर दर्द को सजा समझ लेते हैं, लेकिन हर दर्द सजा नहीं होता। कभी कभी दर्द हमें वो सिखा देता है जो सुकून कभी नहीं सिखा पाता। जिस दिन सब कुछ ठीक चल रहा होता है हम खुद को बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन जब जिंदगी हमें हिला देती है तब पता चलता है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। हवा तेज चलती है तो वो झुकता है, लेकिन हर बार वो टूट नहीं जाता। शायद इंसान को भी वही सीखना है, झुकना कमजोरी नहीं है, रुकना कमजोरी नहीं है। कभी कभी झुकना, कभी कभी रुकना टूटने से बचाता है। और हाँ, अगर आज आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना,
तो बस एक काम कीजिए मेरे कहने पर, आज रात फोन थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, आईने के सामने बैठिए और खुद से पूछिए कि मैं कैसा हूं, कि मैं कैसी हूं। लेकिन इस बार खुद को जज मत कीजिएगा, बस जवाब सुनिए। अगर आंसू आते हैं तो आने दीजिए, हर आंसू को रोकना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आंखों का भी मन हल्का करने का अपना ही तरीका होता है। वैसे हम भी अजीब लोग हैं, दूसरे इंसान को उदास देखेंगे तो तुरंत बोल देंगे, अरे यार सब ठीक हो जाएगा, रोता क्यों है। लेकिन वही बात खुद

और खुद की बारी आई तो पुरानी चैट्स, पुरानी फोटोज, पुराने मैसेजेस सबकी अटेंडेंस लगवा लेंगे। लेकिन शायद हीलिंग का पहला कदम यही है, खुद को वही प्यार देना जो हम दूसरों को देने में इतने जेनरस होते हैं, इतने तत्पर होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में बहुत लोग आएंगे, कुछ रुकेंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ वादा करेंगे, कुछ वादे तोड़ देंगे, कुछ आपको समझेंगे और कुछ बिना समझे फैसला सुना देंगे। लेकिन एक इंसान आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगा और वो है आप खुद। इसलिए खुद से नाराज रहना थोड़ा बंद कीजिए। अपनी पुरानी गलतियों को बार बार कोर्ट रूम में खड़ा मत कीजिए। आप उस वक्त जो जानते थे उसी हिसाब से आपने फैसले लिए थे। आज आप ज्यादा समझदार हैं, इसीलिए आज आपको पुराना आप गलत लग रहा है। ये भी एक ग्रोथ ही तो है। तो अगली बार जब जिंदगी बहुत भारी लगे ना और आप आईने के सामने खड़े हो, तो सिर्फ अपना चेहरा मत देखिए, उन आंखों को भी देखिए जो इतना सब सहकर भी आपके साथ खड़ी हैं। उस इंसान को भी देखिए जो इतना सब सहकर भी आपके साथ खड़ा है। और अगर आईना बोल पाता तो शायद वो बस इतना ही कहता, मुझे पता है तुम बहुत रोए हो, लेकिन देखो तुम अब भी यही हो। और कभी कभी इतना याद रखना भी बहुत काफी है। दोस्तों, मैं हूं आपकी तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे आज की थोड़ी भीगी हुई, थोड़ी गीली सी, थोड़ी सहमी सी, थोड़ी उदास सी, बट थोड़ी उम्मीद वाली बातें इधर की उधर की। Only on SN Radio and Radio Tatya Bhil 90.8 FM। आज किसी और से नहीं, थोड़ी सी बात खुद से कीजिए। हो सकता है जिस जवाब को हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो बहुत देर से हमारे अंदर ही बैठा हो। झांक के देखिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: तो पुराने जमाने में क्या हुआ करता था भाई, पता है? कोई अगर अकेला बैठा हुआ ऐसे हंस रहा तो लोग कहा करते थे, भैया इस पर भूत प्रेत का साया है, इलाज विलाज कराओ, झाड़ फूक कराओ। लेकिन आजकल कोई अकेला बैठा हंस रहा हो ना तो कहते हैं, भाई वो मैसेज हमें भी फॉरवर्ड करना जरा।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों।

दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी

0: कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
1: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

आगे बढ़ा हिम्मत के कदम, एक बार मर्द बन के तेरे पांव पड़ेंगी चट्टाने, ठोकर की गर्द बन के, ठोकर की गर्द।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: वैज्ञानिक चाहे जितनी खोज कर लें, ये बात कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि लोग जब उदास हो जाते हैं तो व्हाट्सएप से अपना डिस्प्ले प्रोफाइल क्यों हटा लेते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। दोस्तों, हार यानी कि पराजय वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, तो इसलिए हार से घबराएं नहीं।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: हमारे जल संसाधन।
3: पानी या जल प्रकृति की अनमोल देन है। जीवन और उसके अस्तित्व के लिए यह इतना जरूरी है कि इसके बिना तो जीवन ही असंभव है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, ना होता जल तो जग जाता जल। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जल से ही प्रारंभ हुई है। हमारे शरीर का लगभग 65% भाग पानी ही है। दैनिक जीवन की प्रत्येक घरेलू प्रक्रिया में, जैसे खाना बनाने से लेकर पीने के पानी तक, नहाने से लेकर कपड़े धोने तक, शॉर्ट से लेकर सफाई तक, प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 120 लीटर पानी खर्च करता है, जिसमें औसतन 2 लीटर पानी पीने के लिए ही चाहिए।
4: हमारे देश में पानी का सबसे अधिक उपयोग कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए होता है। मवेशियों को भी काफी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक अच्छा घोलक, शीतक और सफाई का माध्यम है। बिजली बनाने का एक मुख्य साधन पानी ही है, जिसे जल विद्युत या पन बिजली कहते हैं। आज भी परिवहन का सबसे सस्ता साधन नदियों में चलने वाली नौकाएं या समुद्री जहाज ही हैं।
3: काफी हद तक मौसम भी तो पानी और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जलाशय और खासकर विशाल सागर, जो ऊष्मा ऊर्जा के बैंक का कार्य करते हैं, जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसे छोड़ते हैं। इस कारण समुद्र तट के क्षेत्रों की जलवायु समुद्र से दूर के क्षेत्रों से भिन्न होती है। समुद्र तट के इलाकों में न तो सर्दी में ज्यादा सर्दी और न ही गर्मियों में ज्यादा गर्मी ही पड़ती है।
4: मगर ये पानी आता कहाँ से है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं?
3: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97% महासागरों और समुद्रों में है, जो कि धरती की 3/4 सतह पर फैले हुए हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। शेष 3% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3% में से 2% जल हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि ये जमा हुआ है। हिम के रूप में पहाड़ों की चोटियों पर, या ग्लेशियरों के रूप में, या फिर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ध्रुवों पर बर्फ की विशाल और मोटी चादर के रूप में, जहां पेंगुइन और सील रहते हैं। इस प्रकार सिर्फ 1% जल ही नदियों और झीलों में है, या फिर भूमिगत जल जो हम कुओं और नलकूपों के द्वारा निकालते हैं, और कुछ हवा में नमी और बादलों के रूप में। इसे यूं समझें कि अगर धरती पर 9 चम्मच पानी जमी हुई बर्फ के रूप में है, तो नदियों में बहता पानी 1 बूंद के बराबर है।
4: सच कहा जाए तो पानी हमारे आसपास चारों तरफ है। यहाँ तक कि रेगिस्तान की सूखी हवा में भी पानी की आर्द्रता अवश्य होती है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में कुछ न कुछ मात्रा में पानी मौजूद रहता है, और उसके नीचे भूमिगत जल।
3: आपने सही बताया, मगर पानी तो वर्षा से भी आता है।
4: हाँ, हमारे खेतों की फसलों के लिए और पीने का पानी काफी मात्रा में वर्षा से ही आता है। इस विषय पर आप कुछ और बताना चाहेंगे?
3: हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश में जलवायु की विविधताएं हैं। कहीं थार जैसे रेगिस्तान हैं, तो कहीं हिमालय जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़। इसलिए वर्षा में काफी असंतुलन और असमानता है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा प्रतिवर्ष होती है, तो आसाम के चेरापूंजी में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह मुंबई और पुणे के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर भौगोलिक कारणों से मुंबई में मॉनसून के समय लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इतने ही समय में पुणे में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, भारत तेरी अजब कहानी, दो कोस पर बदले पानी और 100 कोस पर वाणी।
4: फिर भी हम वर्षा के मामले में भाग्यशाली हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में औसत प्रतिवर्ष 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कई कारणों से कुल वार्षिक वर्षा का 10वां भाग ही हम उपयोग में ला पाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर स्थितियां बदली नहीं तो आज से 40 वर्ष बाद भी 1/4 से ज्यादा पानी हम उपयोग में नहीं ला सकेंगे।
3: हमारे देश में व्यापक जल स्रोतों का प्राकृतिक खजाना है। कहीं विशाल नदियां, तो कहीं आभूषणों जैसी झिलमिलाती झीलें, कहीं झरझर करते जलप्रपात। और तीन तरफ फैला लंबा समुद्री किनारा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है।
4: पानी तो एक मुख्य समाचार बन जाता है जब देश के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है।

या किसी प्रदेश में बाढ़ आ जाती है। या कई मौतें जल प्रदूषण से हो जाती हैं।

0: या गर्मियों में महानगरों में पानी का अभाव हो जाता है, जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
1: हमारे देश में पानी की प्रत्यक्ष अधिकता भ्रामक है और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें पानी का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी का हम दुरुपयोग भी करते हैं और कभी कभी अधिक और अनुचित उपयोग भी करते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की गंभीर कमी की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।
0: हमारे देश में हर एक को आवश्यकता अनुसार पानी क्यों नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण हैं?
1: पानी की कमी के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताएं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ये संसाधन तीव्र गति से कम हो रहा है। कई प्रदेशों में भूमिगत जल का बहुत उपयोग होने लगा है। भूमि के नीचे से जल निकालने की दर भूमि में जल रिसने की दर से अधिक है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर यानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है।
0: देखिए, बरसात तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है ना, इसलिए दूसरे समय के लिए पानी का संचय करना पड़ता है, और पानी का संचय करना कोई आसान काम नहीं है।
1: पानी को जमा करके रखने का एक मुख्य तरीका है बांध बनाना। पानी को बड़े पैमाने पर बांध बनाकर उसे एक जगह पर विशेष उद्देश्यों के लिए रोक लिया जाता है। बांध के जल का उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से किया जाता है और सूखे में पानी की कमी से बचा जा सकता है। भारत में भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, मिस्र में अश्वान बांध और पाकिस्तान में तरबेला बांध और अमेरिका में कूली और हैवर बहुउद्देश्य परियोजनाओं के उदाहरण हैं। वर्षा के पानी को जमा करके खेती के लिए और यहाँ तक कि घरेलू जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सावधानी से जमा किया हुआ पानी साफ होता है और सुरक्षित भी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंकिया भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: वन में मेरा मन है।

पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन बचाएं। अमित बेटा।
2: जी माँ।
1: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दादाजी और सोनिया दीदी के पास जाकर बैठो।
2: ठीक है माँ।
1: और हाँ, देखो उन्हें तंग मत करना।
2: अच्छा माँ, मगर तुम जल्दी आना।
1: हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाकर खेलो।
2: अच्छा माँ।

0: सोनू दीदी
1: बोलो।
0: ये देखो मैंने शेर का चित्र बनाया है।
1: अरे वाह इतना सुंदर।
2: अरे वाह भाई वाह अमित, अरे तुमने तो शेर का चित्र बहुत अच्छा बनाया है।
1: शेर तो जंगल का राजा होता है, पर अमित तुमने जंगल तो बनाया ही नहीं।
0: अरे हाँ सुनू दीदी।
1: हाँ
0: ये जंगल कैसा होता है?
1: जंगल
2: जंगल हमारे गांव के पास ही है बेटे।
1: बिल्कुल ठीक।
2: देखो जंगल का मतलब दूर दूर मीलों तक घने पेड़ पौधे झाड़ियाँ, समझे?
1: हाँ।
2: इसमें ढेर सारे जंगली जीव जंतु जैसे बाघ, हिरण, हाथी, हाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं।
1: और जंगल इन सभी जीवों का घर होता है, है ना दादाजी?
2: बिल्कुल सही सोनिया बेटी। दरअसल जंगल यानी वन हमेशा हमारे लिए वरदान रहे हैं।
1: अच्छा
2: समझे? हाँ ये प्रकृति का उपहार है। आज बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण वनों का महत्व और भी बढ़ गया है।
1: अच्छा दादाजी।
2: हाँ भाई अगर वन न हो तो हम सब पर संकट छा जाएगा। हाँ और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही चला जाएगा।
1: पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है दादाजी?
2: अरे बेटा पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं, समझे? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़, पौधे, ये सब कुछ। अगर ये प्रदूषित हो जाएं, यानी गंदे हो जाएं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, समझे? हमारे ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा वो कैसे दादाजी?
2: भाई जैसे गंदा पानी पीने से अनेक बीमारियां होती हैं, वैसे ही प्रदूषित वायु में सांस लेने से सांस संबंधी बीमारी हो जाती है।
1: अच्छा।
2: और बेटे अगर वन न हो तो सभी जीवों का जीना दूभर हो सकता है।
1: वो कैसे दादाजी?
2: सुनो वन वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ पेड़ पौधों के अंदर जो नमी होती है वो वर्षा कराने में सहायक होती है।
1: अच्छा।
2: भाई इन सब के अलावा वनों से हमें ढेरों कीमती सामान भी मिलते हैं। जैसे अनेक जड़ी बूटियां, फल, लकड़ी, रबर, गोंद और पत्तियां और पेड़ों की छालें जिनका उपयोग हम दवा, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ आदि के रूप में करते हैं।
1: अच्छा दादाजी। वन इतने उपयोगी हैं, फिर इनका विनाश क्यों हो रहा है?
2: अरे बेटे इसके बहुत से कारण हैं, जैसे हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है।
1: अच्छा।
2: लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ने लगी है। और भाई लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, इसलिए लोग वनों को काटकर अपने रहने की जगह बना रहे हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ बड़े बड़े कारखानों के लिए भी जगह की जरूरत है।
1: अच्छा।
2: इसके लिए भी वन काटे जाते हैं।
1: अच्छा।
2: और पेड़ों की लकड़ियाँ प्रमुख साधन है। इसके अलावा झूम खेती से भी वनों का विनाश हो रहा है।
1: अच्छा दादाजी। दादाजी ये झूम खेती क्या है?
2: देखो बेटा झूम खेती हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, समझे? भाई इस प्रकार की कृषि में लोग भूमि के एक टुकड़े पर कुछ दिन खेती करने के बाद दूसरी जगह वनों को साफ कर खेती करना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा ऐसा करते हैं?
2: हाँ इसके कारण नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में वन लगातार कम होते जा रहे हैं।
1: दादाजी, इन वनों को बचाया कैसे जाए?
2: अरे बेटा, वनों को तो हम कई तरीकों से बचा सकते हैं।
1: वो कैसे?
2: जैसे ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग न कर कोई अन्य वस्तु जैसे गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा का उपयोग करें।
1: अच्छा।
2: हाँ, और इमारत और फर्नीचर में लकड़ी का उपयोग न करके फाइबर, शीशे, लोहे का उपयोग कर सकते हैं।
1: दादाजी,
2: बोलो बेटे।
1: हम पेड़ काटने से पहले पेड़ लगा भी तो सकते हैं।
2: अरे वाह वाह अमित भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे। सोनिया बेटी।
1: हाँ जी।
2: देखो जरा कौन आया है।
1: हाँ दादाजी, मैं अभी देखती हूँ।

0: अरे रेंजर चाचा आप आइए। नमस्ते।
1: नमस्ते बेटी नमस्ते। काका नमस्ते।
2: अरे भाई रेंजर आओ आओ भाई और सुनाओ कैसे हो। आओ आओ इधर आओ इधर।
1: सब ठीक है काका।
0: चाचा जी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा और सुनाओ बच्चों दादाजी से क्या बातें हो रही थी।
0: हम जंगल के बारे में बात कर रहे थे चाचा जी।
1: अच्छा
0: रेंजर चाचा आप तो जंगल में रह चुके हैं।
1: हाँ?
0: आप हमें बताइए कि वनों को बचाने के लिए लोगों को कैसे बताया जाए।
1: बच्चों ये बातें अनेक तरीकों से बताई जा सकती हैं।
0: वो कैसे?
1: जैसे टीवी रेडियो पर वनों के महत्व को बताकर, अखबारों में वनों के महत्व पर लेख लिखकर,
3: बिल्कुल,
1: और पोस्टर बैनर के जरिए वन बचाने का संदेश देकर।
0: अच्छा चाचा जी वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है?
1: बच्चों पेड़ों को बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं।
0: अच्छा
1: वर्षों पहले उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें गांव के सभी लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया।
2: देखा बच्चों।
0: हाँ जी।
1: ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकड़ी गांव के निकट एक जंगल में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। वहाँ वन विभाग ने जब पेड़ काटने शुरू किए तो गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए।
0: अच्छा
1: इससे मजबूर होकर पेड़ काटने का काम रोकना पड़ा।
2: देखा।
1: इसी तरह राजस्थान के खेड़जली गांव और उत्तरकाशी क्षेत्र के तिलाड़ी गांव के लोगों ने वनों को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है।
2: अच्छा भाई रेंजर ये बताओ कि इस विषय में हमारी सरकार क्या कर रही है?
1: काका हमारी सरकार ने भी वनों को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
0: वो कौन सी कदम है चाचा जी?
1: जैसे बिना इजाजत पेड़ काटने वालों को जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ती है।
0: अच्छा
1: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वनों की कटाई पर नजर रखता है और इसके अलावा सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम की एक योजना भी बनाई है जो अब कई जगह चल रही है। इस योजना के तहत लोगों को ये बताया गया है कि गांव के लोग खुद पेड़ लगाएं।
0: अच्छा
1: और वन काटने के बजाय इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
0: अच्छा
1: और झूम खेती करने वालों के लिए सरकार ने एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाई है ताकि लोग झूम खेती छोड़ दें।
0: अच्छा।

0: सभी साथियों को भी पेड़ लगाने को कहूंगी।
1: बहुत अच्छे।
2: अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बगीचे में चलकर इसकी शुरुआत आज ही से करें।
0: चलो चलो। मैं भी पेड़ लगाऊंगा। हाँ मैं भी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: दो गौरैया।
2: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है।

0: सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई, पिताजी देखिए ना गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं।
1: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
0: अच्छा
1: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
0: हाँ अरे हाँ हाँ पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
2: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गोरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
1: अब ये देखो इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया, उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
3: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ा देती तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
1: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे हैं। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
3: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
1: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़ यहाँ से। इसमें हंसने की क्या बात है?
3: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
1: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
3: ठीक है
1: चल चल चल हट हट उड़।
3: ये अब नहीं निकलेंगी।
1: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
2: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गोरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर, उधर माँ को चिठोली सूझती।
3: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
1: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
0: जी,
1: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
0: जी,
1: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
0: जी। अच्छा पिताजी।
1: हट हट चल।
2: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लग गए। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
3: अरे
1: अरे, अरे
3: क्या करते हो जी,
1: गलती से लग गया।
3: आराम से
2: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए।
3: वाह मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया।
2: माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
1: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
2: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
1: अरे
3: वो देखो फिर से आ गई घर में।
2: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
3: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
1: बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
3: सुनो तो रुक जाओ।
2: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़ी और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
1: गई।
2: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठे। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही हैं। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
4: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी रिश्ता।
2: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठा कर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में 2-3 तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
3: तुम्हारे बस की नहीं है।
1: फिर कोशिश करता।
2: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
4: अब देखो,
2: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा ची ची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
1: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो। माँ पिताजी
3: हाँ।
1: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
3: अरे हाँ बेटी।
2: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। ची ची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ है, कहाँ है हमारे माँ बाप। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
3: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
2: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
1: अरे
2: वो उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
1: सच में
5: छोटे और बड़े।
6: अरे छोटे बड़े।
7: जी दादाजी।
6: मैंने तुम्हारे लिए एक जगह बना दी है ताकि तुम यहाँ आराम से रह सको।
7: जी दादाजी।
6: यहाँ जगह भी अच्छी है और खाने को भी कितना कुछ है। जाओ बेटा अब तुम खेलो।
7: हम खेलेंगे।
6: हाँ जाओ बेटा
7: खेलेंगे।
8: ओ भाई छोटे।
9: हाँ भाई बड़े।
8: आज हम पार्टी करते हैं।
9: हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, लेकिन पार्टी किस खुशी में?
8: हम यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं बिना किसी परेशानी के।
9: हाँ भाई बड़े ये तो तुमने सही कहा, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तो यहाँ खाना भी कितना अच्छा मिलता है और हमारी तो रहने की जगह भी बढ़ती जा रही है।
8: सही कहा भाई तुमने, अब हम अपने और दोस्तों को भी यहाँ रहने के लिए बुला सकते हैं।
9: हाँ भाई बड़े मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुला लूँगा।
8: सभी मिलजुल कर रहेंगे, रोज पार्टी करेंगे।
9: हाँ हाँ हम सब खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे।
10: इस तरह छोटे और बड़े वहाँ बड़े आराम से रहने लगे। क्या आप जानते हो वो छोटे और बड़े कौन थे और वो कहाँ रहने लगे? सोचो। सोचो सोचो। नहीं समझ आया तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। वो छोटे और बड़े कोई और नहीं बल्कि चीनू के दांत में रहने वाले कीटाणु थे। और चीनू चॉकलेट खाकर बिना ब्रश किए जो सो गई थी, इसलिए आज छोटे और बड़े अपने और दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे।

0: निकल।
1: मेरे को तो चॉकलेट और मिठाई मिली।
0: बहुत स्वादिष्ट है।
1: छोटे?
2: हाँ भाई बड़े।
1: चलो और कुरेदते हैं दांतों में।
2: हाँ लगता है कुछ और खाने को मिले।
3: कीटाणुओं के शोर करने से चीनू के दांत में दर्द हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है और वो इसकी शिकायत अपनी मम्मी से जाकर करती है।
4: आ, आ, आ, मम्मा मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
5: क्या दांत में दर्द? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना रोजाना ब्रश किया करो।
4: मम्मा मैं तो रोज ब्रश करती हूँ।
5: तुम सिर्फ सुबह ब्रश करती हो ना, रात को तुमने चॉकलेट खाई थी तब किया था ब्रश?
4: नहीं मम्मी।
5: देखा अब दिखाओ जरा कहाँ हो रहा है दर्द। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ तुम्हें। परेशान मत हो, दर्द ठीक हो जाएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
3: चीनू की माँ और चीनू डॉक्टर के पास जाते हैं।
5: नमस्ते डॉक्टर साहब।
6: अरे नमस्ते नमस्ते कमला जी, आइए आइए।
5: देखिए ना डॉक्टर साहब, इसके दांत में दर्द हो गया है।
6: बस बस घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा?
4: चीनू।
6: चीनू, लगता है चीनी ज्यादा खाती हो हैं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुँह खोलो मुँह खोलो। हाँ थोड़ा सा और। एक सेकंड बस, ये लो इस पे दवा लगा देता हूँ। हाँ इसे खा के कुल्ला करो। बस अब कुछ दर्द कम हुआ बेटा? हुआ ना? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ये कीटाणु की वजह से है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप समय से दो बार ब्रश नहीं करते होंगे। क्यों है ना कमला जी?
5: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
6: देखो बेटा कभी भी लापरवाही मत करना, क्योंकि दांत जो है हमारी सुंदरता का प्रतीक है ना? कितने अच्छे लगते हैं दांत, तो इसीलिए हमेशा दो बार, एक तो हमें सोकर उठने के बाद ब्रश करना चाहिए और उसके बाद सोने से पहले यानी रात को भी ब्रश करना चाहिए। और हमें कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या बताए? ऊपर नीचे, ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि खाने का कोई भी अंश दांतों में फंसा ना रह जाए, समझे? और हाँ समय समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच भी करवानी चाहिए। कमला जी आगे से आप भी ध्यान रखिएगा।
5: जी बिल्कुल।
6: है ना
4: डॉक्टर साहब, क्या मैं कभी चॉकलेट नहीं खा सकती? कभी नहीं मीठा खाऊंगी मैं।
5: डॉक्टर साहब इसको मीठा बहुत पसंद है, ये मीठा के बगैर नहीं रह सकती।
6: समझ गया। देखो बेटा ऐसी बात नहीं है कि तुम मीठा नहीं खा सकती, तुम मीठा बिल्कुल खा सकती हो, चॉकलेट भी खा सकती हो, मिठाई भी खा सकती हो, लेकिन हाँ खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना और दांत अच्छे से साफ करके सोना, जैसे मैंने बताया दो बार ब्रश। समझ गए ना? और एक बात और, अगली बार जब आओगी ना तो हमारे लिए भी चॉकलेट लेकर आओगी? लाओगी चॉकलेट? ये हुई ना बात। शाबाश, जाओ शाबाश।
3: ये सारी बातें सुनकर चीनू के दांत के कीटाणु परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं।
1: अरे भाई छोटे।
4: हाँ भाई बड़े।
1: आप तो हमारे आराम के दिन गए।
4: हाँ
1: हम तो अब भूखे ही रह जाएंगे।
4: हाँ, चलो दादाजी से चलकर।
1: हाँ चलो चलो दादाजी। दादाजी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है।
4: भूख लगी है।
7: हाँ बेटा मैं समझता हूँ। बेटा ये जगह अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है और यहाँ खाने को भी अब कुछ नहीं रहा। चलो हम किसी और दांत में चलकर वहां जगह बनाते हैं। चलो
1: चलो आओ। दादा, चलो
4: चलो
1: दादा, चलो।
3: इस तरह तरह सारे कीटाणु चीनू का दांत छोड़कर नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। चीनू भी अब रोज रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती। बच्चों, अगर आप नहीं चाहते जो कीटाणु अभी अभी बेघर हुए हैं वो आपके दांत में आकर अपना घर बना लें, तो आप भी चीनू की तरह रोज रात को ब्रश करने की आदत डाल लें।

0: राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
2: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
1: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
2: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
1: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
2: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र है।
1: जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
2: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे।
1: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
2: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
1: जी बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर साहब के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
2: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
3: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
1: जी बताइए।
2: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं।

0: और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
0: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और जिसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
1: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
0: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
1: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
0: जी
1: और डॉक्टर साहब,
2: क्या फाइलेरिया की पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
0: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
1: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
0: ये जब अभियान चलता है हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
1: जी और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
0: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में दस बजे से लेके दो बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी, अगर किसी को जाँच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
1: जी जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा
0: बस सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
1: जी,
2: और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
1: जी
0: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
1: जी
3: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
4: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
5: हूँ से आरजे राकेश,
6: अने हूँ से आरजे कमता डामोर,
5: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती बाड़ी, आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर।
3: नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत से तमारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबवानी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश, अने रोजनी जेम तमारी वस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थायो से। अने किसान भाइयों, हूँ रोज तमारी वस मा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायला मुद्दा, खेतीवाड़ी नी समस्याओ अने तिना समाधान नी वातो लीने रोज इना समय पर हाजिर थातो रू से। किसान भाइयों, आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा आपू वात्यो हामलवाना से बोकड़ा पालवानी वात्यो। किसान भाइयों, बोकड़ी ने गरीबों नी गाय के से, अने पशुपालन मा बोकड़ी एक एवो पशु से त्यो कम थी कम समय मा अधिक मुनाफो आपड़ा किसान भाइयों ने आले से। किसान भाइयों, आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा विस्तृत रूप देखी बोकड़ा पालवानी वात्यो वताड़वा हारू आपड़ी हाथे स्टूडियो मा मौजूद थाया से पशु विशेषज्ञ श्री डॉक्टर KL डामोर, अतिरिक्त उपसंचालक पशुपालन अने डेयरी विभाग झाबुआ मध्य प्रदेश देखी। तो सालो किसान भाइयों, हाँ वार नहीं करिए, शुरुआत करिए आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में बोकड़ा पालवानी वात्यों ने।
7: पशु विशेषज्ञ जो कि डॉक्टर साहब के एल डामोर साहब जो कि अतिरिक्त उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला झाबुआ से हैं। तो सर जी नमस्कार।
8: नमस्कार।
7: सर जी ये बताइए कि बकरी पालन के लिए किसान भाइयों को आवास कैसा रखना चाहिए?
8: अच्छी बात है ये, जैसे हमारा पशुपालन विभाग शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों तक सुविधाएं अधिक से अधिक लाभ देने के लिए तत्पर हैं। बकरी हमारे यहाँ किसान को गरीब की गाय कही गई है। बकरी
7: जी जी
8: किसानों के लिए
7: जी
8: बकरी को गरीब की गाय कहा गया है। अब स्वाभाविक है कि केवल हम गाय पालन या भैंस पालन करें, उसके साथ साथ में हम बकरी पालन भी करें
7: जी,
8: क्योंकि हमारे यहाँ झाबुआ जिले में एक तो खूब बड़े बड़े किसान नहीं, रकबा जमीन का छोटा है
7: जी,
8: तो कम संसाधन में अधिक से अधिक हम उसकी आय को बढ़ा सकें, ऐसा कोई प्रयोजन हो तो उसके लिए लाभदायक
7: जी जी।
8: तो बकरी के लिए कोई चारा पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है
7: जी जी,
8: है ना
7: जी सर,
8: घर में ही अपन रख सकते हैं
7: जी सर।
8: और बकरी के लिए खासकर हम लोग पालन करते हैं, बकरी पालना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे झाबुआ जिले के हर किसान के घर में बकरियां पाई जाती हैं
7: जी जी,
8: हर किसान हमारा बकरी पालता है क्योंकि वो उसकी एक प्रकार से छोटी सी बैंक है वो, उसको जब आर्थिक कोई परेशानी होती है तो तुरंत बकरी पकड़ के ले जाता है और बेच के
7: हाट में बेच के अपना रोजगार
8: तात्कालिक व्यवस्था उसकी उसी से होती है
7: जी जी।
8: पर कुछ चीजें ऐसी है जिसमें जो हमारा पशुपालक बकरी पाल रहा है उसमें और बेहतर हो सकता है, उसको अधिक आमदनी हो सकती है, उसी में कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत
7: जी जी।
8: उसके लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो मैंने देखा है जो बकरियों का रख रखाव है वो तो काफी अच्छे तरीके से लोग करते हैं, क्योंकि दूसरी जगह तो लोग बाहर बाड़ों में बांध देते हैं, एक तरफ रखते हैं, हमारे यहाँ तो किसान भले बाहर सोएगा पर उसको घर के अंदर रखेगा,
7: बकरी को घर में रखेगा।
8: कुछ तो परिवेश ही, हमने यहाँ की स्थितियां भी ऐसी है कि रात में कोई चोरी चमारी भी हो जाती, इससे सेफ्टी के उद्देश्य से भी, सुरक्षा के उद्देश्य भी रखता है
7: जी जी,
8: इसलिए वो बढ़िया सूखी जगह में रखता है, मैंने देखा कच्ची जगह में भी रखता है। और
7: जो बकरियों में कौन सी आयु में लगता है सर?
8: ये तो हम चार जो कि हम समझते हैं नहीं, और कभी जब ऐसी बीमारियां चलती है तो फिर हमारा बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो
7: जी, एक साथ मर जाते
8: एक साथ मर जाते हैं
7: जी।
8: तो वैक्सीनेशन हमें बहुत जरूरी करवाना है। बाकी दूसरा जो सीजनली कुछ चीजें हैं जैसे अभी बारिश में जैसे ये मुंह में होठों पे घाव हो जाते हैं,
7: हो जाते हैं, पांव में भी हो जाता है
8: हाँ, वो जिसको कंटीजियस एक्थाइमा कहते हैं
7: जी जी।
8: तो इसमें क्या है जैसे हमारा पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह से मुंह धो, एंटीसेप्टिक मलम आते हैं उनसे अपन लगाव करो, तो वो
7: पका मुंह पका
8: तो उसमें अपन जाके अस्पतालों के पास जो भी नजदीक है वहां जाएंगे तो अपना इलाज बराबर हो जाएगा
7: जी।
8: अभी जैसे बरसात के समय में इसके साथ साथ में पैरों की सड़न हो जाती है
7: जी जी,
8: गीले में चलती है कीचड़ में तो उसमें भी घाव वगैरह हो जाते हैं, कभी कभी वो जंतु वंतु रख जाते हैं, वो दिक्कत आ जाती है
7: जी जी।
8: तो उसके लिए भी हम पोटेशियम परमैंगनेट से उसको पेट को धोके सूखी जगह में
7: लाल दवाई
8: जी जी, और जो भी अस्पताल में जाके एंटीसेप्टिक मलम वगैरह लेके उसका इलाज करवा लेंगे तो वो भी कवर हो जाए, वो संक्रामक नहीं
7: मतलब फैलने वाला नहीं।
8: जो कार्टेरिया संक्रामक बीमारियां ऐसी रहती है जो एक के दूसरे से संपर्क से फैलती
7: है, उनके टीके लगते हैं
8: जो पीपीआर और इंट्रोटॉक्सिमी, ये अपने जीवन काल में पशुओं को बहुत जरूरी है
7: जी जी।
8: अगर इससे हम बचा लेंगे तो हमारा कोई नुकसान आर्थिक नहीं होगा।
7: सर बकरियों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए और उनको आहार कैसा देना चाहिए प्रतिदिन? जैसे
8: आहार के लिए ऐसा है हमारे यहाँ क्या है, वैसे तो बकरियों को खूब बड़ा दाना पानी लगता नहीं है, पर जैसे हमारा कोई बकरी गाभिन है तो कम से कम हमारे यहाँ बकरियों का जो गर्भकाल होता है वो पांच महीने का
7: होता है,
8: 5 महीने 150 दिन का
7: जी जी,
8: 150 से 160 दिन ज्यादा 55 दिन
7: जी।
8: तो हाँ, कम से कम जो हमारा गाभिन पशु है उसको हम कम से कम 2 महीने पहले
7: हाँ चरने जाने से रोक लेना चाहिए
8: हाँ, उसको अलग रख ले
7: जी,
8: उसका बांधना बैठना उठना अलग करें और उसको दाना चालू कर दे
7: जी,
8: 200-250 ग्राम
7: प्रतिदिन
8: प्रतिदिन के हिसाब
7: जी।
8: तो वो जो हमारा उसका जो आने वाले बच्चों के लिए वो जो उसके उसका अडर बनेगा उसका दूध दूध की वो जो तैयारी है उस हिसाब से उसका दूध का उत्पादन बढ़ेगा, उसके शरीर की आवश्यकता पूरी होगी
9: जी जी,
8: तो बच्चे भी अच्छे बनेंगे उसके, तो वो जरूरी है अपने को, उससे अपने को उत्पादन अच्छा मिलेगा
9: जी सर।
8: और प्रोजनी जो आएगी बच्चे वो वजन भी अधिक समय में कम समय अधिक ग्रहण करेंगे
9: जी जी,
8: तो आर्थिक लाभ भी हमको अच्छा होगा उससे।
9: तो सर जी ये बताइए कि अगर हमारे किसान भाई पशुपालन विभाग से अगर जिनके पास आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो ऐसे किसानों को ऐसे हितग्राही को पशुपालन विभाग या सरकार से क्या क्या दिया जाता है सर?
8: हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है आपका
9: जी।
8: पशुपालन विभाग से हमारी बकरी की योजना लागू है जिसमें 10 बकरी देसी
9: जी
8: और एक बकरा उन्नत नस्ल का,
9: उन्नत नस्ल
8: तो 10 बकरी और एक बकरे की एक इकाई कही
9: जी जी,
8: और इसकी कीमत कम से कम पूरी इकाई लागत जो है वो 77,500 रुपए के लगभग
9: लगभग है।
8: तो इसमें हमारे आदिवासी और हरिजन जो किसान है उनके लिए 60% की सब्सिडी
9: अनुदान है,
8: अनुदान
9: जी जी
8: करीब 45,000 के आसपास है
9: जी,
8: 77,000 के ऊपर ऊपर जो भी बने उसका 60% और सामान्य वर्ग के लिए 50%।
9: तो सर जी ये बताइए कि उसमें हमारा किसान भाई के पास क्या क्या होना चाहिए या जमीन होना चाहिए क्या?
8: नहीं, इसके लिए कोई ज्यादा जमीन अमीन की जरूरत नहीं है, पर ये जो योजना है वो बैंक से संबंधित है
9: जी जी,
8: हमारी सब्सिडी के साथ साथ
9: बैंक
8: का लोन
9: लोन लोन देगी।
8: अब अगर हमारे हितग्राही का कोई कहीं से खाता वाता डिफॉल्टर हो कोई कर्ज बाकी हो तो ये हमें इसका लाभ लेने में दिक्कत
9: आएगी,
8: इसीलिए हमारे बैंक का कोई लोन ना हो, हमारा बैंक का क्रेडिट अच्छा हो,
9: ऐसा किसान उसका लाभ
8: ले, ऐसा किसान इसका बराबर लाभ ले सकता है। बिना बैंक के सेंक्शन किए इस योजना का लाभ उसको हम नहीं दे सकते
9: जी। सर बकरी पालन के अलावा भी हमारे यहाँ पे पशुओं पे जो दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए जैसे डेयरी पालन है या अन्य छोटे जो इकाई है ऐसी कोई दी जाती है?
8: हाँ उसमें दी जाती है ना, 4 पशु 5 पशु या 10 पशु 2 इकाई है, आचार विद्या सागर योजना
9: जी जी,
8: उसमें गाय पालन और भैंस पालन दोनों का है
9: जी जी।
8: गाय में अपन जर्सी HF भी पाल सकते हैं, गीर साहिवाल वगैरह देसी नस्ल की भी पाल सकते
9: जी जी,
8: तो भैंसों में भैंसों का ही वो भी 5 और 10 की इकाई
9: जी जी,
8: तो अपन जो चाहे 5 पशु की इकाई के लिए उसमें 1 एकड़ जमीन की जरूरत है और 10 पशु के लिए 2 एकड़ जमीन,
9: 2 एकड़
8: और जो हितग्राही जिसके नाम से अपन योजना का लाभ लेना चाहे जमीन उसी के नाम की
9: होना चाहिए
8: और वही है वो बैंक से संबंधित है जब तक फिर उसका बैंक का व्यवहार अच्छा होगा तो बैंक उसको लोन कर देगी
9: जी जी।
8: इसमें आदिवासी हरिजन लोगों के लिए 2 लाख के लगभग है अधिकतम
9: जी, जी जी,
8: और इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1.5 लाख
9: जी,
8: ये हमारी लिमिट है
9: जी,
8: और जब तक बैंक सेंक्शन नहीं देगी तब तक इसका लाभ किसी पशुपालक को नहीं मिल पाएगा।
9: सर जी बताइए कि जैसे हमारे किसान भाई अधिकतर लोन लेकर करते हैं या फिर किसानों के पास में घर पे भी देसी गाय और बैल भैंस होते हैं और बकरियां भी होती है, तो क्या सर इनका बीमा करवाने के लिए शासन के पास कोई इसकी योजना है?
8: शासन के पास बीमा की भी योजना है
9: जी,
8: क्योंकि आजकल हमारा पशु काफी महंगा हो गया
9: जी,
8: इसलिए शासन ने पशुधन बीमा योजना लागू करी है
9: जी जी,
8: जिसमें सब्सिडी 70% तक 70% तक 1 साल का बीमा होता है
9: जी,
8: और 3 साल का बीमा होता
9: जी जी,
8: ये उसका प्रावधान है
9: जी,
8: और इसकी जो वो लगती है अपनी प्रीमियम
9: जो राशि
8: राशि लगेगी, हाँ बीमा राशि लगेगी
9: जी जी,
8: उसका
9: किसान भाई को
8: उसकी कीमत के अनुसार
9: जी जी
8: जो राशि बनेगी उसके केवल 70% उसकी राशि उसको देना है, बाकी 30% उसको खुद को देना है। मतलब ये है कि जैसे 100 रुपए की मान लो बीमा की किस्त बन रही है उसका प्रीमियम बन रहा
9: जी जी,
8: तो 30 रुपए उसको देना है, 70 रुपए गवर्नमेंट मिला,
9: 70 रुपए गवर्नमेंट देगी,
8: तो उसमें अपनी रिस्क कवर हो जाती
9: जी जी।
8: तो उसमें हम हमारे पशु को बीमित रखें उसमें 10 बकरियों की एक इकाई गिनी गई
9: जी जी,
8: तो हम 50 बकरी तक का बीमा कर सकते हैं
9: जी जी,
8: और पशु बढ़ा लेंगे तो केवल 5 लाख
9: जी जी,
8: तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है और ये भी सभी को पता होना चाहिए
9: जी जी,
8: क्योंकि समय निकल जाता है और मान लो जैसे हमारे पास 10 पशु है 10 बकरियां हैं
9: जी जी,
8: अब मान लो कोई 2 बकरी भी मर गई तो हमारा बीमा उससे कवर हो जाता है, हमारी लागत भी वसूल हो जाती
9: जी जी,
8: तो जानकारी के अभाव में हम बीमे का भी लाभ नहीं ले पाते
9: हैं। तो सर जी हमारे यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि उनके पास 2 बैल तो होते ही हैं लेकिन उन दो बैलों का भी बीमा नहीं करवाते हैं। तो सर जी बीमा करवाने की जो प्रक्रिया क्या है?
8: बीमा प्रक्रिया कोई ज्यादा जटिल नहीं है
9: जी जी।
8: आजकल सब क्या है ऑनलाइन ऐप के माध्यम से होता है
9: जी।
8: इनके बकरी वो बीमा के एजेंट रहते हैं
9: हाँ।
8: उनके द्वारा नियुक्त होते हैं जो प्राइवेट कंपनियां करती है
9: जी जी।
8: जो शासन से बीमे के लिए अनुबंध करते
9: अनुबंध करते हैं
8: साल के लिए दो साल के लिए जो भी हो जैसा भी अनुबंध शासन से हो जाए
9: जी जी।
8: वो उनके एजेंट रखती है और जो हमारे विकास खंड स्तर पर जो पशु चिकित्सक है
9: जी जी
8: पशु चिकित्सा अधिकारी है हमारे,
9: जी जी।
8: वो इनका बीमा करते हैं
9: जी सर।
8: या पशु चिकित्सालय जहाँ पर है वहाँ पे हमारे पशु चिकित्सक सर्जन की पोस्ट होती है
9: हाँ।
8: वो बीमा करते
9: बीमा करते हैं।
8: और नहीं तो अपने विकास खंड में जाए सीधे
9: जी।
8: और वहाँ जो अपने चिकित्सक है उनसे बात करें
9: हाँ।
8: तो अपना आधार कार्ड नहीं आजकल आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है और अपने बैंक की पासबुक
9: जी
8: ये चीजें लगती है। और उसमें एक अपना जैसे आदिवासी या जो भी हो अपनी कैटेगरी के लिए एक वो प्रमाण पत्र मिल जाए
9: हाँ,
8: उसमें क्या सब्सिडी कुछ अंतर रहता है
9: स्थायी जाति प्रमाण पत्र से
8: हाँ, तो वो मिल जाए तो वो उसका लाभ हम ले सकते हैं
9: जी जी।
8: तो ये मेरा सभी से अपील है कि अपन सभी अपने पशुओं का अधिक से अधिक बीमा करवाएं
9: जी।
8: और अपने नजदीकी जो भी अस्पताल है वहां जाके अपन संपर्क करें और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें
9: जी जी। तो किसान भाइयों अभी बकरी पालन एवं पशुपालन के संबंधित हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर के एल डामोर साहब और डामोर साहब ने बहुत अच्छी पशुपालकों को हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। तो किसान भाइयों ऐसी जो जानकारी जो आपको दी है ज़रूर आप उनका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और सर जी हमारे स्टूडियो में आए श्री डामोर साहब को और रेडियो पर सुनने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
8: नमस्कार।
10: हूँ से आरजे राकेश
11: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
10: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर।
3: तो चलो किसान भाइयों हाव लई एक नानो ब्रेक अने ब्रेक मां आपू हामलवाना से आपड़ा आदिवासी भील समुदाय मां जब लाड लाडियां पैणे अने तीन मां जो गावे त्यू घणो मजानो अने असल गीत हामली ने पासा भेळा था हूं कार्यक्रम खेतीवाड़ी मां जाजो मधी कई था हामल तारे जो झाववानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM।
12: या

0: एकमता डामोर
1: तमु हामले रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंकिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर ब्रेक ना बाद एक वक्त फिर देखी स्वागत छे तमारो कार्यक्रम खेतीवाड़ी मा। तो किसान भाइयों कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने अगाड़ी बढ़ावी अने हामली हावापू कुकड़ा पाळवानी वात्यो। तो किसान भाइयों आपड़ा भारत वर्ष मा पूरा राज्यों मा अने तीनुना राज्यों ना अलग अलग जिला मा कुकड़ानी मांग दने दने वधती जाय रही छे। इनी बजार मा जेत्री मांग रहे तेत्रो इनुनो दाम रहे एत्रे आपड़ा किसान भाई हाव जगह जगह पोल्ट्री फार्म खोली ने कुकड़ा पालवानु काम पण शुरू करी नाख्यु छे। केम की किसान भाईयो इनामा घणो असला ने मोटो मुनाफो देखावा लागी गयो छे। पढ़ा लिखा किसान भाई पण हाव तकनीकी तरीका देखी कुकड़ा पालन फार्म खोली ने घणो असला ने मोटो मुनाफो कमाई रह्या छे। तो किसान भाईयो इना कार्यक्रम में आपू कुकड़ा पाळवानी वातो सांभळी रह्या छे अने बधी वातो आपुन वताड़ी रह्या छे तकनीकी तरीका देखी कृषि विज्ञान केन्द्र झाबवाना सहयोग देखी मारा सहयोगी भाई कमताड़ा मोरजी। तो सालो किसान भाईयो हा वारनी करी अने सांभळी कड़कनाथ मुर्गा पालन नी वातो।
2: तो किसान साथियों खेतीवाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी हूँ आज किसान भाईयो ने कड़कनाथ मुर्गी पालन की कम करवानो तीना बारा मा जानकारी सांभळावी रह्यो छे। तो किसान साथियों कड़कनाथ कुकड़ा नी एक नस्ल छे अने तीना काला मासी ना नाम थी जाने जाए से।

0: रोशनी।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM का एक खास प्रोग्राम

0: एक खूबसूरत संगम है। इंडिया से अमेरिका तक का सफर, एक माँ के रूप में अपने बेटे की मुश्किल जर्नी को समझना, उसके लिए मेडिकल नॉलेज हासिल करना और फिर भी इस अनुभव को अपना मिशन बनाकर नर्सिंग और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर की दुनिया में कदम रखना, उनकी ये कहानी सच में प्रेरणा देने वाली है। आज भी 73 इयर्स में मेमोरियल हर्मन में सेवा जारी रखने वाली बिंदु जी ने अपनी जिंदगी में कई ऐसे पल देखे हैं जहां दर्द ने उन्हें तोड़ने की बजाय उन्हें और मजबूत बनाया है, और उनकी फेथ, पेशेंस और कंपैशन उन्हें दूसरों से बहुत अलग भी बनाते हैं और दूसरों के लिए एक रोशनी की उम्मीद भी देते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं बहुत ही गर्म जोशी के साथ बिंदु जी का।
1: गुड इवनिंग मैम,
2: कैसे हो तनिषा?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: बस
1: जी जी, शुरू करें?
2: बिल्कुल ओके। मेरी आवाज ठीक से आ रही है?
1: आपने ब्लूटूथ या कुछ लगाया हुआ है क्या जस्ट बाय एनी चांस?
2: नहीं नहीं, नथिंग एट ऑल।
1: तो आप थोड़ा सा क्लोज आ सकते हैं, या तो स्पीकर या तो माइक के, या थोड़ा सा या थोड़ा तेज बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ठीक आ रही है बट बहुत ऐसे आ रहा है कि जैसे बहुत लो है।
2: अच्छा, मेरा वॉल्यूम तो एकदम इट्स ऑन द टॉप, इट्स द हाईएस्ट।
1: हाँ जी,
2: आई एम होल्डिंग द फोन इन माय हैंड।
1: परफेक्ट परफेक्ट,
2: अभी ठीक से?
1: हाँ जी हाँ जी, बेटर बेटर देन द हलू जी।
2: चलो, विल डू द बेस्ट वी कैन।
1: Yes, ma'am. All the best. तो बिंदु मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग्ड के एक और स्पेशल प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, ह्यूस्टन में बहुत जबरदस्त गर्मी है।
1: जी,
2: तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अपने प्रोग्राम के अंदर फिर से।
1: जी, बहुत बहुत वॉरंटेड था ये इनविटेशन, बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था और हमने हालांकि इसकी बात पहले ही करी थी जब हमने पेट शो किया था, और तब से लेकर आई थिंक डेस्टिनी वेट करी थी कि कब हम इस गहरे टॉपिक पर, इस यू नो एहसासों से भरे टॉपिक पर बात कर पाए, क्योंकि ये एक बहुत डिफिकल्ट प्रोग्राम होगा मेरे लिए भी टू होल्ड माई सेल्फ अप एंड जस्ट आस्क यू क्वेश्चंस मैकेनिकली, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट नॉनदलेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द शो एंड टेकिंग आउट द टाइम मैम, थैंक यू।
2: इट इज माई प्रिविलेज
1: जी,
2: थैंक यू।
1: शुरू करते हैं मैम, आज का ये एपिसोड हम पीछे देख के शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन में जो डॉट्स होते हैं, बहुत सारे लोग हमें हमेशा ये सिखाते हैं कि पास्ट को भूल जाओ, मूव ऑन करो, सब कुछ एवरीथिंग सेड एंड डन, बट मैं ये मानती हूँ कि अब हमारा पास्ट ही हमें बनाता है, हमारा पास्ट हमारा आज क्रिएट करता है, और अगर हम पास्ट में जाके डॉट्स नहीं कनेक्ट करते तो हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं, सीख नहीं पाते जीवन से। तो इसी एहसास के साथ मैं बैकवर्ड जर्नी से आपकी शुरू करना चाहूंगी मैम। जब आपको सबसे पहले ये पता लगा कि आपके जो सन है, आपके एल्डर सन केविन, वो सुन नहीं सकते, तो वो एक वर्ल्ड ऑफ साइलेंस की फीलिंग, वो एक डार्क फ्यूचर की जो फीलिंग थी, वो किस तरह से थी उस समय और आज, आफ्टर ऑल दीज इयर्स, आफ्टर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव गॉन थ्रू, जब आप पीछे देखते हैं और उस खामोशी को याद करते हैं, उस खामोशी के जो स्क्रीम्स हैं उसको याद करते हैं, तो आपको क्या लगता है, कैसा एहसास होता है, और क्या आपको लगता है कि वो सच में वो खामोशी नहीं एक आवाज थी और आपका मकसद थी जीवन में?
2: बिल्कुल सही है, ये सही है कि जब मेरा बेटा कविन, मेरा छोटा बेटा कविन पैदा हुआ था ना, तो ऑल दैट आई कुड इमेजिन उसके लिए वर्ल्ड ऑफ साइलेंस एंड डार्कनेस ही दिखता था मुझे, क्योंकि मैं बहुत एक तो उम्र में छोटी थी, बहुत इमेच्योर थी और बहुत लिमिटेड नॉलेज था मेरा, ऑलमोस्ट जीरो ऑफ ऑल दी एडवांसमेंट्स जो मेडिकल टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं और सब रिसोर्सेज जो आजकल अवेलेबल हैं, जो उन दिनों में ना तो मुझे मालूम था और ना पता था कि मेरे को भी मिल सकते हैं वो रिसोर्सेज। तो एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बॉडी ने भी जो रिस्पॉन्ड किया, ये जब हो गया एकदम शॉक लगा ना, तो मेरे कानों

0: में से भी मतलब मुझे सुनना बंद हो गया. मेरे ख्याल में इसको शायद मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं साइकोजेनिक रिस्पॉन्स, विच इज अ टर्म. इट्स एक्चुअली अ टेम्पररी रिस्पॉन्स शॉक. तो ये एक्चुअली एक टर्म होती है जो ऑफकोर्स मुझे तो मालूम नहीं था क्योंकि मैं मेरी नॉलेज बहुत ही लिमिटेड थी. एंड परहैप्स आई नीडेड टू फील दैट साइलेंस दैट आई हैड इमेजिन्ड फॉर माय चाइल्ड. और मेरे उस वो जो मोड़ आया मेरी लाइफ में, इट जस्ट टुक अ टोटली डिफरेंट 360 डिग्री टर्न. और वही खामोशी ही आज मेरी सबसे बड़ी आवाज बनकर इतनी सारी लाइफ्स को टच कर रही है. क्यों, यू नो, वी आर स्टोरी, वी आर रेडियो, डॉक्यूमेंट्री, यू नो, फिल्म. और वही खामोशी ही सब्सिक्वेंटली जो मेरा वैल्यू सिस्टम बन गई, इतनी प्रोफाउंड इंस्पिरेशन बन गई है. जो लोगों को मैं कभी मिलूंगी भी नहीं, पर कहीं भी अगर पहुंचे किसी को भी होप दिलाए तो दैट इज अ ब्लेसिंग.
1: बहुत ही खूबसूरत नाम है. उस खामोशी में भी आपने पर्पस ढूंढ लिया एंड हैट्स ऑफ टू यू. बहुत कम लोग ये कर पाते हैं. बहुत स्पिरिट चाहिए एंड बहुत गट चाहिए टू एक्चुअली डू दैट. इसी से मेरा अगला सवाल है कि जब हम आगे चले, आपने ये कंडीशन, स्पेशली हम जब ग्रीफ, हमारे पास कुछ भी आता है तो ग्रीफ के 5 स्टेजेस होते हैं जिसमें सबसे पहले हम डिनायल में होते हैं और फिर इवेंचुअली हम 5th स्टेज पे आते हैं एक्सेप्टेंस की तरफ. और फिर एक्सेप्ट करने के बाद हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उससे बाहर कैसे आ सकते हैं, वो सब सोचते हैं. तो आई थिंक आप बहुत क्विकली उन 5 स्टेजेस को क्रॉस करके एक्सेप्टेंस पे आ गए एंड यू केम टू अ वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन टुवर्ड्स द होल इशू. जब आपको ये समझ आया कि केविन को ये इशू है, बायलेटरल एट्रिशिया इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो आपने पिट्सबर्ग में जो पब्लिक लाइब्रेरी है वहां जाके आपने बहुत मेडिकल जर्नल्स पढ़ना शुरू करे. बिल्कुल रिसर्चर के रूप में आपने अपने आप को ढाला और बहुत सारा रिसर्च करके इस सबको, इसके पीछे की जो नॉलेज है उसको लिया. और उस जमाने में जब बहुत सारे सोर्सेज नहीं थे, आज तो हम एक क्लिक पे वी हैव लाइक ऑल ऑफ अस आर इंटरनेट डॉक्टर्स बेसिकली, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज हैं, बट उस जमाने में इतना एक्सेस नहीं था. तो आप किस तरह से आपने ये जर्नी को अपना जिया, किस तरह से आप इवॉल्व हुए, क्या आपको इमोशनल सपोर्ट था उस टाइम पे? बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था बिकॉज यू वर बाय योरसेल्फ, योर फैमिली वाज आउट इन इंडिया. सो हाउ डिड यू कोप अप, आपने कैसे ये सब किया?
0: टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी इस बात से बहुत ही आश्चर्य होता है कि जिस मेंटल और इमोशनल स्टेट में मैं थी उस समय, कि मेरे दिमाग में ये आया भी कैसे कि मैं लाइब्रेरी जाकर रिसर्च करूं. यू नो, बट हैविंग नो बैकग्राउंड इन मेडिसिन और एनी सीरियस हेल्थ इश्यूज, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था. मैं टीचर होती थी स्कूल की और अभी तो मैं मतलब काफी अर्से से वो भी नहीं किया था, पर हम तो सिर्फ डॉक्टर्स पर ही विश्वास करते हैं ना, क्योंकि दे आर लाइक गॉड टू अस. उनका वर्डिक्ट जो है वो हमारे लिए एकदम फाइनल हो जाता है. और मेरा बेटा एक छोटे से सबर्बन हॉस्पिटल में पैदा हुआ था पिट्सबर्ग के. जब पीडियाट्रिशियन ने सुबह आके बेबी को एग्जामिन किया तो एक ताली बजाई उसके कानों के पास, और जिससे कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं मिला ऑब्वियसली, तो हमसे कहा गया कि ये बच्चा डेथ होगा. और हमने मान भी लिया कि इसी करके मैंने परसीव किया कि ये वर्ल्ड ऑफ साइलेंस ही रहेगा मेरे बच्चे के लिए. तो उस वक्त मेरी सोच भी इतनी मतलब इमेच्योर सी थी, पर जो डॉक्टर ने कह दिया बस वही हमारे लिए हो गया. बट मेरी जेठानी जो थी वो डॉक्टर थी कनाडा में, उन्होंने मुझसे सवाल पूछे कि क्या कोई ऑडिटरी टेस्टिंग भी हुई थी कि सिर्फ मतलब इतने से एक ताली बजा के बोल दिया. तो अपने बच्चे को हम फिर पिट्सबर्ग में एक बड़ा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल था, हम वहां चले गए जहां पे फॉर्मल ऑडिटरी टेस्टिंग भी हुई और पता लगा कि केविन की जो ऑडिटरी नर्व थी वो डैमेज नहीं हुई थी. और सो उसका हल भी हमें वहीं से मिला. इन होम थेरेपी हुई, बोन कंडक्शन हियरिंग एड मिली, सर्जरी वगैरह, ये सब के बारे में हमें वहीं से ही ज्ञान प्राप्त हुआ. और तब मुझे हिम्मत भी मिली और थोड़ी सी उम्मीद भी मिली और वो इंस्पिरेशन मिल गई रिसर्च करने की. और ये कैसे हुई ये भी डिवाइन इंटरवेंशन ही हो सकती है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आनी ही नहीं थी कभी भी. और हमारे अपार्टमेंट बिल्डिंग में दो एक सीनियर लेडीज रहती थी, तो वो मेरे बच्चों को संभालती थी, बेबीसिट करती थी, और फिर मैं लाइब्रेरी जा सकती थी थोड़ा ये सब पढ़ने के लिए. तो उन दिनों में तो बिल्कुल भी ऑनलाइन का तो क्या सवाल ही नहीं उठता था. तो और आज मैं मदर बेबी नर्स हूँ इतने सालों के बाद, और हर एक बेबी की ऑडियो टेस्टिंग ऑडियो स्क्रीनिंग इज पार्ट ऑफ आवर प्रोटोकॉल ना. हर एक बच्चे को टेस्ट किया.
1: इमेजिन कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है अगर आप डबल चेक नहीं करते अपने फैमिली डॉक्टर से, आपके रिलेटिव से. ब्लंडर अमेजिंग. बट वही है कि आई थिंक डेस्टिनी इज ऑल स्क्रिप्टेड. भगवान को पता होता है किस रास्ते से ले जाना है, एंड जो अच्छे लोग होते हैं उनको वो सच में कैरी करते हैं इन हिज हैंड्स. तो इन्हीं एहसासों के बीच हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत आप ही की खूबसूरत आवाज में, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स यादें फ्रॉम द फिल्म यादें.

0: बहुत ही बेहतरीन गायकी मैम, ब्यूटीफुल सिंगिंग एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग। आगे चलते हैं।
1: थैंक यू
0: जी। जैसे मैंने कहा कि ग्रीफ के स्टेजेस होते हैं, जिसमें से एक स्टेज होता है नेगोशिएशन का स्टेज, जब आप भगवान से यू नो तोल मोल करते हो, उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करते हो कि मेरे साथ क्यों किया आपने, कैसे किया। तो उस स्टेज में आपने हमें बताया कि आपके फिजिशियन के बाद जब आप भगवान से सवाल करते थे, तब चर्च में आपको सिस्टर बेंडर मिले, उनसे आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने आपसे कहा कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे एक पर्पस है जो भगवान एक दिन जरूर रिवील करेंगे आपको। तो उस होपलेसनेस का जो दौर था आपके आपके जीवन में, उसमें आपको उनकी बातों पर कितना यकीन था? क्या वो सिर्फ एक दिलासा था या उस समय आपको हिम्मत मिलती थी? किस तरह का आपका रिश्ता था सिस्टर बेंडर से, उनके बारे में थोड़ा बताएं।
1: ऐसा है कि जब आप उस स्टेट में होते हो तो कहते हैं ना, डूबते का सहारा जो होता है वो दिन का भी हो जाता है। और मैंने कहा बहुत, मैं यंग थी, मैच्योर थी, सोच भी कम थी और जो भी जैसे कहता था मैं मान जाती थी। और पिट्सबर्ग में हमारे हस्बैंड के बॉस थे, वो भी इंडियन थे, और उनकी वाइफ जो थी वो मुझे बार बार यही एहसास दिलाती थी कि मैं किसी चीज के लिए पनिश हो रही हूँ या पिनलाइज हो रही हूँ फॉर सम सिन दैट आई माइट हैव कमिटेड एंड दैट यू नो गॉड इज गिविंग मी, ही रिप्रिमेंडिंग मी, जिस तरह से। तो इस तरह के यू नो तभी मेरे मन में सवाल आते थे कि मैंने किसी की बुरा नहीं सोचा है, अपनी जिंदगी को भी बहुत सिंसियरली और ईमानदारी से हमेशा जीते रहे हैं, जैसे परवरिश भी हुई, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इस करके मैं पूछती थी। तो मेरे दिमाग में बहुत गिल्ट फीलिंग आनी शुरू हो गई कि क्या मैं इतनी सच में इतनी बुरी हूँ कि ये ना मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। खैर एनीवे वो जब तक था, मतलब आई हैड टू डील विद ऑल दोस फीलिंग्स व्हिच वाज नॉट इजी। वो बहुत गिल्ट फीलिंग बहुत ही बुरी होती है।

0: you know, all of these trials and tribulations in our life, so that we in turn can become a blessing to someone facing a similar situation. और किसी दिन वो हमको जरूर reveal करेंगे. And वो मुझे ये बोलते हैं कि this is God's word, this is not my word. And you know, God does not lie. तो उनकी बात का, तो अब मैं जब सिस्टर बेंडर को देखती थी और उनकी बातों पे मुझे इतना यकीन हुआ, इतनी कन्विक्शन के साथ वो मुझे मेरे से बात करती थी और एकदम अपनी मतलब बच्चे की तरह ही बोलती थी, पर वो उनका समझाने का बात करने का तरीका ऐसा था कि मैं उन पे बहुत यकीन होना शुरू हो गया फिर. एंड देन आई वॉज जस्ट वेटिंग कि चलो वो दिन जल्दी आए जब मुझे पता लग जाए कि ये क्यों हुआ,
1: क्या था. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हम ढूंढते हैं ना, कि हम सुनते हैं, हमको उस समय दिलासा भी मिलता है, बट जब हम वापस अपने आप में जाते हैं तो हम फिर भी यही सोचते हैं कि कब आएगा वो पल, कब आएगा जब मुझे ये एक्चुअल.
0: तो सोचा कि ऐसे करते हैं, पार्ट टाइम भी करूंगी. ने मुझे बोला बहुत रे है क्या, आपकी जेठानी भी डॉक्टर है, आपकी भाभी भी डॉक्टर है, तो ये क्यों. तो फिर मैंने कहा कि बस यही मेरी किस्मत में था और यही रीजन थे जिसमें मुझे ये डिसीजन लेने में थोड़ी सहायता हो गई.
1: ब्यूटिफुल मैम, अमेजिंग. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज होती है सच में लाइफ में. आपसे बात करके मुझे ये रियलाइज और ज्यादा स्ट्रांगली होता जाता है. और कितने सारे लोग होते हैं हमारे जीवन में, जैसे सिस्टर बेंडर थी, जैनेट थी, और वहां जो आपको मिले, जो यूनिवर्सिटी में जो मैडम मिले जो दिल्ली से हेल करते थे, तो कितने सारे लोग हमारी जर्नी में कैसे इंस्ट्रूमेंटल रोल्स प्ले करते हैं हमें वहां तक पहुंचाने के लिए जहां हमें पहुंचना होता है. इट्स ब्यूटिफुल. एंड एक्चुअली गॉड के जो प्लान्स होते हैं वो उनके ईश्वर का गर्भ बोलते हैं ना, उसी में होते हैं. और मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. ये बिल्कुल, आई थिंक दिस इज द मोस्ट एप्ट स्टेटमेंट ऑफ लाइफ. अगर जितनी जल्दी आप ये समझ जाओ उतना खूबसूरत और आसान जीवन हो जाएगा, यही समझ आता है मुझे इस बात से. ब्यूटिफुल.
0: मैं ऐसे बोलती हूँ कि गॉड ओनली प्रपोजेस एंड गॉड ओनली डिस्पोजेस, हमारी समझ में थोड़ी कमी रह जाती है.
1: बिल्कुल.
0: यू नो, क्योंकि कंट्रोल तो वहीं पे है. और ये बच्चे जो मेरी लाइफ में आए, मैं कभी उनको दोबारा मिलूं ना मिलूं, पर दे वर वेरी प्रोफाउंड इन माई लाइफ.
1: जी, हम सब उन सबको थैंक यू करते हैं पूरी एस एन फैमिली की तरफ से, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, सभी को जो आपकी जर्नी में इतने इंस्ट्रूमेंटल रोल्स प्ले किए, सब लोग, सिस्टर बेंडर, जैनेट मैम, द लेडी एट द यूनिवर्सिटी, हर गुड नेम वाज आई कुडंट गेट हर नेम,
0: उनका नाम ईश मुंजाल.
1: ईश मुंजाल मैम, सभी को बहुत बहुत बहुत थैंक यू हमारी एस एन रेडियो की टीम की तरफ से और बिंदु मैम की तरफ से मोस्टली. तो इन्हीं गहरी बातों के बीच हम सुनेंगे एक और खूबसूरत गीत बिंदु मैम की ही खूबसूरत आवाज में. अनदर फेवरेट सॉन्ग. मुझसे जब भी कहा जाता है कोई गाना गाओ तो मैं दो ही गाने गाती हूँ, या तो ये गाना या फिर दो नैना और एक कहानी. तो ये गाना है गली में आज चांद निकला, फ्रॉम द फिल्म जख्म.

वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, बहुत ही सुंदर गायकी मैम. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ ब्यूटिफुल रेंडिशन टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग. आई सिंपली लव्ड इट. आगे चलते हैं. जी जी, ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन फ्रेम करते करते जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने आपकी ग्रैंड डॉटर की मेरे साथ शेयर करी थी, जिसमें आपकी ग्रैंड डॉटर ने अपने स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए आपके ऊपर आपको इंस्पिरेशन रख के वो जॉयला क्लब का जो प्रोजेक्ट है उसे

0: और क्या वो मंजर था आपके लिए, थोड़ा बताएं।
1: मेरे लिए वो बहुत ही एक मैजिकल मोमेंट जिसको बोलती हूँ था, जब हमारे बेटे को एक बोन कंडक्शन की हियरिंग एड दी गई थी। और वो क्या था कि उसके कान के पीछे जो बोन होती है मैस्टॉइड, उसके ऊपर लगती थी वो एक होल्डर के साथ, एक वाज अ हेड बैंड जो उसको वहां पे रखता था इन पोजिशन। और जो उस बोन कंडक्शन हियरिंग एड से जो वाइब्रेशन उसकी स्कल में जाती थी, उसकी सिर में जाती थी, उन वाइब्रेशन से उसको सुनाई देता था। तो हमारे लिए एकदम नई चीज थी और घर के पूरे डायनेमिक्स को बदल के ये प्रोजेक्ट था कि अब कविन को एक सही तरीके से एज अ नॉर्मल चाइल्ड ही रेज करना है। तो उस पर Whether I was a teacher or no teacher, I was the mother first. और मुझे एक स्टूडेंट बन के अपने बच्चे के इस डेफिसिट या हैंडीकैप कहने उसको ओवरकम करने के लिए ये सब चीजें हमको सीखनी पड़ी थी। और उसमें हमारा छोटा जो बड़ा बेटा था उस वक्त तो करीब 4 साल का था, तो ही वॉज अ वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज वी हैड टू डू इट एज अ फैमिली। तो उससे एक सबसे बड़ी सीख जो ये हमको मिली कि लाइफ को हम कितना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना। ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए जो जिसके पैसे नहीं लगते हैं, हम इनको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। और सोसाइटी तो हमें सिर्फ सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स ही फोकस करना सिखाती है ना। सक्सेस इज मेजर्ड इन ईदर वेल्थ और स्टैटस।

0: फॉर अ वाइफ एंड टू डॉटर्स ऑफ हिज ओन, और वही वैल्यूज वो अपनी बेटियों को भी देते हैं. और वो जो आपने पढ़ा, मेरी जो ग्रैंड डॉटर ने लिखा, यू नो, उसको पढ़ के मुझे भी आई वॉज फीलिंग सो हम्बल्ड एक्चुअली, क्योंकि आई नेवर रियलाइज कि टीनेजर्स भी इस तरह से सोच सकते हैं और इस तरह की वैल्यूज उनमें भी आ सकती हैं.
1: बिल्कुल, आई थिंक इट्स इन हर डीएनए. It just is so strongly embedded in her through her grandmother, such a tenacious, resilient grandmother. She is so lucky. And journal entry है जो आपने submit की थी Memorial Hermann में, उसी का ये part है, ये दो lines हैं कि at the audiologist's office, it was amazing to see his facial expressions. His eyes widened and followed the direction of sound. And best of all, he cooed continuously. I wondered if it was because he was hearing the sound for the very first time. My tears rolled uncontrollably through this magical moment of my life. Could anyone imagine living in a world of silence and missing out on all the nature's melodious sounds? It reinforced in me the reality of how much we took this priceless gift granted. Beautiful, ma'am. I would share this with the team, with the group, whenever we have the airing, because this is priceless, precious, and this must go out to as many people as it can. Thank you so much for sharing this piece of your heart with me. It's just beautiful.
0: It truly came out of my heart.
1: Truly, truly, truly. जी, तो इस ये जो मैजिकल मोमेंट ऑफ क्लोजर मिला आपको, ये मिला बहुत सालों बाद, जब आप ह्यूस्टन के हॉस्पिटल में आपने एक बेबी डिलीवर किया जो कैबिन सर जैसे था, उसको भी बायलेटरल एट्रेशिया था. तो उस समय क्या आपको सिस्टर बेंडर की बात वो याद आई? क्या आपको सच में अपना 11 साल पुराना जो क्लोजर था, जो पर्पस था, जो क्वेश्चंस आप ढूंढते थे, उसका आंसर मिला जब आपने वो बेबी डिलीवर किया? एंड देन यू हेल्प दैट बेबी ओवरकम ऑल ऑफ हिज यू नो shortcomings.
0: Absolutely, that was like एक तो मैं उस समय एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. एक जो बेबी पैदा हुआ हमारे हॉस्पिटल में, हमारे न्यूनेटोलॉजिस्ट थे, जो बाकी डॉक्टर्स भी थे, उनकी एक जैसे कॉन्फ्रेंस ही हो रही थी एंड दे वर टॉकिंग. मेरा उस दिन डे ऑफ था एक्चुअली, सिर्फ पेचेक लेने गई थी अपना.
1: तो कहा
0: कि ये क्या कर रहे हैं. आई विल बी ऑनेस्ट, मैं एंड दैट इज नो कोइंसिडेंस इधर आते हैं. तो सिर्फ पेचेक लेने को गई थी अपना, और उन दिनों में डायरेक्ट डिपॉजिट वगैरह से कुछ नहीं होता था. तो फिर जितने भी बेबीज थे वहां पे, तो मैंने उनको देखना शुरू किया. और ये एक बेबी जो था क्रिप के अंदर, उसको देखा तो मेरे तो जैसे यू नो माय होल लाइफ लाइक फ्लैश बैक, यू नो इट वेंट इनटू लाइक जैसे मूवी में दिखाते हैं ना. आई मीन 11 एंड ऑफकोर्स सिस्टर बेंडर की, तो उनके जो लव्स याद आए विच वर सो ट्रू टू हर बिलीफ एंड हर यू नो हर फेथ, जो बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स मुझे दिखाने पे, एंड इट रियली ब्रॉट क्लोजर मेरे मुंह पे. अब फिर मैंने जाके इन डॉक्टर सबको बोला, मैंने कहा आई हैव समथिंग टू से, यू नो, और उनको सब कॉन्फ्रेंस को मैंने इंटरप्ट किया.

0: it made everything worth it. You know, आज जब आप मिल गया
1: बिल्कुल,
0: तो आज भी मेरी लाइफ में वो सबसे बड़ा जीने का लाइफस्टाइल बन गया है कि जिंदगी में जिन्हें हम नेगेटिव या बैरियर्स समझते हैं उन्हें ही आज मैं ब्लेसिंग समझती हूँ. और हर बैरियर के पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम होता है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, एब्सोल्युटली.
1: सो ब्यूटीफुल. एंड आपको बात करके मुझे एहसास हो रहा है कि जीवन की प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि आपको बिटर ही बनाए, दे कैन एक्चुअली मेक यू बेटर एंड द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. यू आर सच एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, यू हैव सच क्लियर थॉट्स, सच क्रिस्प थॉट्स अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ विच इज सो इंस्पायरिंग. मतलब आई एम रियली अमेज्ड एट द विजन एंड द क्लैरिटी दैट यू हैव टूडे इन लाइफ डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट यू विन. तो ये मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि भाई लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जरूरी नहीं है कि आपको बिटर बना दें, जैसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं. आंसर्स मिलते हैं, आप बस जीते जाइए, पॉजिटिविटी के साथ जीते जाइए और अपना जो बेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से बिंदु मैम ने अपना बेस्ट किया, आई थिंक शी आउटडिड हरसेल्फ. बेस्ट इज वन वर्जन एंड वन इज डूइंग आउटडूइंग योरसेल्फ. तो आई थिंक बिंदु मैम यू आउटडिड योरसेल्फ एंड उसी का रिवॉर्ड आपको जीवन में मिला आगे जाके. समय लगा बट जब समय आया तो आपको सभी आंसर्स मिले उस डिवाइन से. तो इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी, आई एम श्योर फॉर यू ऑल्सो एंड एज आई विटनेस इट फॉर मी ऑल्सो, इट्स इंस्पायरिंग. जी, इन्हीं बातों के बीच हम सुनेंगे एक और गीत. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम फिर नहीं आते, इस गाने को समझें, इसे गुने, इसे बुने. ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये जीवन का शायद सबसे बड़ा फलसफा है ये गीत. फिल्म आपकी कसम, बिंदु मैम की बेहतरीन आवाज में.

0: fabulous singing, ma'am.
1: Thanks again.
0: जी, अब सिंगिंग की बात हुई है तो हम एक और म्यूजिक से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत सवाल आपसे पूछते हैं. पिया तो से नैना लागे आपका बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है और आपने हमें बताया कि आप अमूमन स्टेज पर ये गाना जरूर परफॉर्म करते हैं. तो क्या आपको लगता है कि जब आपने म्यूजिक को अपने जीवन में अपनाया और इतनी गहराई से अपनाया तो वो एक थेरेपी भी था, एक मेडिटेशन भी था, एक हॉबी से बहुत बढ़कर था आपके लिए. किस तरह से म्यूजिक ने एक हीलर की तरह आपके साथ काम किया, अगर इसके बारे में थोड़ा बताएं, और अगर पिया तो उसे नैना लागे की दो लाइन हमारे लिए गा दें प्लीज.
1: गाने की तो बात अलग है पर ये गाना जो है ये हमारी फैमिली, हर फैमिली गैदरिंग में इकट्ठे मिलके हम लोग गाते हैं. बल्कि जो बाहर का कोई आए तो वो कहते हैं कि अपना एंथम गा लो अब. तो हम लोग कितने भी सालों के बाद मिले, कभी भी मिले, कहीं भी मिले, नो मैटर कहाँ हो, तो ये

0: हम लोग जरूर ये गाना बहुत हमारा फेवरेट है और म्यूजिक तो हैज बिकम वेरी मच अ पार्ट ऑफ माय लाइफ ऑल अलोन. फैमिली भी म्यूजिक लवर्स की ही है और पहले ये था कि सिर्फ प्लेजर का तौर था ओकेजनल सिंगिंग कभी, तो वो धीरे धीरे एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी, बच्चे भी बड़े हो गए, थोड़ा सा रिसोर्सेज मिल गए और खासकर ह्यूस्टन में जब से मैं आई हूँ ना, यहाँ पे कल्चर बहुत ही रिच है हमारे इंडियंस की, तो यू नो बहुत मौका भी मिला और बहुत रिसोर्सेज भी मिले. तो म्यूजिक वॉज जस्ट अ हॉबी बट इट ऑल्सो टर्न्ड इनटू अ लिटिल प्रोफेशन. हालांकि मेरी फुल टाइम जॉब इज इन द हॉस्पिटल और ये सिर्फ एक पैशन बन जाता है. तो म्यूजिक इज फॉर चैरिटी एक्चुअली मेरे लिए. इफ आई एवर गेट पेड फॉर इट, हमारे अगर बैंड को मिलते हैं पैसे, मुझे भी मिलते हैं, तो वो दैट गोज टू एजुकेटिंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन इंडिया. तो खैर एनीवे, म्यूजिक का ये है कि मुझे एक अलग दुनिया में ले जाता है और डिवोशनल म्यूजिक ऑफ कोर्स इज माय ट्रू पैशन, चाहे वो गुरुवाणी हो, भजन हो, कुछ भी हो. और वो धीरे धीरे एक मेडिटेशन का फॉर्म भी बन जाता है. इतना सुकून मिलता है, यू नो. म्यूजिक इज फूड फॉर माय सोल एंड आई कॉल इट द लैंग्वेज ऑफ लव, टू बी ऑनेस्ट, व्हिच ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. किसी भी माहौल में आप जाइए, आप संगीत करेंगे तो उससे खुशियां ही होती हैं.
1: बिल्कुल. और उससे सब बैरियर्स टूट के हम एक साथ आ जाते हैं. लैंग्वेज के बैरियर्स, रिलीजन के बैरियर्स, कम्युनिटी के बैरियर्स, हम बस एक पहचान से जाने जाते हैं, वो है गायकी और संगीत. तो खूबसूरत मैम, इफ यू कैन जस्ट सिंग एनी टू लाइन्स ऑफ एनी ऑफ योर सॉन्ग, इफ नॉट पिया तो से एनीथिंग, इवन जैसे आपने भक्ति गीत मेंशन किया, इफ यू वांट टू सिंग अबाउट दैट एनीथिंग, एनी टू लाइन्स मैम.
0: एक सॉन्ग जो मेरी लाइफ का बिल्कुल नहीं, जैसे इट्स द स्टोरी ऑफ माय लाइफ. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. तो बस ये है, इसी को हम लोग कर लेते हैं. और मतलब इट्स इसके अगर आप लिरिक्स को सुनेंगे ना ध्यान से कभी, तो बहुत जबरदस्त, प्रोफाउंड, जिसने भी लिखा है, मुझे इसकी ज्यादा हिस्ट्री मालूम नहीं है, बट आई लव दिस सॉन्ग एंड आई लव टू जस्ट, I think this is what describes my life.
1: Beautiful. Beautiful. And a beautiful song indeed. चलिए मैम,
0: मौका मिलेगा तो इसके लिरिक्स पे ध्यान देना.
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए. मैंने तो मतलब आई थिंक मेरे को जुबानी याद है और बड़े समय तक मैं इसकी एक लाइन थी जो मेरा स्टेटस था व्हाट्सएप पे, आई थिंक कॉलेज डेज में. तो हर फिक्र को धुए में, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया. दिस इज माय फेवरेट लाइन फ्रॉम दिस सॉन्ग. आई जस्ट आई थिंक इट्स मेडिटेशन, दिस लाइन्स.
0: यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली.
1: एंड अल्टीमेट सरेंडर की एक भाव है इस गाने में, तो विच इज अगेन ब्यूटिफुल. एंड चलिए, गानों की बातें कभी खत्म नहीं हो सकती, एटलीस्ट विथ मी. फिल्म एंड सॉन्ग्स आर समथिंग आई इनहेल, आई ईट देम फॉर फूड.
0: आई
1: सिंग वेरी बैडली बट आई लव म्यूजिक. आई ईट म्यूजिक एंड आई ईट फिल्म लाइक आई से, मतलब इट्स लाइक इट्स समथिंग दैट टिक्स मी. इट्स द पर्पज ऑफ माई लाइफ.
0: इट्स फूड फॉर द सोल,
1: बिल्कुल.
0: इट्स रियली फूड.
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल. आगे चलते हैं, आज का हमारा आखिरी सवाल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर हमारे श्रोता भी सुन के बहुत शॉक होंगे कि 73 इयर्स की एज में भी आज भी मैम, लाइक आपने कहा कि नर्सिंग आपका मेन प्रोफेशन है, आप मेमोरियल होमन में अभी भी काम कर रहे हैं और रिटायर होने का कोई प्लान नहीं है. आपकी आवाज से भी मुझे समझ आता है, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूं, बट आई कैन नॉट बिलीव योर 73. सबसे पहले तो ये जो जज्बा है इस एज में भी सर्विस करने का, काम करने का, रिलेंटलेस होने का, रेजिलियंट होने का, टेनिशियस होने का, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी नाउ, यू हैव लिव्ड अ ब्यूटीफुल लाइफ, अ फुल लाइफ. फिर भी डिस्पाइट ऑफ दैट यू आर डूइंग इट एंड यू आर डूइंग इट टू द बेस्ट ऑफ योर केपेबिलिटीज. तो यही जो आप मैसेज है, आपको क्या लगता है कि आज की जनरेशन जो इतनी जल्दी बर्नआउट हो जाती है जॉब्स में से, उनके लिए आपकी स्पिरिट का राज क्या है, किस तरह से आप इसको मेंटेन करती हैं, क्या सोर्स है आपका इतनी एनर्जी का?
0: आई थिंक मैं अपने लिए ही बात कर सकती हूँ. एंड आई थिंक जो भी आप करें, वेदर इट्स अ जॉब, वेदर इट्स एनी काइंड ऑफ स्टफ यू डू, इफ यू डू इट विद अ पॉजिटिव मकसद के साथ आप करेंगे ना, तो उसमें आप 100% दें, एक्चुअली गो द एक्स्ट्रा माइल एंड यू विल रियलाइज दैट इसका मतलब वो इतनी एनर्जी आती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है उसमें. मुझे याद है आज जब मेरे 30 साल हुए थे यहाँ पे, आई वाज सिटिंग एट नर्सेस डेस्क एंड हमारी जो डायरेक्टर है शी केम विद अ होल बंच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हॉस्पिटल के सीईओ थे, सीएनओ थे, जो भी थे. तो वो अभी क्या है कि मेरे जितने भी साथ काम करते हैं वो लोग ना डेस्क से थोड़ा सा बड़े हो गए कि हम कोई सवाल वगैरह ना पूछे, यू नो वो डर जाते हैं, दे बिकम वेरी यू नो उस तरह से. और मैं अपना डॉक्यूमेंटेशन कर रही थी और मैं डेस्क पे ही थी एंड माय डायरेक्टर केम और उनको इंट्रोड्यूस किया, हमारे नए सीएनओ थे उनको और नए सीईओ भी थे. तो शी ब्रॉट ओवर एंड मुझे इंट्रोड्यूस किया कि शी इज वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट एम्प्लॉइज हियर. तो मुझे जो सीईओ थे उन्होंने पूछा कि बिंदु व्हाट brings you, what keeps you here, you know, ki day after day you come here, so what is, how do you do it? So ekdam spontaneously mere muh se nikla, maine kaha it's my positive attitude that brings me here. I said I have so many choices, main kahin bhi jaake kar sakti hu. Aur Houston mein na sabse bada world ka jo hai medical center hai, और यहाँ पे आई हैव ऑप्शंस की ऑप्शंस हैं, इट्स लाइक अ सिटी इन इटसेल्फ, पर वो सब मेडिकल सेंटर ही कहलाता है. तो मैंने कहा, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, डेविड कोलैंडर कुछ ऐसा नाम था. तो मैंने कहा, मिस्टर कोलैंडर, आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस बट यू नो नो प्लेस इज परफेक्ट,
1: राइट,
0: एंड कुछ भी जगह परफेक्ट नहीं होती है, बट इफ यू कम विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड यू मेक इट परफेक्ट.
1: एब्सोल्युटली,
0: यू नो वो मेरा मानना है. और वही चीज जो है मुझे बार बार रोज की रोज ले आती है. तनुषा, इफ आई वांट टू रिटायर टुडे, मैं हो सकती हूँ, आई हैव अर्न माय रिटायरमेंट, यू नो, बट आई वर्क बाय चॉइस. और मैं आती हूँ, मेरी लाइफ में अच्छा सा बैलेंस भी रहता है, क्योंकि बिसाइड्स बीइंग इन्वॉल्व विद सो मच कम्युनिटी और बाकी चीजों के साथ मैं बहुत इन्वॉल्व भी रहती हूँ, पर थोड़ा बहुत अपने जो इतने सालों से सीखा है उससे मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है अपने जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जूनियर मेरे कोवर्कर्स हैं, उनको कुछ यू नो गाइड करने में भी, क्योंकि इतने सालों में जो कुछ इमरजेंसीज मैंने देखी है वो उन्होंने आज तक नहीं देखी है, तो वो बेचारी घबरा जाती हैं कभी कभी. और तो उनको फिर यही मौका होता है उनको थोड़ा सा दिलासा दिला के, जस्ट काम डाउन, दिस इज द वे वी कैन हैंडल इट, ये ना इस तरह बताएं. तो मुझे उससे बहुत ही, जैसे बोला ना कि जो भी आज तक मैंने सीखा है, हालांकि मैं फिर भी रोज रोज सीखती हूँ, एंड यू नो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम द यंगर जनरेशन जो टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर है, और मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ उस मामले में. तो मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, तो यही होता है कि जो प्रैक्टिकल चीज है ना, व्हेन यू आर डीलिंग विद ह्यूमन लाइव्स एंड यू नो यू सडनली सी ब्लड और समबडी इज हेमरेजिंग और सडनली यू नो इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन एंड यू नो आप फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दोज इमरजेंसीज एंड हैव लर्नड कि इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए. तो इस तरह से वो पॉजिटिव एनर्जी उनको भी मिलती है थोड़ी बहुत. और जो एटीट्यूड के साथ मैं जाती हूँ रोज, मैं शुक्र करके जाती हूँ भगवान का कि मैं इस उम्र में भी, और मैंने कहा एज इज जस्ट यू नो
1: नंबर, करेक्ट, यू आर लिविंग दैट, इट इज जस्ट लिविंग दैट, यस यस.
0: एंड वो ये है कि उससे क्या है कि एक तो फिजिकली और मेंटली हेल्थी रहना बहुत जरूरी है. और वो क्या है कि जो मेरा तो काम ही है, आई एम ऑन माय फीट 14 आवर्स अ डे,
1: राइट.
0: तो उसके साथ मेरे बॉडी में अच्छी सर्कुलेशन जाती है. मैं उसको इसी मकसद से देखती हूँ कि वाओ आई एम गेटिंग ग्रेट एक्सरसाइज.
1: Amazing.
0: और फिर वो ये होता है एट द एंड ऑफ द डे थक बहुत जाती हूँ, पर यही है कि मैं अपने आपको बोलती हूँ कि आज का भगवान का शुक्र करती हूँ कि ये मैं कर पा रही हूँ. और ये इसको अगर मैं एक सेवा के तौर पर लेती हूँ ना कि यू मेक इट लाइक माई वर्क इज माई वर्शिप, तो वो मेरा जो काम है वो मेरी इबादत हो जाती है बिल्कुल. और यू नो एक और चीज जो हमको सिस्टर बिंदल ने सिखाई थी और वो बाइबल में एक बड़ा अच्छा वर्ड्स है कि यू डू एवरीथिंग एज यू आर डूइंग इट अनटू गॉड, देन यू सी द डिफरेंस. जैसे लगता है कि आई एम नॉट हियर टू प्लीज
1: एनीबडी,
0: हाँ आई एम ओनली हियर टू प्लीज माई मेकर. और वो मुझे ये करवा रहे हैं तो ये मेरी सेवा है. तो बस उसी के साथ मेरा ऐसा सोचना है और वो मुझे बहुत हेल्प करता है. तो वो मेरे तो कोवर्कर्स मुझे रोज जाते हैं बिंदु व्हेन यू गोइंग टू रिटायर, व्हेन आर यू गोइंग टू रिटायर. तो मैं उनको मजाक से यही बोलती हूँ कि देखो आई विल ऑलवेज रिमेन अ स्वीट 16, सो लेट्स इवन नॉट ब्रिंग इट अप.
1: राइट.
0: फिर वो जब वो कोई ऐसी हमलिंग बहुत हमलिंग बात कहते हैं तो मुझे लगता है जब वो कहते हैं ओ आई वांट टू बी लाइक यू व्हेन आई एम योर एज, यू नो, तो इट रियली रियली हम्बल्स मी.
1: आई एम श्योर आई वांट टू बी लाइक यू व्हेन आई एम योर एज. आई सेम हियर, इवन आई वांट टू बी लाइक यू, ऑल्दो आई डाउट बट आई रियली वांट टू.
0: थैंक द लॉर्ड, थैंक द लॉर्ड. मैंने कहा ना मेरा तो दिन शुक्र से, शुक्राना से शुरू होता है, शुक्राना पूरा दिन चलता है, शुक्राने से ही खत्म होता है. क्योंकि आई रियली मैं सोचती हूँ कि भगवान की बहुत कृपा है. और एक और भी गाना है ना जो पुराना गाना है, बहुत पुराना है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझ पे खफा है, बता मैंने किया है, ठीक इसके सैगल और समबड़ी है, वन ऑफ दोज ओल्ड वेटरन्स. तो मेरा है उसका जो वर्जन मेरा है दैट इज टोटली ऑपोजिट. क्यों मुझ पे फिदा है, क्या मैंने किया है, दैट इज माई वर्जन ऑफ इट.
1: माई
0: सो
1: आपका सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी टैप करना पड़ेगा वन डे, आके वहाँ पे जानना पड़ेगा कि कहाँ से सोर्स है ये. आई वुड रियली लव टू मैम योर पर्सनैलिटी ऑफ योर सेल्फ, योर ओन राइट, योर ओन यू नो स्ट्राइड, एंड इट्स जस्ट इंस्पायरिंग टू टॉक टू यू. एवरी टाइम दैट आई टॉक टू यू मुझे ऐसा लगता है कि एक एलिक्सर ऑफ लाइफ पी लिया मैंने.
0: बट यू नो यही है कि यू स्टे बिजी यू स्टे अलाइव, यू नो द होल मकसद इज टू बी स्टेइंग अलाइव. और वो क्या है कि मुझे एक बचपन का बहुत किस्सा याद आता है. हमारे घर में एक कुक था, वो था कुमाऊं या उसी नैनीताल एरिया का था. हिज नेम वॉज मोहन सिंह, आई विल नेवर फॉरगेट हिम. और मेरा भाई और मैं उसके काफी चेले होते थे, वो जो बोलता था हम करते थे. और ही वॉज ऑल्सो वेरी इन्फ्लुएंशियल, उसके मैं आज मुझे याद आता है उसकी बात को. तो वो हमसे ना पहेलियां पूछते थे हमेशा कि अब ये पहेली का मतलब बताओ क्या हुआ हुआ. और एक उनकी पहेली थी, मारे तो ना मरे, बिन मारे मर जाए, ऐसे हमने तो नहीं सुना था है. तो उसका मतलब उन्होंने समझाया हमें कि जो इसका जो पहेली का जो आंसर है दैट इज अ ढोलक और अ तबला और यू नो जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होता है ना ढोल या कुछ, कि उसको आप मारते जाएंगे तो वो बचता जाएगा. एंड इट रिमेन्स अलाइव
1: रेलेवेंट.
0: और उसको आप छोड़ देंगे तो वो मरा हुआ है,
1: मरा
0: तो
1: है.
0: मुझे आज तक
1: क्या बात
0: तो ना मरे बिन मारे मर जाए. तो वो जो है कि वन नीड्स टू स्टे अलाइव. द बिगेस्ट थिंग इज कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए और कंस्ट्रक्टिव करते रहिए तो आपकी लाइफ में यू नो यू इट विल कीप यू अलाइव.
1: करेक्ट करेक्ट. और अलाइव एंड किकिंग एंड ऑलवेज फाइटिंग विथ ऑल दीज यू नो किक्स दैट यू आर गेटिंग इन लाइफ, द ब्रिक बैट्स दैट आर कमिंग योर वे, वरना यू आर एज गुड एज डेड विदाउट देम. द चैलेंजेस
0: कुछ ना कुछ, मतलब इट्स नॉट एन एंड टू एनी ऑफ लाइफ ट्रिबुलेशन आई विल से, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लाइफ में. और मैं सोचती हूँ और मेरे जो मुझे जानने वाले बोलते हैं नाउ व्हाट बिंदु नाउ व्हाट, तो मैं उनको बोलती हूँ यू नो गॉड गॉड इज नॉट थ्रू विद मी येट. सुबह जब उठती हूँ तो मैं मजाक करती हूँ, मेरी रिलेशनशिप मेरे मेकर के साथ ऐसी है जैसे एक बाप बेटे की होती है, बाप बेटी की होती है. तो मैं ये पूछती हूँ कि Okay, Papa, what do you have for me today now?
1: Today, yes, yes. Amazing. Amazing, amazing. Such surrender, ma'am. Beautiful surrender you've, you know, embraced in life, and you are embodying in every thought of yours ki wo jo divine ko surrender hai, shukar karna, surrender karna, sabar karna, aur phir sukoon ki taraf chalna. It's been a beautiful journey of your life, ma'am. Thank you so much for being with us today, and lots of best wishes to you. Bahut sare regards aur bahut sare congratulations to Gavin sir for living the life that he is. And the same goes for you, the same goes for your entire family, jo jinhone bhi aapka saath diya is safar mein, un sabko bahut bahut dil se dhanyawad ki unhone aapka saath diya, aapke saath rahe aur aap khud apne saath rahe sabse badhkar. So I think you are a phenomenal person, phenomenal. Thank you.
0: No, that's very sweet of you. Or I want to thank all of your listeners also. You know, listeners, who mera sabse bada thanks hai. If they are tuning in, they're making the time. Or agar unko kisi bhi cheez ki hope milti hai, inspiration milti hai, mere liye sach mein keh rahi hu, bahut hi zabardast blessing ho jati hai.
1: Bilkul. Thank you, ma'am.
0: Thanks.
2: बिंदु जी, आपकी कहानी ने हमें ये समझाया कि जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ियां कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं, और हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत मोड़, सबसे खूबसूरत मकसद दे जाती हैं। आपकी फेथ, रेजिलियंस और सेवा का जो भाव है वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। आपसे बात करना मेरे लिए एक बहुत ही खास अनुभव रहा। मैं हूं आरजे तनुषा, आप सभी के तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। सुनते रहिए, जुड़े रहिए और जिंदगी को जीते रहिए।

0: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार
1: दोस्तों, ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज से। सुनते रहिए 90.8 FM रेडियो टांटिया भील। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जमानी। दोस्तों लीजिए, फिर आ गया वो दिन, वही वार जिसका हम बेसब्री से करते थे इंतजार।
2: आप सभी को स्वच्छिका और सुजल का सादर नमस्कार।
1: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जमानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ, हर कोना, हर गांव, शहर में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
2: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।
1: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार। धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद।
2: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे स्वच्छता की गुहार।
1: केवल मनोरंजन नहीं, उद्देश्य है हमारा।
2: बैठ जाए हर मस्तिष्क में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
1: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
2: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें पूरा देश।
1: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
2: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
1: यही है सुजल स्वच्छ गांव अभियान की पुकार। साथियों, इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार।
2: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञ और स्थानीय लोगों की कहानियाँ सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है।
1: जल के अधिकार के साथ एक बात और, वो ये कि स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनवाने का कार्यक्रम किया था। और स्वच्छिका, तुमको याद होगा कि कितने ही गांवों ने स्वयं को ODF घोषित किया। अब ये ना कह देना कि ODF गांव होता क्या है।
2: अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है ODF का पूरा नाम खुले में शौच मुक्त गांव है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन समुदायों या क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ साथ महिलाओं की निजता की रक्षा में भी मदद करती है। सही बताया ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब देश ODF से ODF प्लस मॉडल गांव की ओर बढ़ रहा है। एक ODF प्लस मॉडल गांव वो होता है जहां खुले में शौच की आदत पूरी तरह खत्म हो चुकी हो, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन हो गया हो, साफ सफाई का स्तर अच्छा हो, सार्वजनिक जगहों पर कचरा और पानी जमा ना हो।
2: इसमें यह सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो और कूड़ा कचरा और स्थिर पानी कहीं भी जमा न हो।
1: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी देखिए बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से, और आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूट ना जाए।
2: अच्छा, यह लेकिन मुझे यह पता है कि अब तक 5.67 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है, जिसमें से 4.81 लाख से ज्यादा गांवों को ODF प्लस मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है।
1: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास देखिए जारी हैं। हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, हर घर नल योजनाएं भी शामिल हो चुकी हैं, और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी देखिए बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो, और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
2: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुके हैं। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
3: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था, तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई, और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना, और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ, और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो, बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या वेस्ट भी सही तरीके से निपटान किया जा सके। इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में आज हमारे 4,85,000 से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं, और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे, हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे, ना हम कचरा फैलाएंगे ना दूसरों को फैलाने देंगे, हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
1: हमारे विशेषज्ञ ने कितने अच्छे से ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई, याद रखना है आपको और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो, इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
2: एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजल साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो गए हैं।
1: अच्छा, अरे वाह, ये कैसे हो गया?
2: अलग अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: अच्छा, कहाँ?
2: चलो तुमको रामपुर गांव की कहानी सुनाती हूँ, वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वह सुनवाती हूँ। और वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत की जीत।
1: एक मिनट रुको रुको, दूषिका या प्रदूषिका?
2: सही तो है सुजल, प्रदूषिका तो सिर्फ प्रदूषण फैलाएगी, ये दूषिका ही है जो प्रदूषण के साथ हर स्थान को दूषित करती रहती है। हम भी अब से इसको दूषिका ही कहें तो सही होगा।
1: कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत, आइए सुनते हैं दूषिका की हार, स्वच्छ भारत की जीत।
2: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों से निकलकर, शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी।

0: वहीं मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना। बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है। विमला के बेटे का तो खुजली हो गई। ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
1: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
2: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
0: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
3: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था। सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है।
4: और राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है? सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं। और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
0: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
4: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना?
0: मैं ही हूँ इस सब का कारण। मैं बोलो क्या कर लोगे तुम? बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
4: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? अब समझ गया मैं। देखो मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारा कैसे इलाज करता हूं, देखते रहो। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है। देखो भाई, शौचालय ना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, यह है बीमारी से लड़ने का हथियार। गांव वालों सुनिए, खुले में शौच से मिट्टी पानी हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो ना भाई, तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो, और उसे साफ भी तो रखना आप ही का काम हुआ ना। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं, और दूषिका बहुत बेचैन होती है, गांव की गली में छिपकर वो देखती है।
0: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां कैसे ढक दी? क्या ये शौचालयों पर दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहाँ गई? अरे मच्छर भी नहीं है। अरे अरे अरे ये सब गांव में क्या हो रहा है? अरे
3: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
5: गांव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है। मैं वहीं रहती हूँ और मैं हूँ स्वच्छिका।
3: अब गांव में हर घर, गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं।

0: लागे रे, घर में हो साफ सफाई रोज, तो बीमारी रखो को दूर, मारो सच शौचालय जी, ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं, स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है, और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। बम्बे कहाँ जाऊं, अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए, नाली साफ कर दी गई, अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
0: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो, अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है। इसीलिए बहनों, सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका, गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
0: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है, देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को ही अपनाओ। औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शौचालय है, लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
1: तो समझाइए उनको बहन, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा, तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या? चलो चलो, मैं आती हूँ तुम्हारे घर, यही तो है मेरी असली ताकत, चलो आती हूँ। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है, हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना। अरे तब क्या कहोगे सुजय, हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ा ही ना होता है।
1: फिनाइल ना हो तो देखिए, नींबू, नमक, राख से भी मदद ले सकते हैं हम। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए कि शौचालय साफ रहेगा।
0: अरे खुले में शौच से तो हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है, ये बंद कमरा कुटन और बीमारी। खुले में शौच से ताजगी नहीं, बीमारी और शन फैलती है। शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
2: हाँ, हम सब समझ गए दूषिका, हम समझ गए, अब तुमसे नहीं डरेंगे, शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे, अब तुम्हें भगा देंगे।
0: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं, और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर। कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत, आइए सुनते हैं दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत।
0: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों से निकलकर शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी, जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं, जहाँ शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, वहीं मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना, बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है, बिमला के बेटे का तो खुजली हो गई। ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
3: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
4: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
0: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
1: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था। सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है। और राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है, सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
0: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो, सच कह रही हो बहन, मन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
1: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना?
0: मैं ही हूँ इस सब का कारण, मैं। बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
1: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धराया है ना? अब समझ गया मैं।

0: स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं और दूषिका बहुत बेचैन होती है। गांव की गली में छिपकर वो देखती है।
1: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां कैसे ढक दी? क्या ये शौचालयों पर दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहाँ गई? अरे मच्छर भी नहीं है। अरे अरे अरे ये सब गांव में क्या हो रहा है? अरे
0: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
2: गांव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है। मैं वहीं रहती हूँ और मैं हूँ स्वच्छिका।
0: अब गांव में हर घर, गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं।
3: शौचालय प्यार।

0: गेले घर में हो साफ सफाई रोज तो बीमारी रखो को सदूर मारो सच शौचालय जी ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए, नाली साफ कर दी गई, अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
0: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है। इसीलिए बहनों सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका। गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
0: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है। देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों अब से सफाई को ही अपनाओ। औरतें ही तो करती है ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शौचालय है लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
1: तो समझाइए उनको बहन, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या? चलो चलो।

0: आती हूँ तुम्हारे घर, यही तो है मेरी असली ताकत। चलो आती हूँ। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है। हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना।
1: अरे तब क्या कहोगे सुजय, हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ा ही ना होता है।
2: फिनाइल ना हो तो देखिए नींबू, नमक, राख से भी मदद ले सकते हैं हम। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए कि शौचालय साफ रहेगा।
1: अरे खुले में शौच से तो हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है, ये बंद कमरा कुटन और बीमारी।
0: खुले में शौच से ताजगी नहीं, बीमारी और शन फैलती है। शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
3: हाँ हम सब समझ गए दूषिका, हम समझ गए, अब तुमसे नहीं डरेंगे। शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और तुम्हें भगा देंगे।
1: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो।
0: नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
2: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी। बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर।
4: स्वच्छ भारत का सपना है, हर गली में स्वच्छता है, शौचालय की जिम्मेदारी, हर दिल की अब तैयारी। सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत।
0: मजा आ गया ना हमारे कैरेक्टर स्वच्छ का सुजल कुमार को लेकर। रामपुर गांव में इस तरह का नाटक खेला जा रहा है और हमको लगता है कि नाटक सुनकर देश के बाकी हिस्सों में भी जरूर अपने अपने गांव में जागरूकता लाने के लिए नाटक खेले जाने की इच्छा तो जरूर ही रही होगी। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग कम्युनिटी इंगेजमेंट के जरिए बता भी रहे होंगे। इस संदर्भ में चलो गांव में एक स्वच्छता चैंपियन से बातचीत सुन लेते हैं।
2: स्वच्छता चैंपियन, ये कौन होते हैं?
0: सुजल स्वच्छता चैंपियन वो व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने, जो लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताने में, शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं। वे लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं और उन्हें स्वच्छता के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। समुदाय में सक्रिय स्वच्छता चैंपियन समुदाय में सक्रिय रूप से काम करते हैं और स्वच्छता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं। ऐसे ही एक चैंपियन अब हमारे साथ हैं।
5: नमस्कार दोस्तों, रेडियो घंटे भील 90.8 FM झावा की आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम में गांव में स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार को बढ़ावा देने में एक स्वच्छाग्राही की भूमिका के विषय में बात करेंगे और इस विषय पर चर्चा के लिए ग्राम झारड़ावर से स्वच्छाग्राही के रूप में हमारे बीच थॉमस जी भूरिया उपस्थित हैं। रेडियो टंटिया भील की ओर से आज के इस खास कार्यक्रम में हम थॉमस जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी थॉमस जी, आपका बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद।
5: आज हम आपसे आपके अनुभवों को और आपके कार्यों में आने वाली चुनौतियों को समझने का प्रयास करेंगे। आपके अनुभव और सुझाव गांव को अधिक और स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है, तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जानते हैं कुछ खास बातें। तो थॉमस जी, आज के कार्यक्रम का मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कृपया बताएं कि आप एक स्वच्छाग्राही के रूप में गाँव में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी प्रमुख गतिविधियों करते हैं?
6: जी मैं थॉमस भूरिया झाबा जिले से, मैं स्वच्छाग्रही के रूप में मेघनगर ब्लॉक में और पंचायत मेरी झारडबर है। मैं पिछले 5-6 सालों से स्वच्छाग्रही में काम करते हुए मैं आपको मेरे अनुभव ये बताता हूँ कि मैंने आज तक जो हमारी क्षेत्रों में जो काम किए, तो हम स्वच्छता के लिए सबसे पहले तो हमने खुले में शौच से मुक्त के लिए हमने नुक्कड़ नाटक करी, रैलियां करी, मॉर्निंग फॉलो करे और उसके बाद हमने जब खुले में शौच से मुक्त के बाद हमने फिर लोगों को स्वच्छता आदत में लाने के लिए हमने संस्थाओं में गए, विद्यालयों में गए, पंचायत की, वहाँ हमने ये बताया कि आपको हाथों की सफाई कैसे करना है इस प्रकार, हाँ, और स्वच्छता को शौचालय बनाओ, और अपने जैसे कि सार्वजनिक स्थलों पे जो कचरे होते हैं उससे निपटने के लिए लोगों को मोटिवेट किया कि कचरा नहीं करना है, ये आदत में डालने के लिए हमने मीटिंगों के माध्यम से ये सारी चीजें हमने लोगों के बीच में जागरूक फैलाई।
5: जी सर, लेकिन बहुत सुंदर प्रयास सर, और आपके प्रयासों से जागरूकता भी आई है, लोग स्वच्छता की ओर आगे बढ़े हैं। अगला सवाल ये था कि आपके अनुभव में गांव के लोग स्वच्छता एवं शौचालय के उपयोग के प्रति कितने जागरूक हैं, जिस तरह से आपने जागरूक किया है तो लोगों में किस प्रकार की जागरूकता है, और आप स्वच्छता के प्रति और शौचालय के प्रति कितने जागरूक हैं, इस संदर्भ में आपको समुदाय से किस प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है?
6: जी, जब हमने फर्स्ट टाइम जो शुरुआत की थी हमने स्वच्छता अभियान की, स्वच्छता घर के उसमें जब काम किया था, तब हमें उसका मतलब ये देखा जाए तो कि गांव लेवल पे बहुत निचला लेवल था, इस स्तर बहुत नीचा था, लेकिन जैसे जैसे हमने मतलब पंचायतों में फलियों में जो मीटिंग करी, खास करके हमने बारिश के मौसम में जाते हैं वहाँ पे खुले में शौच से जो बीमारियां होती उसके माध्यम से हमने लोगों को जो जागरूकता लाई, उसके माध्यम से हमें देखने को मिला कि आज मतलब जो स्वच्छता का स्तर जो बहुत गिरा हुआ था वो कहीं ना कहीं आज हम जाते हैं तो लोग शौचालयों में जाते हैं, खुले में सोच नहीं करते हैं, और अपने आप में खुद में एक स्वच्छता लाने के लिए अपने आप को मतलब एक उन्होंने प्रण लिया है, तो आज हम देखते हैं संस्थाओं में जाते हैं तो लोग उसके प्रति बहुत अच्छे से जागरूक हुए हैं।
5: जी, मतलब छोटे छोटे प्रयासों ने एक बड़ा जागरूकता का काम किया है।
6: जी जी जी,
5: बहुत सुंदर सर। तो क्या आपके गाँव के सभी घरों में शौचालय उपलब्ध है, और यदि है तो उनका नियमित और समुचित उपयोग सुनिश्चित हो पा रहा है?
6: जहाँ तक मेरा हमने जो सर्वे किया है, हमारी पंचायतों में जो भी शौचालय हैं अभी, वैसे सभी के यहाँ शौचालय हैं बन गए हैं अच्छे से, अभी भी शौचालय का वो उपयोग कर रहे हैं और नियमित रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं।
5: यकीनन, बहुत सुंदर सर, मतलब शौचालय उपलब्ध है और उसका उपयोग भी हो रहा है। जी जी, अगला सवाल सर ये था कि जैसे गाँव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्था क्या है, और इसके प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां किस प्रकार की रहती हैं आपको?
6: जो ठोस अपशिष्ट जो हैं उनका, जैसे भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमने जैसे कि अपना गीला कचरा होता है, एक सूखा कचरा होता है, और संस्थाओं में जिस प्रकार से आजकल पंचायतों में भी अस्पतालों का लोगों को जो दवाइयाँ दी जाती है और ट्रीटमेंट किए जाते हैं उसके आधार पर जो वेस्टेज जाता है, तो ठोस प्रबंधन के लिए भी हमने जैसे कि अपन कह सकते हैं कि गीला कचरा है, हमने गीला कचरा जो हम हरे कलर का डस्टबिन है वहाँ जो अपने जो रिसाइकल वाला कचरा है वो उसमें डालने के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं हम, और इसके बाद जो ब्लैक डस्टबिन है उसके लिए हम जो अपना ई वेस्टेज आता है जो उसमें उसके ये अपने कंप्यूटर वगैरह ये डालने के लिए, इस प्रकार से लोगों को हमने मीटिंगों के माध्यम से किया है, और खास करके गांव लेवल है तो वहाँ पे इतना बड़ा ई वाला है जो खास करके जो ब्लू डस्टबिन का उपयोग कम होता है, लेकिन खास करके जो अपना जो ग्रीन कलर का जो डस्टबिन है गीला कचरा उसमें हम प्रबंधन करने के लिए लोगों करते हैं, और जो नालियाँ वगैरह है वहाँ से जो पानी जाता है उसके लिए भी हम उसका वो प्रबंधन कर रहे हैं।
5: जी, लेकिन बहुत सुंदर, मतलब आपका एक कठिन काम है ये, लेकिन फिर भी आपके प्रयास रंग ला रहे हैं और स्वच्छता की ओर अग्रसर लोग हो रहे हैं। आखिरी में सर मेरा एक ही सवाल यही है कि आप अपनी ओर से गांव के निवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
6: मैं मेरी तरफ से गांव के लोगों को यही कहना चाहता हूँ, आज एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज हर व्यक्ति के पास में एक एंड्रॉइड मोबाइल होता है, और व्यक्ति सोते उठते जागते हर वक्त पहले अपने मोबाइल को टच करता है, तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति को एक मोबाइल की मतलब 24 घंटे आदत सी हो गई है।
5: बिल्कुल,
6: तो मैं ये चाहता हूँ मेरे गाँव वासियों को और भारतवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको जिस प्रकार एक मोबाइल की लत लगी हुई है तो सेम वही उदाहरण मैं आपको आपके जीवन में स्वच्छता को लाने के लिए यही कहना चाहूंगा कि 24 घंटे आपके दिमाग में स्वच्छता होनी चाहिए, आपके व्यवहार में स्वच्छता होनी, आपके संस्कारों में स्वच्छता होनी चाहिए, सामुदायिक संस्थाओं में स्वच्छता होनी चाहिए। गांधी जी को जो सपना है स्वच्छता का, उसको हमें आगे ले जाना है। मैं हर व्यक्ति से यही अपील करता हूँ कि स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए और उसको मोबाइल की तरह आदत में लाने का प्रयास हर व्यक्ति को अपने आप में करना चाहिए, ये प्रण लेना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ।
5: बहुत सुंदर संदेश सर आपने दिया है और यकीनन मतलब ये संदेश आपका जन जन तक जाएगा। यकीन आज आपसे चर्चा करके सर बहुत ही अच्छा लगा आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गांव में स्वच्छता, शौचालय के उचित उपयोग, कचरा प्रबंधन और जन जागरूकता से जुड़े अपने अनुभव और सुझाव हमारे साथ साझा किए। आपके प्रयास निश्चित रूप से समुदाय को स्वच्छ, स्वस्थ और जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आपके अनुभवों से अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे और स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत।
6: धन्यवाद
5: जी सर जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो दोस्तों ये थे हमारे बीच स्वच्छताग्राही थॉमस जी भूरिया और इनके अनुभव को हमने आज जाना स्वच्छता को लेकर। यकीनन स्वच्छता जीवन में बहुत जरूरी है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को स्वच्छता की प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो कंटे भी 95.5 FM झावा की आवाज पर।
2: स्वच्छता चैंपियन सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। वो स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं। स्वच्छता चैंपियन बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
0: मुझे ऐसा लगता है कि सुजल की स्वच्छता एक सोच है और ये सोच

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

दिव्य दर्शन के इस पवित्र प्रोग्राम में मैं फिर से आप सभी लोगों का बहुत आभार प्रकट करते हुए स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सीता जयरमन मैम मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कुछ

0: शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन। दोस्तों, ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज से। सुनते रहिए 90.8 FM रेडियो टांटिया भील। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जमानी। दोस्तों लीजिए, फिर आ गया वो दिन, वही वार जिसका हम बेसब्री से करते थे इंतजार।
1: आप सभी को स्वच्छ का और सुजल का सादर नमस्कार।
0: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जमानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ, हर कोना, हर गांव, शहर में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
1: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।
0: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार। धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद।
1: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे स्वच्छता की गुहार।
0: केवल मनोरंजन नहीं, उद्देश्य है हमारा।
1: बैठ जाए हर मस्तिष्क में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
0: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
1: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें पूरा देश।
0: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
1: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
0: यही है सुजल स्वच्छ गांव अभियान की पुकार। साथियों, इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञ और स्थानीय लोगों की कहानियाँ सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है।
0: जल के अधिकार के साथ एक बात और, वो ये कि स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनवाने का कार्यक्रम किया था। और स्वच्छिका, तुमको याद होगा कि कितने

0: ही गांवों ने स्वयं को ODF घोषित किया। अब ये ना कह देना कि ODF गांव होता क्या है।
1: अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है ODF का पूरा नाम खुले में शौच मुक्त गांव है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन समुदायों या क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ साथ महिलाओं की निजता की रक्षा में भी मदद करती है। सही बताया ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब देश ODF से ODF प्लस मॉडल गांव की ओर बढ़ रहा है। एक ODF प्लस मॉडल गांव वो होता है जहां खुले में शौच की आदत पूरी तरह खत्म हो चुकी हो, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन हो गया हो, साफ सफाई का स्तर अच्छा हो, सार्वजनिक जगहों पर कचरा और पानी जमा ना हो।
1: इसमें यह सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो और कूड़ा कचरा और स्थिर पानी कहीं भी जमा ना हो।
0: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी देखिए बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूट ना जाए।
1: अच्छा, यह लेकिन मुझे यह पता है कि अब तक 5.67 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है जिसमें से 4.81 लाख से ज्यादा गांवों को ODF प्लस मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है।
0: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास देखिए जारी हैं। हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, हर घर नल योजनाएं भी शामिल हो चुकी हैं और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी देखिए बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुके हैं। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
2: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या वेस्ट भी सही तरीके से निपटान किया जा सके। इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में आज हमारे 4,85,000 से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे, हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे, ना दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूं। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
0: हमारे विशेषज्ञ ने कितने अच्छे से ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। याद रखना है आपको और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो, इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
1: एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजल साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो गए हैं।
0: अच्छा, अरे वाह, ये कैसे हो गया?
1: अलग अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
0: अच्छा, कहाँ?
1: चलो तुमको रामपुर गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वह सुनवाती हूँ। और वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत की जीत।
0: एक मिनट रुको, दूषिका या प्रदूषिका?
1: सही तो है सुजल, प्रदूषिका तो सिर्फ प्रदूषण फैलाएगी, ये दूषिका ही है जो प्रदूषण के साथ हर स्थान को दूषित करती रहती है। हम भी अब से इसको दूषिका ही कहें तो सही होगा।
0: कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत? आइए सुनते हैं दूषिका की हार, स्वच्छ भारत की जीत।
1: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों से निकलकर, शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी, जहां लोग खुले में शौच करते हैं, जहां शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, वहीं मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कहते हैं ना कल करेंगे साहब, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना, बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है। विमला के बेटे का तो खुजली हो गई, ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
3: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
4: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
1: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
0: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था। सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है। और राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है, सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
1: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो, सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
0: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना?
1: मैं ही हूँ इस सब का कारण, मैं। बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
0: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धराया है ना? अब समझ गया मैं। देखो मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारा कैसे इलाज करता हूं, देखते रहो। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है। देखो भाई, शौचालय ना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। गांव वालों सुनिए, खुले में शौच से मिट्टी पानी हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो ना भाई, तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो, और उसे साफ भी तो रखना आप ही का काम हुआ ना। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं, और दूषिका बहुत बेचैन होती है, गांव की गली में छिपकर वो देखती है।
1: ये क्या हो रहा है, लोगों ने नालियां कैसे ढक दी, क्या ये शौचालयों पर दरवाजा कब लग गया, दुर्गंध कहां गई, अरे मच्छर भी नहीं है, अरे अरे अरे ये सब गांव में क्या हो रहा है, अरे।
0: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
5: गांववासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है, मैं वहीं रहती हूँ और मैं हूँ स्वच्छिका।
0: अब गांव में हर घर गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं।
1: शौचालय प्यार।

0: गिरे, घर में हो साफ सफाई, रोज तो बीमारी रखो को दूर, मारो सच शौचालय जी, ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं, स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है, और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। मम्मी कहाँ जाऊँ, अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए, नाली साफ कर दी गई, अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
0: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो, अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है। इसीलिए बहनों, सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका। गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
0: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है। देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को ही अपनाओ। औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शौचालय है, लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
1: तो समझाइए उनको बहन, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा, तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या? चलो चलो, मैं आती हूँ तुम्हारे घर, यही तो है मेरी असली ताकत, चलो आती हूँ। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है। हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना। अरे तब क्या कहोगे सुजल, हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ा ही ना होता है।
1: फिनाइल ना हो तो देखिए, नींबू, नमक, राख से भी मदद ले सकते हैं हम। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए कि शौचालय साफ रहेगा।
0: अरे खुले में शौच से तो हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है, ये बंद कमरा कुटन और बीमारी। खुले में शौच से ताजगी नहीं, बीमारी और शन फैलती है। शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
2: हाँ, हम सब समझ गए दूषिका, हम समझ गए, अब तुमसे नहीं डरेंगे। शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे, अब तुम्हें भगा देंगे।
0: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं, और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर। कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत, आइए सुनते हैं दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत।
0: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों से निकलकर, शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी, जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं, जहाँ शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, वहीं मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना, बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है, बिमला के बेटे का तो खुजली हो गई। ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
3: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
4: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
0: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
1: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था, सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है। और राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है, सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
0: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो, सच कह रही हो बहन, मन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
1: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया, इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना।
0: मैं ही हूँ इस सब का कारण, मैं। बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
1: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धराए है ना, अब समझ गया मैं। देखो मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारा कैसे इलाज करता हूं, देखते रहो। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है। देखो भाई, शौचालय ना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, यह है बीमारी से लड़ने का हथियार। गांव वालों सुनिए, खुले में शौच से मिट्टी पानी हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो ना भाई, तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो और उसे साफ भी तो रखना आप ही का काम हुआ ना। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं और दूषिका बहुत बेचैन होती है। गांव की गली में छिपकर वो देखती है।
0: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां कैसे ढक दी? क्या ये शौचालयों पर दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहाँ गई? अरे मच्छर भी नहीं है। अरे अरे अरे ये सब गांव में क्या हो रहा है? अरे
1: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
0: गांववासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है। मैं वहीं रहती हूँ और मैं हूँ स्वच्छिका।
1: अब गांव में हर घर, गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं।
0: शौचालय प्यार

0: आगे ने घर में हो साफ सफाई रोज तो बीमारी रखो को सदूर मारो सच शौचालय जी ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। मम्मी कहाँ जाऊं अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए नाली साफ कर दी गई अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
0: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है। इसीलिए बहनों सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका, गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
0: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है, देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों अब से सफाई को ही अपनाओ। औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शौचालय है लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
1: तो समझाइए उनको बहन, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या, चलो चलो मैं आती हूँ तुम्हारे घर, यही तो है मेरी असली ताकत, चलो आती हूँ। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है। हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना। अरे तब क्या कहोगे सुजल, हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ा ही ना होता है।
1: फिनाइल ना हो तो देखिए नींबू, नमक, राख से भी मदद ले सकते हैं हम। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए कि शौचालय साफ रहेगा।
0: अरे खुले में शौच से तो हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है, ये बंद कमरा कुटन और बीमारी। खुले में शौच से ताजगी नहीं बीमारी और शन फैलती है, शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
2: हाँ हम सब समझ गए दूषिका, हम समझ गए, अब तुमसे नहीं डरेंगे। शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और तुम्हें भगा देंगे।
0: ओह, ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर। स्वच्छ भारत का सपना है, हर गली में स्वच्छता है, शौचालय की जिम्मेदारी, हर दिल की अब तैयारी। सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत।
0: मजा आ गया ना हमारे कैरेक्टर स्वच्छ का सुजल कुमार को लेकर रामपुर गांव में इस तरह का नाटक खेला जा रहा है, और हमको लगता है कि नाटक सुनकर देश के बाकी हिस्सों में भी जरूर अपने अपने गांव में जागरूकता लाने के लिए नाटक खेले जाने की इच्छा तो जरूर ही रही होगी। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग कम्युनिटी इंगेजमेंट के जरिए बता भी रहे होंगे। इस संदर्भ में चलो गांव में एक स्वच्छता चैंपियन से बातचीत सुन लेते हैं।
1: स्वच्छता चैंपियन, ये कौन होते हैं?
0: सुजल स्वच्छता चैंपियन वो व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने, जो लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताने में, शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं। वे लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं और उन्हें स्वच्छता के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। समुदाय में सक्रिय स्वच्छता चैंपियन समुदाय में सक्रिय रूप से काम करते हैं और स्वच्छता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं। ऐसे ही एक चैंपियन अब हमारे साथ हैं।
3: नमस्कार दोस्तों, रेडियो घंटे भील 90.8 FM झावा की आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम में गांव में स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार को बढ़ावा देने में एक स्वच्छाग्राही की भूमिका के विषय में बात करेंगे, और इस विषय पर चर्चा के लिए ग्राम झारड़ावर से स्वच्छाग्राही के रूप में हमारे बीच थॉमस जी भूरिया उपस्थित हैं। रेडियो टंटिया भील की ओर से आज के इस खास कार्यक्रम में हम थॉमस जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी थॉमस जी, आपका बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: आज हम आपसे आपके अनुभवों को और आपके कार्यों में आने वाली चुनौतियों को समझने का प्रयास करेंगे। आपके अनुभव और सुझाव गांव को अधिक और स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है, तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जानते हैं कुछ खास बातें। तो थॉमस जी, आज के कार्यक्रम का मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कृपया बताएं कि आप एक स्वच्छाग्राही के रूप में गाँव में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी प्रमुख गतिविधियों करते हैं?
4: जी, मैं थॉमस भूरिया झाबा जिले से, मैं स्वच्छाग्रही के रूप में मेघनगर ब्लॉक में और पंचायत मेरी झारडबर है। मैं पिछले 5-6 सालों से स्वच्छाग्रही में काम करते हुए मैं आपको मेरे अनुभव ये बताता हूँ कि मैंने

0: जैसे कि सार्वजनिक स्थलों पे जो कचरे होते हैं उससे निपटने के लिए लोगों को मोटिवेट किया कि कचरा नहीं करना है, ये आदत में डालने के लिए हमने मीटिंगों के माध्यम से ये सारी चीजें हमने लोगों के बीच में जागरूक फैलाई।
1: जी सर, लेकिन बहुत सुंदर प्रयास सर, और आपके प्रयासों से जागरूकता भी आई है, लोग स्वच्छता की ओर आगे बढ़े हैं। अगला सवाल ये था कि आपके अनुभव में गांव के लोग स्वच्छता एवं शौचालय के उपयोग के प्रति कितने जागरूक हैं? जिस तरह से आपने जागरूक किया है तो
0: जी जी
1: लोगों में किस प्रकार की जागरूकता आई, और आप स्वच्छता के प्रति और शौचालय के प्रति कितने जागरूक हैं? इस संदर्भ में आपको समुदाय से किस प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है?
0: जी जब हमने फर्स्ट टाइम जो शुरुआत की थी हमने स्वच्छता अभियान की, स्वच्छता घर के, जो उसमें जब काम किया था, तब हमें उसका मतलब ये देखा जाए तो कि गांव लेवल पे बहुत निचला लेवल था, इस स्तर बहुत नीचा था। लेकिन जैसे जैसे हमने मतलब पंचायतों में, फलियों में जो मीटिंगें करी, खास करके हमने बारिश के मौसम में जाते हैं वहाँ पे खुले में शौच से जो बीमारियां होती, उसके माध्यम से हमने लोगों को जो जागरूकता लाई, उसके माध्यम से हमें देखने को मिला कि आज मतलब जो स्वच्छता का स्तर जो बहुत गिरा हुआ था, वो कहीं ना कहीं आज हम जाते हैं तो लोग शौचालयों में जाते हैं, खुले में शौच नहीं करते हैं, और
1: जी
0: अपने आप में खुद में एक स्वच्छता लाने के लिए अपने आप को मतलब एक उन्होंने प्रण लिया है। तो आज हम देखते हैं संस्थाओं में जाते हैं तो लोग उसके प्रति बहुत अच्छे से जागरूक हुए हैं।
1: जी मतलब ये छोटे छोटे प्रयासों ने एक बड़ा
0: हाँ
1: जागरूकता का काम किया है।
0: जी।
1: बहुत सुंदर सर। तो क्या आपके गांव के सभी घरों में शौचालय उपलब्ध हैं, और यदि हैं तो उनका नियमित और समुचित उपयोग सुनिश्चित हो पा रहा है?
0: जहाँ तक मेरा हमने जो सर्वे किया है, हमारी पंचायत में जो भी शौचालय हैं अभी, वैसे सभी के यहाँ शौचालय हैं, बन गए हैं अच्छे से, अभी भी शौचालय का वो उपयोग कर रहे हैं और नियमित रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं।
1: यकीनन, बहुत सुंदर सा, मतलब शौचालय उपलब्ध है और उसका उपयोग भी हो रहा है।
0: हो रहा।
1: जी। अगला सवाल सर ये था कि जैसे गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्था क्या है, और इसके प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां किस प्रकार की रहती हैं आपको?
0: जो ठोस अपशिष्ट जो हैं उनका, जैसे भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमने जैसे कि अपना गीला कचरा होता है, एक सूखा कचरा होता है, और संस्थाओं में जिस प्रकार से आजकल पंचायतों में भी अस्पतालों का लोगों को जो दवाइयाँ दी जाती है और ट्रीटमेंट किए जाते हैं उसके आधार पर जो वेस्टेज जाता है, तो ठोस प्रबंधन के लिए भी हमने जैसे कि अपन जैसे कह सकते कि गीला कचरा है, हमने गीला कचरा जो हम हरे कलर का डस्टबिन है वहाँ जो अपने जो रिसाइकल वाला कचरा है वो उसमें डालने के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं हम, और इसके बाद जो ब्लैक डस्टबिन है उसके लिए हम जो अपना ई जो ई वेस्टेज आता है जो उसमें उसके ये अपने कंप्यूटर वगैरह ये डालने के लिए, इस प्रकार से लोगों को हमने मीटिंगों के माध्यम से किया है, और खास करके गांव लेवल है तो वहाँ पे इतना बड़ा ई वाला है जो खास करके जो ब्लू डस्टबिन का उपयोग कम होता है, लेकिन खास करके जो अपना जो ग्रीन कलर का जो डस्टबिन है गीला कचरा उसमें हम प्रबंधन करने के लिए लोगों करते हैं, और जो नालियां वगैरह है वहां से जो पानी जाता है उसके लिए भी हम उसके उसका वो प्रबंधन कर रहे हैं।
1: जी यकीन, बहुत सुंदर, मतलब आपका एक कठिन काम है ये, लेकिन फिर भी आपके प्रयास रंग ला रहे हैं और स्वच्छता की ओर अग्रसर लोग हो रहे हैं। आखिरी में सर मेरा एक ही सवाल यही है कि आप अपनी ओर से गांव के निवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं मेरी तरफ से गांव के लोगों को यही कहना चाहता हूं, आज एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज हर व्यक्ति के पास में एक एंड्रॉइड मोबाइल होता है,
1: जी
0: और व्यक्ति सोते उठते जागते हर वक्त पहले अपने मोबाइल को टच करता है,
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को एक मोबाइल की मतलब 24 घंटे आदत सी हो गई है। तो
1: बिल्कुल
0: मैं ये चाहता हूँ मेरे गांव वासियों को और भारतवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि आपको जिस प्रकार एक मोबाइल की लत लगी हुई है, तो सेम वही उदाहरण मैं आपको आपके जीवन में स्वच्छता को लाने के लिए यही कहना चाहूंगा कि 24 घंटे आपके दिमाग में स्वच्छता होनी चाहिए, आपके व्यवहार में स्वच्छता होनी, आपके संस्कारों में स्वच्छता होनी चाहिए, सामुदायिक संस्थाओं में स्वच्छता होनी चाहिए। गांधी जी को जो सपना है स्वच्छता का, उसको हमें आगे ले जाना है। मैं हर व्यक्ति से यही अपील करता हूँ कि स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना

0: चाहिए और उसको मोबाइल की तरह आदत में लाने का प्रयास हर व्यक्ति को अपने आप में करना चाहिए, ये प्रण लेना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ।
1: बहुत सुंदर संदेश सर आपने दिया है और यकीन है मतलब ये संदेश आपका जन जन तक जाएगा। यकीन आज आपसे चर्चा करके सर बहुत ही अच्छा लगा आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गांव में स्वच्छता, शौचालय के उचित उपयोग, कचरा प्रबंधन और जन जागरूकता से जुड़े अपने अनुभव और सुझाव हमारे साथ साझा किए। आपके प्रयास निश्चित रूप से समुदाय को स्वच्छ, स्वस्थ और जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आपके अनुभवों से अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे और स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव के संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत।
0: धन्यवाद
1: जी सर जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो दोस्तों ये थे हमारे बीच स्वच्छताग्राही थॉमस जी भूरिया और इनके अनुभव को हमने आज जाना स्वच्छता को लेकर। यकीनन स्वच्छता जीवन में बहुत जरूरी है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को स्वच्छता की प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो टेंटे भी 90.8 FM झावा की आवाज पर।
2: स्वच्छता चैंपियन सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। वो स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं। स्वच्छता चैंपियन बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
3: मुझे ऐसा लगता है कि सुजल की स्वच्छता एक सोच है और ये सोच हर मन में विकसित हो सकती है। हम बच्चों को जब सिखाते हैं कि यहाँ पर कागज मत फेंको या यहाँ पर केले का छिलका मत फेंको, डस्टबिन में डालकर आओ, इस समय से ही बच्चों के मन में यह सोच विकसित होनी शुरू हो जाती है।
2: सही कह रही हो स्वच्छिका। जब मैं छोटा था ना, गांव के स्कूल में जाता था, तो वहां पर हमारे गुरुजी हमको स्वच्छता की बहुत छोटी छोटी बातें इसी तरह सिखाते थे और बाल मन में पड़े हुए प्रभाव के बाद आज भी मैं कहीं गंदगी देखता हूँ ना तो उसको साफ करने की कोशिश करने लगता हूँ।
3: तो क्या तुम गांव के स्कूल में ही पढ़े हो?
2: हाँ, मेरी सारी शुरुआती शिक्षा गांव में तो हुई और इसीलिए मैं एक स्वच्छता चैंपियन की तरह काम करता हूँ। स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई बनाए रखने में लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
3: हाँ सुजल, ठीक बोले। और आजकल तो गाँव में कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
2: अच्छा सोचिका, ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव क्या चीज है?
3: ये लो, सारी रामायण खत्म हो गई और अब तुम पूछ रहे हो कि राम का किरदार कौन है।
2: अरे बस पहली ही बुझाओगी या कुछ बताओगी भी कि ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव क्या है?
3: अरे भाई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि स्थानीय समुदाय द्वारा एक ऐसा प्रयास है जिसमें गांव के लोग खुद योजना बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, श्रम करते हैं और खुद ही निगरानी भी करते हैं।
2: ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हमारा समुदाय ही खुद आगे बढ़कर गंदगी को मिटाने लगता है?
3: हाँ भाई हाँ। अभी तक क्या मैं विदेशी भाषा में बोल रही थी? और इसमें हमारी सरकार समुदाय की मदद भी करती है। इसमें सरकार की भूमिका यहाँ सहायक की होती है, आदेश देने वालों की नहीं।
2: अच्छा, अब समझा। यानी कि तुम ये कह रही हो कि ये मॉडल सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी, इसी पर आधारित है।
3: ऐसे तो तुम बड़े इंटेलिजेंट बनते हो, लेकिन अब आई ना तुम्हें ठीक से अकल। अब तुम बिल्कुल ठीक समझे, इसमें सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी होती है।
2: लेकिन सोचिका, ये समुदाय आधारित पहले काम कैसे करती है? मतलब कुछ तो तरीका होगा ना?
3: ओहो, तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रह गए। देखो, ग्राम स्तर पर स्वच्छता समितियों का गठन किया जाता है और ये समितियां ग्राम पंचायत के अधीन कार्य करती हैं और उसमें महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में या युवा शिक्षकों के रूप में या अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।
2: अच्छा अच्छा, समझा, अब समझ गया। यानी कि तुम उसी समिति की बात कर रही हो जो गांव में शौचालय निर्माण की निगरानी करते हैं, ठीक है ना?
3: बिल्कुल ठीक पकड़े हो सुजल, अब जली है तुम्हारे दिमाग की बत्ती। ग्राम स्तर की स्वच्छता समिति शौचालय निर्माण की निगरानी, व्यवहार परिवर्तन, अभियान स्वच्छता निधि का उपयोग और ऑडियो सत्यापन की तैयारी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन करती है ये।
2: बस बस देवी जी, मैं समझ गया। तुमको बताऊं, वो किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में, वो भी ग्राम स्तर पर स्वच्छता समिति की सदस्य हैं।
3: हाँ हाँ, मैं समझ गई, तभी तो तुम्हें इतनी जानकारी है।
4: जिंदगी में हर चीज का विकल्प है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी, हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे। आखिरी बूंद।
2: अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में यानी कि एपिसोड नंबर 1 में हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन भेजने के लिए कहा था, और साथ ही कहा था कि अच्छे स्लोगनों को इनाम भी दिया जाएगा।
3: अरे तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
2: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका जी, और उनमें हमने 3 अच्छे स्लोगन छांट भी लिए हैं। उन श्रोता साथियों को अब हम इनाम भी देंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं उन श्रोता साथियों के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन्स। पुरुषोत्तम भाई लिखकर भेजते हैं, जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। भाई वाह, क्या स्लोगन दिया है। दूसरा स्लोगन है जिसे भेजा है सत्तार भाई ने, जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूं मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूं मैं। भाई वाह साहब, बहुत ही प्यारा लिखा। और लीजिए दोस्तों, तीसरा स्लोगन है जिसे लिखा है सुदर्शन भाई ने, जल है जीवन की धारा, हमें मिलकर है इसे बचाना, बिन जल धरती बेजान, ये बात है सबको समझाना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर स्लोगन लिखा दोस्त।
3: वाह, ये तो बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हैं हमारे श्रोता साथियों ने। अब हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे हमारे केंद्र में आकर अपने इनाम लेकर जाएं। आप सभी को बधाई और धन्यवाद।
2: और अब इस अंक का सवाल लीजिए। आरओ का इस्तेमाल करना आज बहुत से क्षेत्रों में मजबूरी बन चुका है, अधिकांश घरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे बहुत सारा पानी बर्बाद भी होता है। दोस्तों, स्वच्छ पानी पीने के लिए आप आरओ का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप हमारे प्रश्न का जवाब दें कि आरओ से निकला हुआ पानी कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है।
3: श्रोता साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरओ के लिए 1 गिलास पानी के बदले 3 गिलास पानी बस यूं ही बहता रहता है। स्वच्छ पानी पीने की चाहत में हम बहुत सारे मिनरल्स को अलग करके इस यंत्र का उपयोग तो करते हैं, लेकिन व्यर्थ बहते पानी को रिसाइकिल नहीं करते और उसका पुनः इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि आरओ से निकले हुए व्यर्थ बहते हुए पानी का इस्तेमाल हम कहां कहां कर सकते हैं और कैसे।
2: चलिए दोस्तों, चलने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बता दें। और आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे, है ना? आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जबानी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की कि हम अपने शौचालय का रख रखाव और उसकी साफ सफाई कैसे करें, स्वच्छता जरूरी क्यों है, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक की हुई प्रगति की झलक।
3: और साथियों, अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
2: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कनेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
3: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए, अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर उसके प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए, स्वच्छ भारत यानी सुंदर भारत।
2: कार्यक्रम के अगले एपिसोड में दोस्तों हम फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो, रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। फिलहाल स्वच्छिका और सुजल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: આપણ હંગલા ભાઈઓ અને બહેનો નું નમસ્કાર, હું છે આરજે ભાવના અને તમુ હમલતા રહેજો ઝાબુઆ નો પહેલો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબુઆની આવાજ। સાથીઓ આવો હમલ્યો યો ભીલી લોકગીત, ગાયક કલાકાર માલિંગ કટારાની આવાજમાં आरजे भावनानी हाते।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों।

दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाल प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

दोस्तों, खुद की तुलना किसी और के साथ करना अब बंद कीजिए। आप सबसे बेहतर हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: वैज्ञानिक चाहे जितनी खोज कर लें, ये बात कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि लोग जब उदास हो जाते हैं तो व्हाट्सएप से अपना डिस्प्ले प्रोफाइल क्यों हटा लेते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हार यानी कि पराजय वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, तो इसलिए हार से घबराएं।

तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जी हां, जैकी श्रॉफ जी का जन्म बॉम्बे में ही, जो कि आज की डेट में मुंबई है, हुआ था। इनका जन्म 1 फरवरी 1957 को हुआ था। लीजिए, पेशा खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। जैकी श्रॉफ जी ने 11वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बस फिल्मों में आने की कोशिश में लग गए, और उसके बाद इतनी ढेर सारी फिल्में इन्होंने की कि बस मजा आ गया। इनकी शानदार पर्सनालिटी, इनके बोलने का अंदाज हम सभी को हमेशा याद रहता है। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

जैकी श्रॉफ जी ने कुछ टेलीविजन शोज भी किए, जैसे लहरें, चित्रहार एंड मिसिंग। वहां भी इन्होंने अपनी कलाकारी की छाप छोड़ी। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। भाई साहब, आपको पता है गूगल का जन्म कैसे हुआ? एक बार रजनीकांत सुबह सुबह उठे, उन्हें ख्याल आया कि अगर उनकी नॉलेज का 1% हिस्सा भी दुनिया को मिल जाए तो उनका भला हो जाएगा। बस गूगल का जन्म हो गया।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? आज के कलाकार प्रोग्राम के कलाकार जैकी श्रॉफ जी का ये गीत

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए सुनते हैं जैकी श्रॉफ जी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: कुछ तो सुना करो, कुछ तो कहा करो, कुछ तो सुना करो, कुछ तो कहा करो, पीने के बाद होश में साकी रहा करो। यूं ही नहीं मयसर होती ये नेमतें, यूं ही नहीं मयसर होती ये नेमतें, थोड़ा तकल्लुफ आप भी साकी किया करो। नजरों से पिला रहे हो भर भर के जाम तुम, नजरों से पिला रहे हो भर भर के जाम तुम, ऐ दिलरुबा इस चश्क में खुद भी बहा करो। नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत खुशामदीद। 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो तांतिया भील के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त हाथी रॉय। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में, हमारे प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में आज एक बेहद खास और बाकमाल शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। अंबाला के एक छोटे से गांव अधोमाजरा की मिट्टी में पले बड़े 30 सालों तक भारतीय सेना में देश की खिदमत करने वाले रिटायर्ड सूबेदार और एक बेहद संवेदनशील शायर और गीतकार लाभ सिंह जी। लाभ जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है आपका। आदाब, आइए।
2: जी नमस्कार जी। जी नमस्कार आरती जी। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने आपके SN रेडियो के प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपने मनोभावों और लेखन के एहसासों को प्रकट करने का मौका दिया।
1: बहुत बहुत खुश आमदेद आपकी लाभ जी। आप बताइए हमारे दोस्तों को कि अंबाला के छोटे से गांव अधोमाजरा में एक किसान परिवार से शुरू हुआ आपका ये सफर वाकई बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायक है। हमारे दोस्तों को अपने बचपन, गांव की मिट्टी और अपनी शुरुआती पढ़ाई की उन खास यादों के बारे में बताइए जरा।
2: जी, मेरा गांव अधोमाजरा है परंतु अब मैं अंबाला शहर में रहता हूँ।
1: जी,
2: आपने अपने बचपन की यादों की बात की तो मैं बताना चाहूंगा कि जमाना गुजर गया है, आज से 50 वर्ष पहले की बातें हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: मेरा बचपन बड़ा ही साधारण था, बड़ा परिवार, सीमित संसाधन, गांव की खुली हवा, खुले आंगन, कच्ची गलियां और बेफिक्र जिंदगी।
1: जी,
2: मिट्टी से लगाव की बात करें तो मिट्टी से लगाव होना स्वाभाविक है। आज भी मैं जब गांव में जाता हूं तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य उभरने लगते हैं जहां हम पेड़ों के नीचे खेला करते थे।
1: वाह।
2: खुले आंगनों में लुका छिपी के खेल खेला करते थे। खेलते समय जब कभी चोट लग जाती थी तो कई कई दिनों तक घर वालों को पता ही नहीं चलता था।
1: जी,
2: परंतु वह सब अब नहीं रहे। पेड़ कट चुके हैं, खुले आंगन दीवारों ने घेर लिए हैं और उन पर बड़े बड़े मकान खड़े हो गए हैं।
1: बहुत बहुत
2: आज सब कुछ बदल चुका है, बस ये सब यादों में ही रह गया है।
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: मैंने बीए तक की पढ़ाई की है। शुरुआती दौर की बात करूं तो वह दुनिया कुछ अलग लगती है आज के दौर से। हमारे समय में तो बस स्कूल में एक ही अध्यापक हुआ करते थे पांचवी कक्षा तक
1: जी,
2: और हमारा काम होता था स्कूल जाना आना, खेलने चला जाना, शाम को खेल कर आना, खाना खाकर सो जाना
1: जी,
2: और सुबह उठकर तैयार होकर फिर स्कूल चले जाना।
1: बिल्कुल।
2: होमवर्क जैसा कोई झंझट था ही नहीं, जो काम मिलता था वह सब स्कूल में पूरा कर लिया करते थे, बाकी मस्ती होती। जबकि आजकल तो बच्चे LKG UKG से ही ट्यूशनों और टेंशनों से घिर जाते हैं।
1: बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो ये बताइए कि अब आप हमें अपनी शायरी सुनाइए। अब
2: जी, इकरार की इच्छा होती है, इनकार की इच्छा होती है। इकरार की इच्छा होती है, इनकार की इच्छा होती है, बस कभी कभी यूं ही तेरे दीदार की इच्छा होती है। बस कभी कभी यूं ही तेरे दीदार की इच्छा होती है।
1: बात खूब।
2: हमको भी

0: था विश्वास कभी जीवन भर साथ निभाएंगे, किसने सोचा था एक दिन दो नदिया के तट बन जाएंगे। तू कहाँ और मैं कहाँ खड़ा,
1: वाह,
0: तू कहाँ और मैं कहाँ खड़ा, मझधार की इच्छा होती है बस कभी कभी यूं ही तेरे दीदार की इच्छा होती है, बस कभी कभी यूं ही तेरे दीदार की इच्छा होती है।
1: वाह वाह ला के सुभान अल्लाह, बेफिक्र बचपन की यादों से लेकर आपकी इस कविता इकरार की इच्छा होती है, इनकार की इच्छा होती है में दिल की कशिश और तड़प कितनी खूबसूरती से झलक रही है। ये आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो लाभ जी, अब आप ये बताइए कि 1988 में आप फौज में शामिल हुए जैसा कि आपने बताया, और 30 साल देश की आपने खिदमत की। इतने कड़े अनुशासन के बीच आपके भीतर के शायर ने इन हसीन जज्बातों को कैसे सहेजा?
0: जी, अनुशासन भारतीय सेना में सर्वोपरि है।
1: जी,
0: यह जिंदगी को सही दिशा देने में मदद करता है। मैं आज भी अपनी दिनचर्या में अनुशासित हूँ। जल्दी उठना, फ्रेश होकर घूमने चले जाना, आकर अपनी दिनचर्या में मगन हो जाना,
1: जी
0: आज भी वैसा ही है। सेना में सेवा के दौरान बहुत जगह घूमने का मौका मिला और अलग अलग समय में ड्यूटी करने का मौका मिला।
1: जी,
0: उस दौरान हर समय मेरी जेब में पेन और पेपर होता था। रात के एकांत समय में अपनी कविताएं और गीत गुनगुनाया करता था।
1: अच्छा।
0: और कोई नया विचार आता था तो उसको लिख लिया करती थी।
1: जी,
0: यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा और आज भी वैसे ही चल रहा है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो फिर सुनाइए वो सिलसिले से अब कौन सी कविता सुनाएंगे आप?
0: जी, अटक रही है आज किसी के इंतजार में ये सांसें, अटक रही है आज किसी के इंतजार में ये सांसें, एक रात की मोहलत दे दो, जी भर कर कर लूं बातें, जी भर कर कर लूं बातें।
1: बहुत खूब।
0: नहीं चाहिए मुझको दौलत, ना ही तख्त ताज मुझे, नहीं चाहिए मुझको दौलत, ना ही तख्त ताज मुझे, आज बिछड़ जाने से पहले मिलवा दो हमराज मुझे। नहीं चाहिए हीरे मोती, नहीं चाहिए हीरे मोती, रतन मणि की सौ बातें, एक रात की मोहलत दे दो, जी भर कर कर लूं बातें, जी भर कर कर लूं बातें। अटक रही है आज किसी के इंतजार में ये सांसें, एक रात की मोहलत दे दो, जी भर कर कर लूं बातें, जी भर कर कर लूं बातें।
1: वाह, वर्दी के नीचे छुपा हुआ एक संवेदनशील शायर और रात के सन्नाटे में लिखी अटक रही है आज किसी की इंतजार में ये सांसें, एक रात की मोहलत दे दो, जी भर कर कर लूं बातें। वाह, इतनी पुरअसर नज़्म दिल को छू गई लाभ जी। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं लाभ जी की पहली पसंदीदा गजल। तो ये कौन सी गजल है? ये है भूपेंद्र सिंह जी की सुरीली आवाज में इस प्रोग्राम में लाभ सिंह जी की पहली पसंदीदा गजल, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत गजल।

0: भूपेंद्र सिंह की इतनी खूबसूरत गजल सुनने के बाद नाथ जी, अब हमें आप ये बताइए कि आपने AFNC पुणे से पढ़ाई की और आर्मी डेंटल कोर में भी काम किया। मेडिकल साइंस की इस दुनिया में रहते हुए शायरी की ये तन्हाई आपके करीब कैसे आ गई?
1: जी, मैंने AFMC पुणे से डेंटल टेक्नीशियन की पढ़ाई की और 30 साल तक आर्मी डेंटल कोर में सेवाएं दी। सेना दंत चिकित्सा कोर बहुत ही कुशल प्रोफेशनल की कोर है
0: जी।
1: रही बात तन्हाई की, तो मैं ही तन्हाई के करीब चला गया, तन्हाई मेरे करीब नहीं जी।
0: बहुत खूब।
1: जैसा कि आप जानते हैं, सेना में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग एक साथ रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सबके शौक अलग अलग होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कोई मदिरा, कोई ताश खेलना, कोई फिल्म देखना, कोई एकांत में पढ़ाई करना, कोई अपने करीबियों से बातचीत करना, पत्र लिखना आदि। तो ऐसे में मैंने भी एकांत को चुना।
0: वाह, क्या बात है, बहुत खूब। मतलब ये सारी चीजों में से मदिरा, ताश, फिल्म और एकांत में पढ़ाई करना, इसमें से आपने एकांत यानी तन्हाई को चुना। बहुत खूबसूरत। तो फिर सुनाइए इस तन्हाई को बयां करती अपनी कोई चुनिंदा शायरी हमको।
1: जी, मुझे तन्हाई में छोड़ो, मुझे तन्हाई में छोड़ो, मैं सोना चाहता हूँ, किसी की याद में जी भर कर रोना चाहता हूँ।
0: वाह।
1: तो मेरे हो ना सके पल भर के लिए, वो मेरे हो ना सके पल भर के लिए, मैं नाउम्र उनका होना चाहता हूँ, ना वो मुमताज हैं ना शाहजहां किरदार मेरा।
0: वाह।
1: ना वो मुमताज हैं ना शाहजहां किरदार मेरा, ताज के ख्वाब में फिर भी संजोना चाहता हूँ।
0: वाह, बहुत खूब।
1: सभी इल्जाम मुझ पर आए और वो बच निकले, सभी इल्जाम मुझ पर आए और वो बच निकले, उन्हीं इल्जामों की लड़ियां पिरोना चाहता हूँ, किसी की याद में जी भर के रोना चाहता हूँ, किसी की याद में जी भर कर रोना चाहता हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत उम्दा शायरी। तन्हाई मेरे करीब नहीं आई, मैं तन्हाई के करीब चला गया। क्या गहरा और फलसफाना ख्याल है आपका लाभ जी, और आपकी ये शायरी तन्हाई के रंग को और गहरा कर देती है। ना वो मुमताज है ना शाहजहां किरदार मेरा, ताज के ख्वाब मैं फिर भी संजोना चाहता हूँ। बहुत खूब, बहुत उम्दा। तो लाभ जी, अब हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि 2018 में, जैसा कि आपने बताया, सूबेदार के ओहदे से आप रिटायर होने के बाद भी आपने 8 साल ECHS में काम किया। इतने लंबे और इतने व्यस्त सफर के बाद भी आपके लिखने का जज्बा वैसा ही ताजा है, इसका राज क्या है?
1: जी, मैंने सेना से रिटायर होने के बाद ECHS अंबाला में 8 साल तक काम किया।
0: वाह।
1: मेरे काम की व्यस्तता मेरे लिखने में कभी बाधा नहीं लगी।
0: जी,
1: लिखना मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है, इससे मेरी दिन भर की थकान कम हो जाती है। वैसे तो मुझे कोई व्यसन नहीं है, परंतु यह भी किसी व्यसन से कम नहीं है।
0: वेरी नाइस।
1: इसमें मेरी पत्नी हेमा शर्मा एवं परिवार का पूर्ण सहयोग है
0: जी।
1: वे मेरे एकांत में कभी भी खलल नहीं डालते, आज भी वैसे ही चल रहा है।
0: बहुत खूब। तो आपकी ये बात बड़ी मजेदार है कि वैसे तो मुझे कोई व्यसन नहीं है, यानी कोई व्यसन मतलब कोई आदत या कोई
1: लत।
0: हाँ जी,
1: कोई बुरी आदत नहीं।
0: हाँ, वैसे तो मुझे कोई व्यसन नहीं है, परंतु ये भी किसी व्यसन से कम नहीं है। कोई बुराई नहीं है, ये भी किसी बुराई से कम नहीं। ओके, तो इससे मिलती जुलती आप हमें कौन सी कविता सुनाएंगे आप?
1: जी, बस एक तेरी चाहत में जीना नहीं छोड़ा मैंने
0: जी,
1: बस एक तेरी चाहत में जीना नहीं छोड़ा मैंने, बेशक तेरे शहर में पूर्ण शराब बंदी है
0: जी,
1: बेशक तेरे शहर में पूर्ण शराब बंदी है, बदला देख तेरा के पीना नहीं छोड़ा मैंने बस एक तेरी चाहत में जीना नहीं छोड़ा मैंने।
0: वेरी नाइस, बहुत खूब।
1: हर चौखट पर दुआएं मांगी हैं तुझसे रूबरू हिजी की साकी
0: जी,
1: हर चौखट पर दुआएं मांगी हैं तुझसे रूबरू होने की साकी, काशी मथुरा मक्का मदीना नहीं छोड़ा मैंने, बस एक तेरी चाहत में जीना नहीं छोड़ा मैंने।
0: वाह।
1: बेशक तेरे शहर में पूर्ण शराब बंदी है, जज्बा देख मेरा के पीना नहीं छोड़ा मैंने, जज्बा देख मेरा के पीना नहीं छोड़ा मैंने।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। लिखने की इस दीवानगी और परिवार के खूबसूरत साथ ने आपके जज्बे को हमेशा जवान रखा है। कितना खूबसूरत लिखा है आपने, काशी मथुरा मक्का मदीना नहीं छोड़ा मैंने, हर चौखट पर दुआएं मांगी तुझसे रूबरू होने की साकी, मगर काशी मथुरा मक्का मदीना नहीं छोड़ा मैंने। बहुत खूब, क्या कमाल का शेर लिखा है। तो चलिए दोस्तों, अब लाभ सिंह जी की पसंद की दूसरी खूबसूरत गजल सुनते हैं और जरा गजल के बोल तो देखिए क्या गजल है ये, कि ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। क्या बात है लाभ सिंह जी, बहुत खूबसूरत गजल चुनी है आपने अपनी शायरी के साथ कॉम्प्लीमेंट करती हुई। तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये गजल।

0: पंकज उदास जी का ये सुरीला नगमा वाकई रूह को सुकून देता है दोस्तों। अच्छा राज जी, अब आप हमें ये बताइए कि आप हिंदी और उर्दू गजलों के साथ साथ पंजाबी लोकगीत भी बहुत खूबसूरती से लिखते हैं। जब दिल की बात कागज पर उतरती है तो कौन सा रंग सबसे गहरा होता है?
1: जी, मैं हिंदी गीत, कविताएं, देशभक्ति के गीत, गजलें, पंजाबी लोकगीत लिखता हूँ, परंतु मुझे दर्द, जुदाई, विरह और देशभक्ति लिखने में बहुत अच्छा लगता है।
0: जी,
1: मेरी कविताओं में, गीतों में, गजलों में विरह का रंग छाया रहता है।
0: जी,
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है, जबकि हकीकत में मेरा इस प्रकार के किसी भी दर्द से कोई ताल्लुक नहीं है।
0: बहुत खूब,
1: बस लगता है कि मैं किसी की पीड़ा कम कर रहा हूँ इसे लिखकर, इसलिए मुझे बहुत आनंद आता है।
0: वाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है। आप किसी की पीड़ा कम हो जाए इसलिए उस पीड़ा का बयां करते हैं, असल में जिंदगी में आपको कोई पीड़ा नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब आप अपनी कौन सी शायरी हमारे दोस्तों को सुनाना पसंद करेंगे?
1: जी, वो रात रात ना रही, वो बात बात ना रही। वो रात रात ना रही, वो बात बात ना रही। अब मुझ में भी मैं ना रहा, जब आप ना रही। महबूब तेरे हुस्न के जलवे बड़े हसीन हैं।
0: वाह,
1: महबूब तेरे हुस्न के जलवे बड़े हसीन हैं। अब लुट गया सब कुछ मेरा, कोई बात खास ना रही। हमने जलाई होलियां अरमानों की अपने यहाँ। हमने जलाई होलियां अरमानों की अपने यहाँ। जलकर हुई की खाक जो, वो खाक पास ना रही। आंधियों ने वक्त की वजूद खत्म कर दिया। आंधियों ने वक्त की वजूद खत्म कर दिया। जिल्लत मिली नींद के मेरी लाश लाश ना रही। अब मुझ में भी मैं ना रहा, जो आप ना रही। अब मुझ में भी मैं ना रहा, जो आप ना रही।
0: क्या ही बात है। आंधियों ने वक्त की वक्त का वजूद खत्म कर दिया। जिल्लत मिली इतनी कि मेरी लाश लाश ना रही। अब मुझ में मैं भी ना रहा, जो आप ना रहे। खुद बेदर्द होकर भी दूसरों के दर्द को अपनी शायरी में ढालना, ये एक बहुत संवेदनशील दिल ही ऐसा कर सकता है। आपकी ये नज़्म वो रात रात ना रही दिल के तारों को छेड़ जाती है, छू जाती है। तो इसके साथ ही लाप जी, अब आप हमें ये बताइए कि आपको, आपने बताया था मुझे कि आपको अपनी छत पर गार्डनिंग यानी बागवानी का भी बहुत शौक है। पेड़ पौधों और फूलों की सोहबत में वक्त गुजारते हुए शायरी के कौन से नए पहलू सामने आते हैं आपके?
1: जी, आज के दौर में गार्डनिंग के लिए शहरों में जगह ही कहाँ बची है।
0: बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल ठीक है।
1: मैं गांव से आकर शहर में बस गया। शहर में तो अगल बगल सब मकान हैं।
0: बिल्कुल,
1: छत के सिवाय कोई जगह नहीं है।
0: वो भी कभी मयस्सर नहीं होती कभी कभी तो वो भी मयस्सर नहीं होती
1: जी, अगर गार्डनिंग करनी है तो वही एक जगह मिलती है। जब मैं गार्डनिंग कर रहा होता हूँ तो सोचता हूँ कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ कितना अन्याय कर रहा है।
0: जी,
1: जंगल काटे जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है और एक खुले में रहने वाला इंसान, बड़े बड़े खेतों खलिहानों में रहने वाला, आज चंद गमलों में लगे चंद पौधों में वह सब कुछ ढूंढ रहा है जो वह गांव में छोड़ आया था।
0: वाह,
1: क्या होता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं।
0: वाकई बहुत, आपका, आपके जवाब में कितना दर्द है। तो सुनाइए फिर, इसी दर्द में आपने क्या लिखा है?
1: एक ही शौक पाला है तेरे दीदार का मैंने
0: जी,
1: एक ही शौक पाला है तेरे दीदार का मैंने, वरना जमाने में हसीनाओं की कमी तो नहीं। तेरे जलवों में मैंने कश्मकश को देखा है,
0: वाह,
1: तेरे जलवों में मैंने कश्मकश को देखा है, तू खुश भी है या कोई गमी तो नहीं।
0: वाह,
1: जिसे हर रात अब भी ख्वाबों में तराशते हो तुम, जिसे हर रात अब भी ख्वाबों में तराशते हो तुम, पूछो धड़कनों से अपनी वो शख्स हमी तो नहीं। तेरे जहन में चलती है न जाने कितनी साक्षी, तेरे जहन में चलती है न जाने कितनी साजिशें, भरोसा हो कैसे कि तू वही है या कोई बनी तो नहीं। तेरी यादों में, तेरी यादों ने लाप मुझको जकड़ रखा है,
0: वाह,
1: तेरी यादों ने लाप मुझको जकड़ रखा है, सभी को शक है मैं जिंदा भी हूँ या मम्मी को नहीं। जमाने भर में हसीनाओं की कमी तो नहीं, जमाने भर में हसीनाओं की कमी तो नहीं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जिसे हर रात अब भी ख्वाबों में तराशते हो तुम, पूछो धड़कनों से अपनी वो शख्स हमी तो नहीं। और फिर तेरे जहन में चलती है न जाने कितनी साजिशें, भरोसा हो कैसे कि तू वही है या कोई डमी तो नहीं। बहुत खूब लाभ की प्रकृति के प्रति आपका, आपकी ये फिक्र और गमलों में अपने गांव को ढूंढने की कसक वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। और आपकी कविता एक ही शौक पाला है तो मिजाज ही बदल देती है। बहुत खूब। तो दोस्तों आइए अब इसके बाद हम सुनते हैं उस्ताद गुलाम अली साहब की सुरीली गायकी में लाप सिंह जी की पसंद पर प्रोग्राम की ये तीसरी गजल। और इस गजल के बोल हैं, कल चौदहवीं की रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा। गुलाम अली साहब की आवाज में आपकी नजर।

0: तो दोस्तों, हम सब ने लाभ सिंह जी की पसंद की गुलाम अली साहब की ये सदाबहार गजल सुनी। लाभ जी, अब आप हमें ये बताइए कि आपकी बेटियां आज अपनी शिक्षा और करियर में बहुत ऊंचे मकाम पर हैं। एक पिता और एक संवेदनशील लेखक के रूप में आप इस सफर को कैसे देखते हैं?
1: जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: बड़ी बेटी ने BDS आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज सिकंदराबाद से किया है और MHRM IIT खड़गपुर से किया है।
0: अरे वाह।
1: छोटी बेटी ने BA LLB पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और LLM MIT यूनिवर्सिटी मोहाली से किया है।
0: बहुत खूब।
1: मुझे उन पर गर्व होता है। मैंने कभी बेटा बेटी में अंतर नहीं समझा।
0: बहुत खूब।
1: बेटियां हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना पूरा हो रहा है।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आपकी इतनी काबिल बेटियां हैं, इतनी पढ़ाई करने के बाद अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। आपने लगता है उनकी परवरिश दिलो जान से की है। बहुत खूब। तो लाभ सिंह जी, अब हमें बस सुनाइए अपनी एक और अच्छी सी कविता।
1: जी, खुशियां भूल गई घर मेरा। खुशियां भूल गई घर मेरा, गम भी अब कतराते हैं। आहट तक ना होती है अब जब वो आते जाते हैं, जब वो आते जाते हैं।
0: बहुत खूब।
1: एक झलक पानी को जिनकी चांद किया करता सिजदे। एक झलक पानी को जिनकी चांद किया करता सिजदे। अब चेहरा तो बात दूर की वो भी पीठ दिखाते हैं। आहट तक ना होती है अब जब वो आते जाते हैं, जब वो आते जाते हैं।
0: बात खूब।
1: फूल कली भंवरे बगिया में थे सब साथ बहारों में। फूल कली भंवरे बगिया में थे सब साथ पहाड़ों में। अब तो कांटे भी मुझको अपनाने में शर्माते हैं। आहट तक ना होती है अब जब वो आते जाते हैं, जब वो आते जाते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। अब आहट नहीं होती तो क्या उन्होंने अपने जूते का डिजाइन बदल लिया है? सही लगता है।
1: फर्क ही नहीं पड़ता आपकी।
0: मतलब वो उन्होंने अपने जूते का स्टाइल बदल लिया है। पहले बहुत आवाज होती थी, अब पता ही नहीं चलता। समहाउ बेटियों की सफलता पर एक पिता का ये फख्र देखना वाकई दिल को छू लेता है। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि इससे ज्यादा सुंदर मिसाल और क्या हो सकती है कि लोग सिर्फ नारेबाजी नहीं करते, असल में अपनी जिंदगी में भी उसको ढालते हैं उस बात को। तो बहुत खूबसूरत लाभ जी। अब आप हमें ये बताइए लाभ जी कि आप अपने

0: गाने दर्द भरे गानों और गजलों के गहरे शौकीन हैं, ठीक है। एक सैनिक, जिम्मेदार पिता और माली और शायर के रूप में आपने इस पूरे सफर को देखने के बाद आज हमारे सुनने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
1: जी, मुझे दर्द भरे गाने और गजलें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी को सुकून देती हैं ये।
0: जी,
1: मैं एकांत में इन्हें सुनना पसंद करता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: रही बात पैगाम की, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की हर चीज आपको कोई ना कोई पैगाम जरूर देना चाहती है।
0: जी,
1: यह निर्भर करता है कि लेने वाला क्या लेना चाहता है। जो आपका यह प्रोग्राम सुन रहे हैं वो बहुत ही शांति प्रिय और संजीदा किस्म के लोग होंगे।
0: बिल्कुल, 100%
1: मैं उनको क्या पैगाम दे सकता हूँ, फिर भी मैं आपके सुनने वालों को आपके प्रोग्राम के माध्यम से दरखास्त करना चाहूँगा
0: कि
1: अपने देश, समाज और परिवार के प्रति जिम्मेवारी समझें, प्रकृति और जीवों के प्रति प्रेम भाव रखें, बेटियों को बोझ न समझें, नशे से दूर रहें,
0: बिल्कुल
1: भाईचारा एवं सद्भाव बनाए रखें।
0: वाह, कितने दोस्तों, देखा आपने कितने पाकीजा ख्याल हैं, कितने उम्दा ख्याल हैं लाभ सिंह जी के। तो अब जाते जाते प्रोग्राम की आखिरी कविता भी सुनाइए हमें लाभ सिंह जी।
1: जी, पता नहीं दिल बावरा किस बात का बुरा मान गया। पता नहीं दिल बावरा किस बात का बुरा मान गया। मेरे बस से कुछ ना था हालात का बुरा मान गया। पता नहीं दिल बावरा किस बात का बुरा मान गया। चांद चांद करता था ये जब चांद मंगाया था हमने। चांद चांद करता था ये जब चांद मंगाया था हमने। लेकर आई चांद सबे बारात का बुरा मान गया। पता नहीं दिल बावरा किस बात का बुरा मान गया। इश्क मोहब्बत दुनिया की अनमोल नेमतों में से है।
0: बिल्कुल,
1: इश्क मोहब्बत दुनिया की अनमोल नेमतों में से है। मैं कर बैठा इश्क मेरी सौगात का बुरा मान गया। पता नहीं दिल बावरा किस बात का बुरा मान गया। पता नहीं दिल बावरा किस बात का बुरा मान गया।
0: कितना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप कहते हैं चांद चांद करता था ये जब चांद मंगाया था हमने। लेकर आई चांद शबे बारात का बुरा मान गया। पता नहीं दिल बावरा किस बात का बुरा मान गया। दिल ही तो है ना लाभ जी, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो लाभ जी, समाज के लिए आपने इतना खूबसूरत पैगाम दिया और अपनी अनमोल रचनाएं हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते हमारे दोस्तों को?
1: जी, इस रेडियो प्रोग्राम में बुलाने और मेरे एहसासों को शेयर करने के लिए रेडियो एसएम एंड रेडियो तांता भील और आरती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और अलविदा।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत नमस्कार। और हमें भी आपसे बात करके और आपकी इतनी प्यारी शायरी सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया प्रोग्राम में आने के लिए और समाज के लिए इतना खूबसूरत आपने पैगाम दिया और इतनी अच्छी आपने साझा की हमारे साथ अपनी गजलें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, लाभ सिंह जी की इस विदाई के साथ आइए अब सुनते हैं उनके दिल के बेहद करीब चौथी गजल, मरहूम जगजीत सिंह की मखमली आवाज में। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सिंह जी की पसंद पर जगजीत सिंह की यह खूबसूरत गजल आइए सब मिलकर सुनते हैं।

जगजीत सिंह जी की सदाबहार और अमर गजल के साथ आज का हमारा ये खास शो अल्फाज से एहसास तक अपनी मंजिल तक पहुंचता है। रिटायर्ड सूबेदार लाभ सिंह जी का फौजी अनुशासन, उनकी जमीन से जुड़ी यादें, बेटियों के लिए प्यार और उनकी मखमली शायरी, ये सब आज हमारे दिलों में लंबे समय तक रहेगा। चलते चलते लाभ सिंह जी की शख्सियत के नाम दो सतरे नजर करती हूँ। मुलायजा फरमाए, सरहदों पर जो मुस्तैद रहे वो मोम सा दिल भी रखते हैं, सरहदों पर जो मुस्तैद रहे वो मोम सा दिल भी रखते हैं, बंदूकों के साए में भी जो सुरों के दिए जलाते हैं। अल्फाज नहीं ये रूह की आवाज हुआ करती है, अल्फाज नहीं ये रूह की आवाज हुआ करती है, जो जमाने के दर्द को अपना बनाकर गुनगुनाते हैं। इस हसीन एहसास के साथ अब वक्त हो चला है कि मैं आपकी हमनफस, आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय आपसे रुख्सत ले लूं। कल ठीक इसी वक्त फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए एहसासों और नगमों के साथ। तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते भी रहिएगा और अपने देश और नेचर से, प्रकृति से प्यार भी करते रहिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, आदाब, फिर मिलेंगे।

0: तो दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते
2: से आरजे राकेश
3: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
2: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत से तमारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश अने रोजनी जेम तमारी वसमां आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थयो छे। अने किसान भाईओ, हूँ रोज तमारी वसमां खेतीवाड़ी देखा जोड़ायेला मुद्दा, खेतीवाड़ीनी समस्याओ अने तीना समाधाननी वातो लीने रोज इना समय पर हाजिर थतो रहूं छे। किसान भाईओ, आजना खेतीवाड़ी कार्यक्रममां आपू वातो हामलवाना छे बोकड़ा पालवानी वातो। किसान भाईओ, बोकड़ीने गरीबोनी गाय कहेशे અને પશુપાલનમાં બોકડી એક એવો પશુ છે તેઓ કમથી કમ સમયમાં અધિક મુનાફો આપણા કિસાન ભાઈઓને આલે છે। કિસાન ભાઈઓ, આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં વિસ્તૃત રૂપ દેખી બોકડા પાળવાની વાતો વતાડવા હારું આપણી હાથે સ્ટુડિયોમાં મોજૂદ થયા છે પશુ વિશેષજ્ઞ શ્રી ડોક્ટર KL ડામોર, અતિરિક્ત ઉપસંચાલક પશુપાલન અને ડેરી વિભાગ ઝાબવા મધ્યપ્રદેશ દેખી। तो सालो किसान भाइयों, हाँ वार नहीं करिए, शुरुआत करिए आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में बोकड़ा पालवानी वादियों ने।
4: पशु विशेषज्ञ जो कि डॉक्टर साहब KL डामोर साहब, जो कि अतिरिक्त उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला झाबुआ से हैं। तो सर जी नमस्कार।
5: नमस्कार।
4: सर जी ये बताइए कि बकरी पालन के लिए किसान भाइयों को आवाज कैसा रखना चाहिए?
5: अच्छी बात है, जैसे हमारा पशुपालन विभाग शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों तक सुविधाएं अधिक से अधिक लाभ देने के लिए तत्पर हैं। बकरी हमारे यहाँ किसान को गरीब की गाय कही गई है। बकरी
4: जी जी
5: किसानों के लिए
4: जी
5: बकरी को गरीब की गाय कहा गया है। अब स्वाभाविक है कि केवल हम गाय पालन या भैंस पालन करें, उसके साथ साथ में हम बकरी पालन भी करें
4: जी,
5: क्योंकि हमारे यहाँ झाबुआ जिले में एक तो खूब बड़े बड़े किसान नहीं, रकबा जमीन का छोटा है
4: जी,
5: तो कम संसाधन में अधिक से अधिक हम उसकी आय को बढ़ा सकें, ऐसा कोई प्रयोजन हो तो उसके लिए लाभदायक
4: जी जी।
5: तो बकरी के लिए कोई चारा पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है
4: जी जी,
5: है ना
4: जी सर,
5: घर में ही अपन रख सकते हैं
4: जी सर।
5: और बकरी के लिए खासकर हम लोग पालन करते हैं, बकरी पालना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे झाबुआ जिले के हर किसान के घर में बकरियां पाई जाती हैं
4: जी जी,
5: हर किसान हमारा बकरी पालता है, क्योंकि वो उसकी एक प्रकार से छोटी सी बैंक है वो, उसको जब आर्थिक कोई परेशानी होती है तो तुरंत बकरी पकड़ के ले जाता है और बेच के
4: हाट में बेच के अपना रोजगार अपना पैसा,
5: तात्कालिक व्यवस्था उसकी उसी से होती है
4: जी जी।
5: पर कुछ चीजें ऐसी है जिसमें जो हमारा पशुपालक बकरी पाल रहा है उसमें और बेहतर हो सकता है, उसको अधिक आमदनी हो सकती उसी में, कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत
4: जी जी।
5: उसके लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो मैंने देखा है जो बकरियों का रख रखाव है वो तो काफी अच्छे तरीके से लोग करते हैं, क्योंकि दूसरी जगह तो लोग बाहर बाड़ों में बांध देते हैं, एक तरफ रखते हैं, हमारे यहाँ तो किसान भले बाहर सोएगा और उसको घर के अंदर रखेगा,
4: बकरी को घर में रखे।
5: कुछ तो परिवेश हमारे यहाँ की स्थितियां भी ऐसी है कि रात में कोई चोरी चमारी भी हो जाती है, इससे सेफ्टी के उद्देश्य भी, सुरक्षा के उद्देश्य भी रखता है
4: जी जी,
5: इसलिए वो बढ़िया सूखी जगह में रखता है, मैंने देखा कच्ची जगह में भी रखता है। और दूसरा हमें ये पहलू एक दूसरा देखें तो वर्तमान में हमारे पास चरणों की भूमि का रकबा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, अतिक्रमण हो गया है सभी जमीनों पे
4: जी जी।
5: तो बड़े पशु चराने की जगह नहीं है, तो ये छोटे पशु क्या है, छोटे मोटे पेड़ पौधे के खा के पत्तियां खा के ये बकरियों का हम पालन कर सकते हैं
4: जी जी।
5: ये तो इसलिए ये हमारे लिए काफी उपयोगी है।
4: जी जी।
5: अब हमें किसान को एक चीज बताने की आवश्यकता है
4: जी,
5: कि जो पशुपालन में जो हम साथ साथ में जो बकरी पालन कर रहे हैं, तो हम जो देशी नस्ल की पशु कर रहे हैं या जो हमारी बकरी की नस्ल है वो कोई विशेष अच्छी नस्ल नहीं है।
4: हाँ, जो उत्पादन
5: स्थानीय है। तो अभी अब जो है फील्ड में भी हम देखते हैं कि कुछ क्रॉस बकरियां हुई है
4: जी जी।
5: जैसे आपको बताऊं मैं कि हमारी योजनाओं में हम सिरोही बकरे, जमुनापारी बकरे देते हैं
4: जी जी।
5: कुछ योजनाओं में सिरोही बकरियां भी दी है
4: जी जी।
5: अब धीरे धीरे इन नस्लों का क्रॉस हुआ है
4: जी सर।
5: तो जमुनापारी और सिरोही जो नस्लें हैं वो काफी बड़ी बड़ी बकरियां होती है
4: जी जी।
5: और एक बार में दो दो तीन तीन बच्चे देती है
4: जी।
5: दो तो देती ही
4: जी।
5: और दूध भी इतना अच्छा देती है कि वो उनके बच्चों का भी लालन पालन हो जाता है
4: जी।
5: और हमारे छोटे परिवार में उसके बच्चों के लिए या चाय के लिए दूध की व्यवस्था
4: भी हो जाती है।
5: और बकरी हमारी ऐसी है कि जब जैसे पकड़ो उसको पैर पकड़ के दूध निकाल
4: जी सर।
5: गाय बैल भैंस तो एक समय पे दूध देते हैं सुबह शाम
4: जी।
5: बकरियां ऐसी है हमारी की वो कभी भी दूध पकड़ा और दूध निकाल लिए। तो अब क्या होता है कि जैसे हम इससे अधिक से अधिक लाभ कैसे ले सकते हैं
4: जी सर।
5: तो एक तो इसमें कोई बड़ा ही लागत चारे पानी घुसे की नहीं
4: है। हाँ, ज्यादा काटी नहीं
5: है ना। दूसरा एक ये है कि हम जो हमारे घर में जो बकरियां हैं उसको अच्छी नस्ल की पाले
4: जी।
5: जमुनापारी सिरोही आदि नस्लें जो अच्छी है
4: जी।
5: उससे क्या होगा कि हमको आमदनी ज्यादा होगी और दूसरा दो दो बच्चे देगी।
4: हाँ, डबल आमदनी।
5: दूसरी बात यह है कि जैसे अभी हमारे यहाँ जागरूकता अब धीरे धीरे फैल रही है पशुपालन कि जैसे ही बकरे होते हैं बच्चे जो एक तो बकरा या बकरी होता है
4: हाँ।
5: तो बकरों को हमारे यहाँ चिमटा लगवाने की परंपरा कम है।
4: हाँ, हाँ, वाद्या
5: नहीं करते
4: जी जी।
5: क्योंकि उतनी समझदारी
4: जी जी।
5: जो समझदार है गोटरी फार्म चला रहे हैं वो तो कर ही लेते हैं,
4: उनको
5: तो कुछ कहने की जरूरत पड़ती
4: जी,
5: है
4: जी।
5: पर हमारा ये संदेश हम चाहते हैं हर बकरी पालक तक जाए
4: जी सर।
5: क्योंकि अगर वो उसको चिमटा लगवा लेगा वाजिया करवा देगा
4: जी
5: तो वो कम समय में अधिक से अधिक वजन कर लेगा,
4: कवर कर लेगा और उसका मूल्य
5: अगर हाँ अगर ज्यादा वजन अच्छा फेटी बकरा बना वजनदार तो उसको कीमत उसकी अच्छी मिलेगी।
4: अच्छी मिलेगी
5: तो उसको अधिक से अधिक लाभ होगा
4: जी।
5: दूसरा एक ये है कि जो बकरियों का रखरखाव के साथ साथ
4: जी जी
5: कुछ इनकी बीमारियां जो है
4: हाँ हाँ
5: इससे भी हमने देखा कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है
4: जी।
5: कई कई कई बार क्या होता है कि पूरे घर में बकरियां पूरे पूरा
4: एक साथ
5: हाँ खत्म हो जाती
4: जी जी।
5: तो उसमें मेन जो इनकी संक्रामक बीमारी है वो है हमारी पीपीआर

0: पीपीआर बीमारी नामक बीमारी है जिसमें दस्त भी लग जाते हैं, निमोनिया भी हो जाता है, आवाज भी बैठ जाती है, आंख में सूजन आ जाता है, ऐसे
1: लक्षण
0: दिखते हैं और खत्म हो जाते हैं।
1: जी जी।
0: तो ये पीपीआर नाम की जो बीमारी है
1: जी,
0: इसका टीका हमारे यहाँ पशुपालन विभाग की ओर से निःशुल्क रूप से किया जाता है।
1: जी जी।
0: और इसका टीका एक बार जीवन में लगा लिया दूसरी बार जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: जी जी।
0: तो
1: सर, ये टीका जो लगता है जो बकरियों में कौन सी आयु में लगता है सर?
0: ये तो हम 4-5 महीने के बाद सब में लगा
1: सकते हैं।
0: बाकी जीवन में एक ही बार लगवा लोगे
1: जी जी
0: तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
1: खतरनाक बीमारियों से एक साथ मरने वाली बीमारी जी जी।
0: और दूसरी हमारी चलती है वो अपना इंट्रोटॉक्सिमिया, जिसको आंत्र विषाक्त कहते हैं।
1: जी जी।
0: आंत्र शोथ
1: जी। हाँ। पेट में कृमि पाए जाते हैं।
0: हाँ, फेफड़ आंतों में सूजन आ जाती है तो दस्त लग जाते हैं।
1: जी जी।
0: हमारे यहाँ कहते हैं कि दस्त लग लग के
1: मर। हाँ, हाँ।
0: रात में शाम को दस्त लगे, शाम सुबह
1: में खत्म हो जाए।
0: जी जी। तो वो इंट्रोटॉक्सिमिया है, आंतों की विषाक्तता है।
1: जी जी।
0: उसमें दस्त लगते हैं तो उसमें एकदम मृत्युदर होती है।
1: जी जी।
0: तो उसके लिए भी हमारे यहाँ इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन आ गया है।
1: जी जी।
0: तो वो भी हर 6 महीने में लगता है।
1: 6 महीने में एक बार।
0: हाँ, तो वो भी हमारे जो बकरियां हैं उनको हम बिल्कुल अपने पास जो भी नजदीकी अस्पताल है वहां जाके संपर्क करके इस वैक्सीन को लगवा लें।
1: जी सर।
0: वैक्सीन बहुत बड़ी सुरक्षा है।
1: जी।
0: ये हमें बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम समझते हैं नहीं, और कभी जब ऐसी बीमारियां चलती है तो फिर हमारा बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो जाता
1: है। एक साथ मर जाते
0: जी। तो वैक्सीनेशन हमें बहुत जरूरी करवाना है। बाकी दूसरा जो सीजनली कुछ चीजें हैं, जैसे अभी बारिश में जैसे ये मुंह में होठों पे घाव हो जाते हैं,
1: पांव में भी हो जाता है।
0: हाँ, वो जिसको कंटीजियस एक्थाइमा कहते हैं।
1: जी जी।
0: तो इसमें क्या है, जैसे हमारा पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह से मुंह धो, एंटीसेप्टिक मलम आते हैं उनसे अपन लगाओ करो, तो वो
1: पका मुंह पका,
0: तो उसमें अपन जाके अस्पताल के पास जो भी नजदीक है वहां जाएंगे तो अपना इलाज बराबर हो जाएगा।
1: जी, जी।
0: अभी जैसे बरसात के समय में इसके साथ साथ में पैरों की सड़न हो जाती है।
1: जी जी।
0: गीले में चलती है, कीचड़ में बकरी, तो उसमें भी घाव वगैरह हो जाते हैं, कभी कभी वो जंतु वंतु रख जाते हैं, वो दिक्कत आ जाती है।
1: जी जी।
0: तो उसके लिए भी हम पोटेशियम परमैंगनेट से उसको पेट को धोके सूखी जगह में
1: लाल दवाई
0: के।
1: जी जी।
0: और जो भी अस्पताल में जाके एंटीसेप्टिक मलम वगैरह लेके उसका इलाज करवा लेंगे तो वो भी कवर हो जाए। वो संक्रामक नहीं
1: मतलब फैलने वाला नहीं।
0: जो कॉन्टेजियस संक्रामक बीमारियां ऐसी रहती जो एक के दूसरे से संपर्क से फैलती।
1: हाँ,
0: उनके टीके लगते हैं जो पीपीआर और इंट्रोटॉक्सिमिया। ये अपने जीवन काल में पशुओं को बहुत जरूरी है लगता।
1: जी जी।
0: अगर इससे हम बचा लेंगे तो हमारा कोई नुकसान आर्थिक नहीं होगा।
1: सर, बकरियों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए और उनको आहार कैसा देना चाहिए प्रतिदिन? जैसे
0: आहार के लिए ऐसा है, हमारे यहाँ क्या है, वैसे तो बकरियों को खूब बड़ा दाना पानी लगता नहीं है, पर जैसे हमारा कोई बकरी गाभिन है तो कम से कम हमारे यहाँ बकरियों का जो गर्भकाल होता है वो 5 महीने का
1: होता है।
0: 5 महीने 150 दिन का लगभग, 150 से 160 दिन ज्यादा 55 दिन। तो हाँ, कम से कम जो हमारा गाभिन पशु है उसको हम कम से कम 2 महीने पहले
1: चरने जाने से रोक लेना चाहिए।
0: हाँ, उसको अलग रख ले।
1: जी।
0: उसका बांधना बैठना उठना अलग करें और उसको दाना चालू कर दे 200-250 ग्राम
1: प्रतिदिन
0: के हिसाब।
1: जी।
0: तो वो जो हमारा उसका जो आने वाले बच्चों के लिए वो जो उसके उसका अडर बनेगा उसका दूध की वो जो तैयारी है उस हिसाब से उसका दूध का उत्पादन बढ़ेगा, उसके शरीर की आवश्यकता पूरी होगी।
1: जी जी।
0: तो बच्चे भी अच्छे बनेंगे उसके। तो वो जरूरी है अपने, उससे अपने को उत्पादन अच्छा मिलेगा।
1: जी सर।
0: और प्रोजनी जो आएगी बच्चे वो वजन भी अधिक समय में कम समय अधिक ग्रहण करेंगे।
1: जी जी।
0: तो आर्थिक लाभ भी हमको अच्छा होगा उससे।
1: तो सर जी, ये बताइए कि अगर हमारे किसान भाई पशुपालन विभाग से, अगर जिनके पास आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो ऐसे किसानों को, ऐसे हितग्राही को पशुपालन विभाग या सरकार से क्या क्या दिया जाता है सर?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका।
1: जी।
0: पशुपालन विभाग से हमारी बकरी की योजना लागू है जिसमें 10 बकरी देसी
1: जी
0: और एक बकरा उन्नत नस्ल का,
1: उन्नत नस्ल
0: तो 10 बकरी और एक बकरे की एक इकाई कही गई
1: जी जी,
0: और इसकी कीमत कम से कम पूरी इकाई लागत जो है वो 77,000 रुपए के लगभग
1: है।
0: तो इसमें हमारे आदिवासी और हरिजन जो किसान है उनके लिए 60% की सब्सिडी
1: अनुदान है,
0: अनुदान
1: जी जी,
0: करीब 45,000 के आसपास है
1: जी,
0: 77,000 के ऊपर जो भी बने उसका 60%,
1: हाँ,
0: और सामान्य वर्ग के लिए 50%।
1: तो सर जी बताइए कि उसमें हमारे किसान भाई के पास क्या क्या होना चाहिए या जमीन होना चाहिए क्या?
0: नहीं, इसके लिए कोई ज्यादा जमीन अमीन की जरूरत नहीं है, पर ये जो योजना है
1: जी
0: वो बैंक से संबंधित है
1: जी जी,
0: हमारी सब्सिडी के साथ साथ
1: बैंक
0: का लोन
1: लोन लोन देगी।
0: अब अगर हमारे हितग्राही का कोई कहीं से खाता वाता डिफॉल्टर हो,
1: हाँ,
0: कोई कर्ज बाकी हो,
1: हाँ,
0: तो ये हमें इसका लाभ लेने में दिक्कत
1: आएगी। हाँ।
0: इसीलिए हमारे बैंक का कोई लोन ना हो, हमारा बैंक का क्रेडिट अच्छा हो,
1: हाँ, ऐसा किसान उसका लाभ ले,
0: ऐसा किसान इसका बराबर लाभ ले सकता है। बिना बैंक के सेंक्शन किए इस योजना का लाभ उसको हम नहीं दे सकते।
1: सर बकरी पालन के अलावा भी हमारे यहाँ पे पशुओं पे जो दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए जैसे डेयरी पालन है या अन्य छोटे जो इकाई है ऐसी कोई दी जाती है?
0: हाँ, उसमें दी जाती है ना, 4 पशु, 5 पशु या 10 पशु, 2 इकाई है आचार विद्यासागर योजना
1: जी जी,
0: उसमें गाय पालन और भैंस पालन दोनों का है
1: जी जी।
0: गाय में अपन जर्सी HF भी पाल सकते हैं, गीर साहिवाल वगैरह देसी नस्ल की भी पाल सकते हैं
1: जी जी।
0: तो भैंसों में भैंसों का ही वो भी 5 और 10 की इकाई
1: जी जी,
0: तो अपन जो चाहे 5 पशु की इकाई के लिए उसमें 1 एकड़ जमीन की जरूरत है,
1: हाँ,
0: और 10 पशु के लिए 2 एकड़ जमीन,
1: 2 एकड़
0: और जो हितग्राही जिसके नाम से अपन योजना का लाभ लेना चाहे,
1: हाँ,
0: जमीन उसी के नाम की
1: होना चाहिए
0: और वही है वो बैंक से संबंधित है,
1: हाँ,
0: जब तक फिर उसका बैंक का व्यवहार अच्छा होगा,
1: हाँ,
0: तो बैंक उसको लोन कर देगी
1: जी जी।
0: इसमें आदिवासी हरिजन लोगों के लिए 2 लाख के लगभग है अधिकतम
1: जी जी,
0: और इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1.5 लाख
1: जी,
0: ये हमारी लिमिट है
1: जी।
0: और जब तक बैंक सेंक्शन नहीं देगी तब तक इसका लाभ किसी पशुपालक को नहीं मिल पाएगा।
1: सर जी बताइए कि जैसे हमारे किसान भाई अधिकतर लोन लेकर करते हैं या फिर किसानों के पास में घर पे भी देसी गाय और बैल भैंस होते हैं और बकरियां भी होती है, तो क्या सर इनका बीमा करवाने के लिए शासन के पास कोई इसकी योजना है?
0: शासन के पास बीमा की भी योजना है
1: जी जी।
0: क्योंकि आजकल हमारा पशु काफी महंगा हो गया
1: जी,
0: इसलिए शासन ने पशुधन बीमा योजना लागू करी है
1: जी जी,
0: जिसमें सब्सिडी 70% तक,
1: 70% तक
0: 1 साल का बीमा होता है
1: जी,
0: और 3 साल का बीमा होता
1: जी जी।
0: ये उसका प्रावधान है
1: जी,
0: और इसकी जो वो लगती है अपनी प्रीमियम
1: जो राशि
0: लगेगी, हाँ, बीमा राशि लगेगी
1: जी जी,
0: उसका
1: किसान भाई को
0: उसकी कीमत के अनुसार
1: जी जी
0: जो राशि बनेगी उसके केवल 70% उसकी राशि उसको देना है, बाकी 30% उसको खुद को देना है। मतलब ये है कि जैसे 100 रुपए की मान लो बीमा की किस्त बन रही है,
1: हाँ,
0: उसका प्रीमियम बन रहा है
1: जी जी,
0: तो 30 रुपए उसको देना है, 70 रुपए गवर्नमेंट मिलेगा,
1: 70 रुपए गवर्नमेंट देगी,
0: तो उसमें अपनी रिस्क कवर हो जाती
1: जी जी।
0: तो उसमें हम हमारे पशु को बीमित रखें,
1: हाँ,
0: उसमें 10 बकरियों की एक इकाई गिनी गई
1: जी जी,
0: तो हम 50 बकरी तक का बीमा कर सकते हैं
1: जी जी,
0: और पशु बढ़ा लेंगे तो केवल 5 लाख
1: जी जी।
0: तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है और ये भी सभी को पता होना चाहिए
1: जी जी,
0: क्योंकि समय निकल जाता है और मान लो जैसे हमारे पास 10 पशु है, 10 बकरियां है
1: जी जी,
0: अब मान लो कोई 2 बकरी भी मर गई तो हमारा बीमा उससे कवर हो जाता है, हमारी लागत भी वसूल हो जाती
1: जी जी,
0: तो जानकारी के अभाव में हम बीमे का भी लाभ नहीं ले पाते
1: हैं। तो सर जी हमारे यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि उनके पास 2 बैल तो होते ही हैं लेकिन उन 2 बैलों का भी बीमा नहीं करवाते हैं, तो सर जी बीमा करवाने की जो प्रक्रिया क्या है?
0: बीमा प्रक्रिया कोई ज्यादा जटिल नहीं है
1: जी जी,
0: आजकल सब क्या है ऑनलाइन ऐप के माध्यम से होता है
1: जी,
0: इनके बकरी वो बीमा के एजेंट रहते हैं,
1: हाँ,
0: उनके द्वारा नियुक्त होते हैं
1: जी,
0: जो प्राइवेट कंपनियां करती है
1: जी जी,
0: जो शासन से बीमे के लिए अनुबंध करते हैं साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी हो जैसा भी अनुबंध शासन से हो जाए
1: जी जी,
0: वो उनके एजेंट रखती है, और जो हमारे विकास खंड स्तर पर जो पशु चिकित्सक है
1: जी जी,
0: पशु चिकित्सा अधिकारी है
1: जी जी जी,
0: वो इनका बीमा करते हैं
1: जी सर,
0: या पशु चिकित्सालय जहाँ पर है वहाँ पे हमारे पशु चिकित्सक सर्जन की पोस्ट होती है,
1: हाँ,
0: वो बीमा करते हैं। और नहीं तो अपने विकास खंड में जाए सीधे
1: जी,
0: और वहाँ जो अपने चिकित्सक है उनसे बात करें,
1: हाँ,
0: तो अपना आधार कार्ड, नहीं ये आजकल आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट और अपने बैंक की पासबुक
1: जी,
0: ये चीजें लगती है। और उसमें एक अपना जैसे आदिवासी या जो भी हो अपनी कैटेगरी के लिए एक वो प्रमाण पत्र मिल जाए, उसमें क्या सब्सिडी कुछ अंतर रहता है
1: ईसाई जाति प्रमाण पत्र से?
0: हाँ, तो वो मिल जाए तो वो उसका लाभ हम ले सकते हैं। तो ये मेरा सभी से अपील है कि अपन सभी अपने पशुओं का अधिक से अधिक बीमा करवाएं और अपने नजदीकी जो भी अस्पताल है वहां जाके अपन संपर्क करें और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें।
1: जी जी। तो किसान भाइयों, अभी बकरी पालन एवं पशुपालन के संबंधित हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर के एल डामोर साहब, और डामोर साहब ने बहुत अच्छी पशुपालकों को हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। तो किसान भाइयों, ऐसी जो जानकारी जो आपको दी है, जरूर आप उनका जरूर फायदा उठाएंगे। और सर जी हमारे स्टूडियो में आए श्री डामोर साहब को और रेडियो पर सुनने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हूँ से आरजे राकेश
3: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
2: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। तो चलो किसान भाई यो हाव लेंगे एक नानो ब्रेक ने ब्रेक में आपू हामलवाना से आपड़ा आदिवासी भील समुदाय में जब लाड लाडिया पैणे आने तीन में जो गावे त्यू घणु मजानु आने असल गीत हामली ने पासा भेला था हूँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी में जाजू मधी कही था हामल तारे जो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM।

0: बढ़ी सके। अगर आप मक्की हाळी तो बीजा एवा नाना मोटा खरपतवार भी नीचा दबी जाए अने मरी जाए से अने त्या तिनथी किसान भाई ने काफी असल फायदो थाय से। तो लगभग 30 दिननी बाद मा होळ सलाड़ी ने मिट्टी सलाड़वानुं काम हळवानुं काम किसान भाई ने समय पर कर लेवुं जोईए। अगर इनथी मोटी अगर मक्की थाय जाए तो तीन मा डगरा सरके तीन कारण भी नुकसान काफी मक्की पड़ी जाए से। तीन हर किसान भाई ने ये ध्यान रखी जोईए कि हर काम समय पर करवुं जोईए। तीन थी भूमि मा वायु संचार भी असल थाय से अने वसेला जो खरपतवार से जो झाड़का से त्या जेड़ू सहित उखड़ी ने खत्म थाय जाए से। तो किसान साथियों कटाई अने मक्का नी उपज केतरी थाय तने केवी की किम तीना बारा मा आपू बात करी तो देखी जाए तो किसान भाइयों जेर मक्का ने ढाकवा वाला पायड़ा पीला पड़वा लागे अने दाणा मा 25-30% नी नमी अने मक्की नी कटाई करवी जोईए। दाणा मा 13-14% नमी रेवा पर शेलिंग करी जाए। तो किसान साथियों उचित भंडारण हारू नमी नो अंश लगभग 8-10% तक रहेवो जोईए। पौध संरक्षण तो किसान साथियों कीट अने नियंत्रण मक्कानी फसल मा सफेद लट व्हाइट ग्रप ने थूर छेदक इली मोइला चेम्पा एफिड्स भुट्टो ने डोडियो ने खावाली इलाल अने फड़का अने सेन्य कीट ज्यादा नुकसान पुगाड़े से। तो किसान साथियों बात करी जाए तो आपणे सफेद लट इना इलाळो पौधानी जीडियो ने खाई ने काफी नुकसान पुगाड़े से। तो इना नुकसान हारू सफेद लट ने द्वारा ग्रसित जो खेतर मां नियंत्रण हारू कटाई ना तुरंत बाद मां गहरी जुताई कर देवी जोईए अने ये काफी लाभदायक रहेशे। खेतर मां वगर हाड़ेलू गोबर ना खातर नो प्रयोग नी करवानो अने प्रति हेक्टर 25 किलोग्राम थीमेट नो खेतर मां खेतर तैयार करता वक्त इनमां भूरकाव करवो जोईए। तो किसान साथियों थोड़ छेदक इलाल जो तना छेदक इलाल ना नाम थी जानी से अने या मक्की एक जुवार या जुवार नो घणो ही विनाशकारी कीट से। इलाल इनी इलाळो सुरु मां कुळा कुळा पायड़ा ने खाई ने मई भराई जाए से अने तीना पौधा नी वसमानो भाग खाई ने तीना नो उकाड़ नाखे से। डेड हार्ट डोड हट्यो बनी जाए से डोड फूट्यो पौधो अने ग्रसित पौधा मां जो सबथी आगाड़ी पायड़ा ने खाई ने देखवा पर इनमा एक लेण हरकू हगड़ा सारा नाना नाना घारा करना कैसे। तो किसान साथियों इन्हें रोकधाम हारू इली नो प्रकोप करवा करवा हारू इनो रोकवा हारू प्रकोप ने अनुसंचित फसल चक्र अपनावो जोई। बुवाई नु शीघ्र सामान्यतः जुलाई ना पहला हफ्ता तक पूरु कर लेव जोई। कटाई नी बाद में फसल ना जो अवशेष ने भी राणा रहेशे तीना भी खत्म कर देवा जोई अने रासायनिक कीटनाशकों द्वारा नियंत्रण हारू पौधा नी नानी अवस्था में फोरेट 10G ना 3-4 दाणा पौधा नी जो भूंगली रहेशे तीनी मां नाखवानी अने पौधा नी मोटी अवस्था में एंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टर ना हिसाब थी इनो छिड़काव करवो पड़े से। तो किसान साथियों हाँ देखी जाए थे जो भुट्टा ने डोडियों खाओ वाली इलाड़े। तो किसान साथियों ये इलाल ना बारे में भी आपको बात करिए देखी जाए तो किसान साथियों इलाल भुट्टा ना दाना ने खाई ने नुकसान काफी ज्यादा पुगाड़े से। तीन थी फसल उत्पादन में भी कमी आवी जाए से अने तीन थी जो मक्की खाई तीन में हवाद में भी कमी आवी जाए से। तो किसान साथियों इन्हें रोकधाम हारू कार्बोरिल 10% डस्ट नो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर ना हिसाब थी भुरकाव करवो जोईए। तीन थी किसान भाई इनो नियंत्रण करी सके अने हाउ मोइला चेम्पा कीट। तो किसान साथियों या कीड़ा मांजरिया जेर नंगलो नकलता वक्त तीहनो रोस हुई ने फसली नो पर नुकसान काफी ज्यादा मात्रा में पुगाड़े से। तो इन्हें रोकधाम हारू किसान भाइयों इना नियंत्रण हारू डाइमिथोएड 30 EC नो 750 मिली या इमिडा क्लोरोपीट 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर ना हिसाब थी नंगल आवाना टाइम नी अवस्था पर इनो छिड़काव करवानो। तो किसान साथियों अगर हाव देखियो जाए तो फड़का अने सैन्य कीट तो फड़का अने सैन्य कीट की कम करे से नुकसान। तीनी बात देखी जाए तो फड़का अने सैन्य कीट नो भारी प्रकोप थावा पर मिथाइल पेरामिथाल मिथियान डस्ट 2% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर ने दर थी भुरकाव करवो जोईए अने इन तो इनो नियंत्रण थाई जैसे। तो किसान साथियों રોગનો નિયંત્રણ કરવો હોય તો મક્કાની ફસલમાં મુખ્યતઃ પાયડા ધબ્બા, તુલાસીતા, ડાઉની મિડિલ્યુ, મેડિસ અને ટર્સિસ્કમ, લીફ બ્લાઇટ, લીફ અને શીત બ્લાઇટ અને રસ્ટનો પ્રકોપ થાય છે. એના રોગની રોકથામ હારું રોગ સહનશીલ જાતિઓનો ચુણાવ કરવો જોઈએ અને ઓરવાતું પહેલું બીજને ફફૂંદનાશક દવાથી ઉપચારિત કરીને કિસાનભાઈને ઓરવું જોઈએ. ખડી ફસલમાં રોગનો પ્રકોપ થવા પર ડાયથેન ઝેડ 78 અને ડાયથેન 45 દવાનો 3 ગ્રામ પ્રતિ લીટરની દરથી એનો છિડકાવ કરવાથી આપો એનમાં કિસાનભાઈ આસાનીથી નિયંત્રણ કરી શકે છે. તો કિસાન ભાઈઓ, મકાની ફસલ હારું જો આપો દૂરી જો ઓરવાને જો કતારથી કતારની દૂરી અને પૌધાથી પૌધાની દૂરી અને પ્રતિ હેક્ટર કેટલા પૌધા રહેવા જોઈએ તેના બારામાં અગર દેખી જાય કિસાન ભાઈઓ, તો ખરીફ ફસલમાં વેગી પાકવાવાળી કિસ્મે હારું કતારથી કતારની દૂરી 60 સેન્ટીમીટર અને પૌધાથી પૌધાની દૂરી 20 સેન્ટીમીટર અને પ્રતિ હેક્ટર તક કિસાન ભાઈઓ 80,000 તક મકાના પૌધા આવી જાય છે એમાં. અને મધ્યમ અવધિમાં પાકવાવાળી કિસ્મી હારું જો કતારથી કતારની દૂરી 60 સેન્ટીમીટર અને પૌધાથી પૌધાની દૂરી 22 સેન્ટીમીટર અને પ્રતિ હેક્ટર તક 75,000 તક પૌધા એમાં આવી જાય છે. અને વારથી પાકવાવાળી જો કિસ્મીઓ છે મકાનીઓ તેની કતારથી કતારની દૂરી 75 સેન્ટીમીટર અને પૌધાથી પૌધાની દૂરી 20 સેન્ટીમીટર અને પ્રતિ હેક્ટર 65,000 તક પૌધા એમાં આવી જાય છે. અને આંતરવર્તીય ફસલ પદ્ધતિમાં કતારથી કતારની દૂરી 75 સેન્ટીમીટર અને પૌધાથી પૌધાની દૂરી 20 સેન્ટીમીટર અને પ્રતિ હેક્ટર તક એમાં બી 65,000 તક પૌધા આવી જાય છે. તો કિસાન સાથીઓ, રવિ અને જાયદ મોસમ હારું કતારથી કતારની દૂરી 60 સેન્ટીમીટર અને પૌધાથી પૌધાની દૂરી 20 સેન્ટીમીટર અને એમાં લગભગ 80,000 તક પૌધા પ્રતિ હેક્ટરમાં આવી જાય છે. તો કિસાન સાથીઓ, ખાતર અને ઉર્વરકની અનુસંચિત માત્રા આલવાની વિધિ, તો કમ્પોસ્ટ અને કેચવાને દ્વારા બનેલું ખાતર અને હાડેલા ગોબરના ખાતરને જો ભી ઉપલબ્ધ આફ્રિકન ઓહે તેનો ઉપયોગ કર્યો જઈ શકે છે. અને મક્કાની ફસલ પાણીની કમી અને પાણીના ભરાવ એના બે દશાઓમાં જ્યાદા સંવેદનશીલ રહેશે એના બે પરિસ્થિતિઓમાં હારું ખાતરનો પ્રયોગ એકમાત્ર હી ઉપાય છે. કિસાન સાથીઓ, ઓરવાના સમય પર કતારમાં આલવું જોઈએ, તેનથી ફસલને ખુદો લાભ નહીં થાય છે. તો તેને હારું એના તીને ખાતરને જો કે ખાતર ઉપલબ્ધ હોય તેઓનો 8-10 ટન માત્રા પ્રતિ હેક્ટરના હિસાબથી ઉપયોગ કરવાની જરૂરત પડે છે. અગર સંભવ નહીં હોય તો હરી ખાદનો ઉપયોગ ભી જરૂર કરવો જોઈએ. મક્કા ફસલમાં હરી ખાતરને રૂપમાં 1:1 કતારમાં ઢેંચા અને હો લગાડીને 35-55 દિનમાં 5-9 ટન તક હરી ખાદની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. તો કિસાન સાથીઓ, હોણ ઉગાડી અને તેના ભાંગવો પડે છે, તેના ખાતરના ઉપયોગમાં હરી ખાદના ઉપયોગમાં આવી જાય છે, જબકી મક્કા ફસલની પ્રાપ્તિ 100% થાય છે. તો કિસાન સાથીઓ, રાસાયણિક ખાતર મક્કામાં નાખવાની એક થોડી સી જાણકારી તમને બતાડવા જઈ રહ્યો છે. તો ખરીફ ફસલ હારું જો આપણા સુમાહાની ફસલ હારું, તો કિસાન સાથીઓ, વેગી પાકવાવાળી જાતિ હારું નત્રજનની જો માત્રા 90, ઇસ્પોરની માત્રા 40 અને પોટાશની માત્રા 30 અને મધ્યમ વસમાં જો અવધિ મધ્યમ અવધિમાં જેની પાકવાવાળી જાતિ હારું નત્રજનની માત્રા 120 કિલો અને સ્પોરની માત્રા 50 અને પોટાશની માત્રા 30 અને વારથી પાકવાવાળી મક્કાની જાતિઓ હારું 150 કિલો નત્રજન અને 80 કિલો સ્પોર અને 60 કિલો પોટાશની માત્રા રહેવી જોઈએ. અને આંતરવર્તી ફસલ પદ્ધતિમાં જો કતારથી કતારની કતારમાં જો ઓરીએ છે તેમાં નત્રજનની માત્રા 150 કિલો અને સ્પોર 80 કિલો અને પોટાશ 60 કિલો નાખવું જોઈએ. તો કિસાન સાથીઓ, જાયદ એક વાત તમને બતાડ દઉં કે રવિની બી તમને જાયદ હારું અગર કરવી હોય તો તેની બી માં જાણકારી કિસાન ભાઈને માલમ રહેવી જોઈએ. તો તેની હારું રવિની ફસલમાં 180 કિલો નત્રજન, સ્પોર 80 કિલો અને પોટાશની માત્રા 60 કિલો રહેવી જોઈએ.
1: જિંદગી મિલકે બિતાએંગે, ખાલે દિલ ગાકે સુનાએંગે.
2: ગીત સંગીત કી ઇસ મહેકતી હુઈ શામ મેં આપ સભી કા બહોત બહોત સ્વાગત હૈ. मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है, और हम फिर एक कलाकार के साथ, एक टैलेंट के साथ, एक सिंगर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इनका नाम है सतीश वाटवे जी। बाकी की बातचीत हम सतीश जी से ही करेंगे। तो सतीश जी, प्रोग्राम को शुरू करते हैं, तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आप कहां रहते हैं, उस जगह के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताइए।
3: बिल्कुल सर। सर मैं 1981 से महाराष्ट्र के पुणे शहर में रह रहा हूं। यह राज्य का दूसरा और देश का छठवां बड़ा शहर है। इस शहर में परंपरा और आधुनिकता का एक मिश्रण है। मतलब ऐतिहासिक काल में यहाँ पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य में यहाँ राज किया था, तो कई ऐसी ऐतिहासिक स्थल है जैसे कि शनवारवाड़ा, पर्वती, आगा खान पैलेस, ऐसे आप भी पुणे में देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ एक आईटी का बड़ा हब अभी पुणे आईटी का बड़ा हब करके उभर के आया है
2: जी।
3: तो उसको देश की आईटी की राजधानी माना जाता है सर।
2: वाओ।
3: देश के टोटल अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टूडेंट जितने भी देश में सीख रहे हैं, लगभग उसमें आधे से ज्यादा पुणे में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है, वहां से कई लोग जाके आगे फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है। और जब मैं पुणे में आया 1981 में, उसके हिसाब में अभी यह शहर इतना बड़ा हो चुका है कि करीबन आप समझो ये पुणे बंबई जैसे ही हो गया है।
2: ओह माय गॉड।
3: अभी ट्रैफिक और मॉडर्नाइजेशन बहुत हुआ है, तो पहले का पुणे था वो अभी नहीं, अभी बहुत मॉडर्न पुणे आपको देख। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये दोनों इधर आपको देखने को मिलेगा, ऐतिहासिक पुणे भी और आधुनिक पुणे भी।
2: बहुत खूब। मैं भी कुछ समय के लिए पुणे आया हूं, मैंने देखा है पुणे। अच्छा? और खास करके वहां का मौसम बहुत प्यारा है, ना गर्म है ना ठंडा है। मुझे याद है मैंने वहां पर जैकेट भी पहनी और टी शर्ट में भी घूमा हूं। सो इट्स ब्यूटिफुल। दोस्तों आपने सुना, सतीश जी पुणे में रहते हैं और पुणे से हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे कलाकारों ने शिरकत की है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सतीश भाई के ही गाए हुए इस बहुत ही खूबसूरत गीत से।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत। सतीश भाई आपको ले चलते हैं आपके बचपन में। तो आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: जी वैसे तो बचपन से ही मुझे संगीत, चित्रकारी, इंस्ट्रूमेंट बजाना, पेंटिंग, इन कलाओं से बहुत लगाव रहा है
0: जी।
1: उस वक्त ये सिंथेसाइजर वगैरह तो था नहीं, लेकिन मेरी माँ का हारमोनियम एक घर में था, तो आई यूज टू प्ले दैट हारमोनियम। पेटी बोलते हैं मराठी में उसको, पेटी
0: जी, जी,
1: बाजा
0: जी,
1: बाजा की पेटी
0: जी
1: बजाता था, लेकिन साथ साथ थोड़ा तकनीकी साइड में भी लगाव रहता था, इंटरेस्ट रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी एक टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे।
0: ओके।
1: जहाँ के हमारे पास करीबन 50 मशीन थे
0: जी।
1: और सुबह 7 से लेकर रात को 9 बजे तक क्लासेस चलते थे।
0: ओके।
1: साथ साथ वो उस जमाने के टाइपराइटर रिपेयर करने वालों में, दुरुस्त करने वालों में मेरे पिताजी बहुत माहिर थे। और वो रोड में देखता था कि दूर दूर से मशीन हमारे घर पे आती थी रिपेयर करने के लिए उस वक्त।
0: Okay.
1: क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर का जमाना तो था ही नहीं, सब टाइपराइटर पे निर्भर करता था।
0: राइट
1: तो उसको देख देख के मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि आगे अपन भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, चैलेंजिंग दिखता है कुछ, जिसमें लोग अपने लिए ढूंढ ढूंढ के आते हैं, ऐसा कुछ करना चाहिए। और भगवान की दया से दिमाग भी तेज था थोड़ा, और मेरी माँ बहुत सख्त थी पढ़ाई के बारे में, मतलब उसका ये हमेशा आग्रह था कि हम तीन उसके जो बच्चे थे हर साल पहले 3 नंबर में आना ही चाहिए, कुछ भी करो। बहुत सख्ती, बिल्कुल उसमें बिल्कुल ही छूट नहीं मिलती थी हमको।
0: ओके।
1: बिल्कुल एकदम सब छोड़ के हमारे पीछे लगती थी उस पढ़ाई के मामले में।
0: वेरी नाइस।
1: तो तेज भी था, तो आगे जाके मैंने इंजीनियरिंग पास किया, मैकेनिकल इंजीनियर बन गया मैं, और उसमें भी मुझे मेंटेनेंस में ज्यादा इंटरेस्ट था, जैसे मैंने कहा आपको कि रिपेयर्स में, ना कि सिर्फ मशीन ऑन ऑफ करना है। तो आगे जाके मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन के पुणे में एक बहुत बड़ी कंपनी थी उस वक्त ऑटोमोबाइल की, उसमें मैं मेंटेनेंस के तौर पे ज्वाइन हो गया, और आखिरी तक रिटायर होने तक मैंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ही काम किया। उसके दौरान मैंने सीएनसी, रोबोटिक्स, हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीजों का काफी ज्ञान प्राप्त किया।
0: वाह,
1: ये मेरा बचपन से ही, मैं इंजीनियर ही बनना चाहता था और इंजीनियर ही बन गया।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। इंजीनियरिंग में आपने जैसा सोचा था, आपने किसी को देखा होगा कहीं से, आप प्रभावित हुए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे, और उसके बाद आपने एक सपना बनाया इंजीनियर बनने का, और आप वो बने। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं सतीश भाई जो अपने बचपन के सपने को पूरा कर पाते हैं। आपको
1: सही बहुत, बहुत, बिल्कुल सही कहे,
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप वो बन पाए जो आपने सोचा था। बहुत खूबसूरत। तो चलिए दोस्तों, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं सतीश भाई की ही आवाज में।

के किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। किसी से

0: अमेजिंग, बहुत ही प्यारी गायकी, बहुत ही प्यारा गीत। अभी हम बचपन में ही हैं सतीश भाई, तो बचपन के बारे में एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में हमें बताइए।
1: बिल्कुल सर, वैसे बचपन की प्यारी यादें तो बहुत है
0: जी।
1: मतलब सच कहूं तो बचपन में माता पिता और भाई बहनों के साथ बिताया हुआ हर पल, झगड़े और उठना मनाना, छोटी छोटी चीजों के लिए बख्शीसी पाना,
0: जी
1: ये सब अपने आप में मीठी बातें हैं, मीठी यादें हैं। और जो सबसे कीमती है मेरे हिसाब से,
0: जी जी,
1: फिर भी एक याद है जो संगीत क्षेत्र से जुड़ी है जो मैं भूल नहीं सकता, वो मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगा।
0: जी जी जी, प्लीज प्लीज।
1: मेरी माँ ने शास्त्रीय संगीत में पूरे रागदारी के साथ सीखा था।
0: ओ।
1: और वो गायन कला में बहुत माहिर थी।
0: ओके।
1: साथ साथ अन्य कई कलाओं में भी वो माहिर थी। वो हमेशा हमें बहुत सी स्पर्धाओं में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करती थी। तो ऐसे ही स्कूल के टाइम में गायन स्पर्धा में मैंने हिस्सा लिया था उसके कहने पे, और उस वक्त मुझे पहला क्रमांक मिला था।
0: अरे वाह।
1: अभी आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है या कौन सी खास याद है, तो खास याद इसलिए है कि वो कोई फेमस गाना नहीं था सर।
0: जी,
1: मेरी माँ ने लिखी हुई एक कविता को उसी ने ही म्यूजिक दिया था, उसी ने ही चाल बनाई थी।
0: ओ।
1: वैसे कहो तो एक काव्य था। भगवान श्री कृष्ण जब उनकी बाल्यावस्था में गोकुल छोड़ के मथुरा जा रहे थे,
0: जी,
1: तो गोकुल में बहुत दुखी माहौल बना हुआ था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां से छोड़ के जा रहे थे। तो वो माहौल पे एक काव्य था, और उसने चाल भी खुद ही लगाई थी, संगीत भी उसने खुद ही बनाया था, और मेरे से वो अच्छे से करवा के लिया था। तो उसपे मुझे पहला प्राइज मिला, ये मेरे लिए सर सबसे बड़ी
0: बहुत बड़ी बात है,
1: पुरानी बहुत मीठी याद है।
0: बहुत बड़ी।
1: अभी माँ तो उस दुनिया में नहीं है
0: जी,
1: लेकिन उसके हारमोनियम के रूप में वो हमेशा मेरे साथ है, और उसका आशीर्वाद भी मेरे साथ है। उसका हारमोनियम मैंने मेरे पास संभाल के रखा है।
0: जी जी जी, बेहद खूबसूरत, बहुत ही भावुक, बहुत ही आंखों में पानी ला देने वाली याद। ऐसी यादें हम सभी के बचपन में होती हैं, और आपकी याद को सुनकर आज मुझे विश्वास है बहुत सारे हमारे सुनने वालों को अपने बचपन की इसी तरह की बातें याद आई होंगी। मेरा उद्देश्य भी यही होता है कि हम अपने बचपन को कभी कभी मिलने चले जाया करें, क्योंकि हमारा बचपन हमारे अंदर जिंदा है, वो हमें बुलाता है, प्यार मांगता है। तो चलिए ना, थोड़ी देर उसको मिल के आते हैं। बहुत खूब। तो दोस्तों, चलिए अपने बचपन से मिलने के बाद एक प्यारा सा गीत सुनते हैं सतीश भाई की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया सतीश भाई, चलिए चेंज करते हैं अपने मूड को और कुछ पेट पूजा करते हैं। आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है और क्यों?
1: सर, खाने के मामले में मैं बहुत नखरे वाला हूं, टू बी फ्रैंक। और इसलिए कहीं किसी ने खाने पे बुलाया तो मुझे इतना ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि मेरे खुद के नखरे बहुत है, मतलब उनकी कोई गलती नहीं, दैट्स माय मिस्टेक। लेकिन वो फिर ना बोलना भी मुश्किल होता है, हाँ बोलना भी मुश्किल हो जाता है।
0: अच्छा,
1: वैसे लेकिन मुझे साउथ इंडियन डिशेस ज्यादा पसंद है, पंजाबी डिशेस, महाराष्ट्रियन खाना अच्छा लगता है।
0: ओके,
1: लेकिन सब चीजें तेज अच्छी लगती है, फीकी फीकी चीजें, फीका खाना मुझे पसंद नहीं है, तीखा खाना, स्पाइसी खाना मुझे ज्यादा पसंद है।
0: अच्छा,
1: पसंदीदा खाना आप पूछेंगे तो लहसुन का लहसुनी मेथी दाल तड़का, और मेथी से बनाई हुई ऑलमोस्ट ऑल चीजें मुझे पसंद है।
0: ओके,
1: और मीठा भी उतना ही पसंद है जितना तीखा पसंद है
0: जी।
1: मीठे में गुलाब जाम, बासुंदी, ये मेरा पसंदीदा खाना है। लेकिन नॉनवेज अच्छा नहीं लगता, मैं कभी खाता नहीं, मैं पूरा वेजिटेरियन हूं।
0: ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने तो पूरा मेन्यू ही हमें बता दिया और बस अब पता नहीं मुझे
1: कब आऊंगा तो आप मैं कभी आऊंगा तो आपको मालूम होने के लिए बताया।
0: ओह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो अब रिकॉर्ड होकर ईथर में जा रहा है, हमेशा रहेगा। अब तो मैं रात भर तो पहले मेन्यू ही सजाता रहूंगा आज। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए दोस्तों, मुंह में पानी को लेकर, पानी में मुंह को लेकर, आई डोंट नो, पानी को मुंह में लेकर एक प्यारा सा गीत सुनते हैं सतीश भाई की आवाज में।

बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। अब देखो, ऐसा तो नहीं कह सकता सतीश भाई की बहुत ही टेस्टी गीत, क्योंकि गीत तो बहुत ही प्यारा ही होता है, टेस्टी तो आपके खाने थे, क्या बात है। तो आगे बढ़ते हुए सतीश भाई,

0: ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप तो गीतकार हैं, तो क्या कोई ऐसा गीत आप जानते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से बयान करता हो, डिस्क्राइब करता हो?
1: सर देखिए, हम तो आम इंसान है, आम आदमी है, तो गाने नॉर्मली जो लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं, गीतकार जो लिखते हैं, वो तो किसी फिल्मी सिचुएशन के ऊपर या किसी बड़े आदमी को आंखों के सामने देख कर लिखे जाते हैं
0: जी।
1: इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे लिए कोई गाना हमारे लिए परफेक्टली हमारे पर्सनालिटी के लिए सूट है। बट जो एक मुझे मालूम है कि मेरी पर्सनालिटी क्या है, मेरा नेचर क्या है, उसके हिसाब से अभी आप पूछ रहे, तो मुझे लगता है कि एक दो गाने मेरे पर्सनालिटी को सूट करते हैं
0: जी।
1: तो पहला तो मैं कहूंगा कि ये गाना कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ये गाना मेरी पर्सनालिटी को बहुत सूट करता है, ऐसा मुझे खुद को लगता है
0: जी।
1: क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ, यू कैन से ओवर सेंसिटिव। किसी का दर्द दुख देखकर मुझे बहुत दर्द होता है
0: जी,
1: और कभी कभी आंख से आंसू भी निकल आते हैं
0: जी।
1: और ये ऐसी चीजें मुझे बहुत तकलीफ देती है सर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं लेकिन करने की हमारी इच्छा होने के बावजूद कभी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जहां जहां कर सकते हैं तो ये बोलना नहीं चाहिए, टू बी फ्रेंक, क्योंकि ये बोलते हैं कि एक हाथ से किया हुआ दूसरे हाथ को समझना नहीं चाहिए,
0: बिल्कुल ठीक,
1: मतलब कुछ मतलब नहीं रहता कुछ करने का। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ उसका कारण मैं आपको एंड में बताऊंगा
0: जी।
1: मैं सिर्फ ये दर्द महसूस नहीं करता, जिस तरीके से जितनी भी बन सके मेरे से मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश भी करता हूँ सर
0: जी जी।
1: हालांकि मैंने पहले ही कहा ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, ये तो आम बात हो गई
0: जी,
1: लेकिन मैं इसलिए मैंने बोला कि मुझे इतना ही कहना है कि सिर्फ किसी का दर्द महसूस करने से उसका दर्द कम नहीं होता। अगर आपको सही में कुछ लगता है, कुछ करना है, तो उसकी सही में मदद भी करना चाहिए, उसको मदद की भी जरूरत होती है, सिर्फ महसूस करने से दर्द कम नहीं होता, इतना ही मुझे कहना था, इसलिए मैंने ये बात बताया, अदरवाइज ये बोलना नहीं चाहिए।
0: नहीं, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया साहब, सिर्फ महसूस करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा आगे बढ़कर जी।
1: दूसरा एक जस्ट एक एक, एक लाइन में बता देता हूँ, दूसरा एक गाना मुझे सूट करता है, अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साथी, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ।
0: अरे सतीश सर क्या बात कह दी, सभी लोग इस दुनिया में अकेले ही हैं, हम तो परिवार, दोस्त, यार, नातेदार,
1: बिल्कुल सही कहा,
0: ऐसा लगता है कि ठीक है हमारे साथ पूरा मेला है, लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई से सोचे तो अकेले ही हैं, आए भी अकेले ही थे और जाएंगे
1: इसी के लिए मुझे लगता है कि ये गाना मुझ पे परफेक्टली सूट है।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि आपने जो कहा ना वही वो गाने में सब लिखा है।
0: बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है, आपने तो भावुक कर दिया साहब। तो दोस्तों आपने सुना सतीश जी की जो इंटरप्रिटेशन है किसी गीत के बारे में, सतीश जी का जो बयान है किसी गीत के बारे में वो किस तरह से आता है, तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत सतीश भाई की ही आवाज में।

0: अमेजिंग अमेजिंग गीत सतीश भाई। आगे बढ़ते हुए आपसे एक मजेदार चीज पूछूंगा कि आपने अपने किसी अच्छे से मित्र के बारे में बताइए, अपने किसी अच्छे दोस्त के बारे में बताइए कि वो आपका सबसे अच्छा दोस्त क्यों है।
1: समीर जी, वैसे किसी के लिए भी दोस्त तो सभी खास ही होते हैं।
0: जी जी,
1: लेकिन उसी में भी आप जैसा बोल रहे कि ये जो थोड़ा ज्यादा नजदीक वाला ये दोस्त है, ये ऐसे जस्ट पहचान हुई, ऐसे टाइप तो रहते ही है।
0: जी जी,
1: तो मेरा जो खास दोस्त है उसे मैं तो कहूंगा कि दोस्त कहना गलत होगा
0: जी,
1: वो मेरे घर का एक सदस्य ही आप कह सकते हो
0: जी।
1: और उसकी खासियत ये है, वो क्यों खास लगता है मुझे कि दिल का एकदम साफ है। पहली बात,
0: जी
1: अंदर एक बाहर एक, दिखाने के लिए एक, अंदर से एक, ऐसा नहीं।
0: जी
1: दूसरी बात, एकदम सादगी से रहता है, एकदम सिंपल सा, ना कुछ ऐसा भपका विपका ऐसा कुछ नहीं।
0: जी
1: कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो शांत रहता है, टेंशन नहीं लेता, क्योंकि टेंशन लेने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, ऐसा उसका मानना है।
0: जी जी जी,
1: और शांत परिस्थिति में रहकर ठंडे दिमाग से सोच के उसका हल हम निकाल सकते हैं। हर एक की जरूरत पड़ने पर मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, बड़ों की इज्जत करता है, ऐसे कई गुण है। वो सच कहूं तो मेरा दोस्त कम है, मेरा भाई ही ज्यादा है।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत प्यारी बात। इस तरीके के दोस्त का होना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है कि कोई ऐसा दोस्त उसके पास हो जो उसके दिल को समझ सके। बहुत खूब दोस्तों, आपने सुना तो सतीश जी, ये अगला गीत जो हम सुनाने जा रहे हैं आपके इसी दोस्त को हम डेडिकेट करना चाहेंगे। आप कृपया उनका नाम अगर हमें बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा।
1: वो उसका नाम है प्रमोद व्यास।
0: ओके, तो प्रमोद जी अगर आप ये गीत प्रोग्राम सुन रहे हैं तो लीजिए सतीश भाई की फरमाइश पर ये गीत आपके लिए डेडिकेटेड है।

0: उसमें अपनापन ज्यादा लगता है, प्यार
1: बिल्कुल सही,
0: ज्यादा लगता है, इसलिए
1: बिल्कुल सही।
0: वो आप कह सकते हो मेरा एक निकनेम है, क्योंकि सत्या ये निकनेम बोल सकते हो।
1: जी जी
0: वैसे स्कूल में मैं मैथमेटिक्स में पहले से बहुत ही तेज रहा हूँ हमेशा,
1: जी
0: तो वहां मुझे रैंगलर करके एक निकनेम दिया गया था।
1: क्या बात है,
0: तो अभी भी कुछ कुछ दोस्त कभी कभी मेरे को रैंगलर करके बुलाते हैं, कभी
1: वाह,
0: कभी सत्या करके बुलाते हैं, दोनों अच्छा लगता है। सत्या ये ज्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि अपनापन ज्यादा महसूस होता है,
1: बस
0: अदरवाइज इसके अलावा मेरा कोई निकनेम नहीं है सर।
1: बहुत बढ़िया। अब ये सवाल पूछने का उद्देश्य भी मेरा यही था कि ऐसी ऐसा क्या नाम है, ऐसी कौन सी आवाज है जिसको सुनकर आपको बस मजा आ जाता है, और वो होता है निकनेम, जो कि बहुत
0: यस
1: मोहब्बत से, बहुत प्यार से किसी का रखा जाता है, दुलार में रखा जाता है, थोड़ा सा पैम्परिंग के हिसाब से इस निकनेम को रखा जाता है, दुलार करते हुए थोड़ा सा बिगाड़ने के हिसाब से, तो प्यार से बुलाया जाता है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे सभी सुनने वालों को कि अपने अपने निक नेम्स के बारे में एक बार सोचिए, कितने प्यार से वो रखे गए हैं। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत सतीश जी की आवाज में।

0: बहुत खूब। सतीश भाई, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और क्यों?
1: थोड़ा इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा।
0: अरे ओके,
1: क्योंकि मुझे तो सभी रंग वैसे अच्छे लगते हैं
0: जी,
1: क्योंकि आप यूं समझिए कि मैं रंगों की दुनिया में ही जीता हूं
0: जी। ओके,
1: अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं
0: जी,
1: तो मेरे कहने का मतलब ये है, यस, मैं एक अच्छा चित्रकार भी हूं। मैंने बहुत से चित्र, करीबन 200-250 चित्र बनाए हैं मैंने
0: जी,
1: और इसके बारे में मेरे नजदीकी दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब जानते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करते रहता हूँ
0: जी।
1: लेकिन फिर भी रंगों के बारे में आपने पूछा है तो मुझे पिंक, गुलाबी, मतलब पिंक कलर
0: जी,
1: ये तो अच्छा लगता है क्योंकि ये प्यार का प्रतीक है
0: जी।
1: सफेद रंग इसके लिए अच्छा लगता है कि ये पवित्रता और शांतता का प्रतीक है
0: जी।
1: लाल और केसरी रंग अच्छा लगता है क्योंकि ये सौभाग्य का प्रतीक है।
0: ओके,
1: और नीला रंग ये गहराई का प्रतीक है, इसलिए ये चार रंग मुझे थोड़े से ज्यादा अच्छे लगते हैं इसमें।
0: ऑलराइट, वेरी नाइस, बहुत खूब। आपने सभी रंगों की पसंदगी के बारे में हमें बताया और साथ साथ ये भी बताया कि वो रंग आपको भला क्यों पसंद है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बात। दोस्तों, हर रंग के डिस्क्रिप्शन का मतलब सतीश जी की भाषा में, सतीश जी के अंदाज में आज आपको समझ में आया होगा। वैसे भी हर रंग का अपना मतलब है हमारी जिंदगी में। प्रकृति ने चारों तरफ हमें ये रंग दिए हैं और कोई ना कोई मतलब उनका है। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत सतीश जी की आवाज में।

0: बहुत बहुत आभार आपका सतीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच
1: समीर जी। आपका, नितिन जी का, आपके चैनल का और मुझे इतना देर तक सहने वाले मेरे सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे आपने मौका दिया इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है सर। जय हिंद, जय भारत।
0: थैंक यू दोस्तों। अगर आप भी आज के कलाकार प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, नए टैलेंट्स के इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 9656517317। ये है 9656517317। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। मैं हमेशा ये मानता हूं, जो भी कलाकार, जो भी प्रतिभा, जो भी टैलेंट हमारे प्रोग्राम में आते हैं, वो अपने आप में बहुत प्रबुद्ध, बहुत एक्सपर्ट, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी सीखा होता है अपने पैशन से सीखा होता है। इसी तरीके के पैशनेट सिंगर, एक प्रतिभा, एक गायक हमारे साथ हैं। मैं शैलेंद्र कुरने जी का स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम में। बाकी मैं शैलेंद्र जी से ही प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे सभी सुनने वाले परिवार को बात करें, अपने बारे में आप ही बताएं कि आप कहाँ हैं, भला क्या करते हैं आप। शैलेंद्र जी,
1: थैंक यू सर। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र प्रकाश कुरने है, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी मेरी कोल्हापुर से ही हुई। मैंने MBA किया है और अभी फिलहाल मैं महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में असिस्टेंट एरिया मैनेजर, इस पोस्ट पे मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ एंड आई एम एंजॉइंग माई जॉब वेरी मच।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, जाहिर से बात है, शैलेंद्र जी ने, जो मुझे समझ में आया कि 25 साल पहले MBA किया, तो मैं मानता हूं और हम सभी मानेंगे, और देखा जाए तो आज की नई जनरेशन भी मानेगी कि उस जमाने की एजुकेशन बहुत बहुत हार्ड थी, बहुत मुश्किल थी और बहुत अच्छी थी। जितने भी हमारे सुनने वाले लोग हैं जिन्होंने उस जमाने में एजुकेशन ली होगी, वो सब इस बात से सहमति जरूर जरूर दिखाएंगे। बहुत खूब। चलो शैलेंद्र भाई, ये तो बात तो आपकी होगी कि आप कहाँ हैं, क्या आपने एजुकेशन की और क्या आपने क्या काम आप कर रहे हैं। थोड़ा सा बात, क्योंकि गीत संगीत की है, गानों की है, सॉन्ग्स की है, तो थोड़ा सा हमें अपने संगीत के बारे में भी बताइए कि किस तरह का संगीत आपको पसंद है। देखिए शैलेंद्र भाई, 99.99% लोग कहते हैं हमें तो संगीत पसंद है, फिर वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन फिर भी देखिए, किसी हम डिनर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, बफे में लगाए होती हैं बड़ी सारे व्यंजन, लेकिन उसमें से कोई एक व्यंजन होता है जो हमें बड़ा पसंद होता है।
1: बिल्कुल
0: उसी तरीके से संगीत में किस तरीके का संगीत आपको पसंद है। अगर मैं नाम लूं, क्लासिकल, भजन, गजल, फोक म्यूजिक कह लीजिए, या बॉलीवुड कह लीजिए सिंपल, या हॉलीवुड कह लीजिए या फिर महाराष्ट्र का जो म्यूजिक है या कर्नाटक म्यूजिक है
1: जी,
0: तो कौन सा म्यूजिक आपको सबसे ज्यादा पसंद है अपने?
1: जी, वैसे देखा जाए तो मुझे बॉलीवुड म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है
0: जी,
1: क्योंकि बॉलीवुड म्यूजिक में ये सभी मिक्स संगीत आता है उसमें, जो भी अभी हमने नाम लिए, क्लासिकल हो, फोक हो, वो सब उसी में ढल जाता है। तो बॉलीवुड संगीत में मुझे बहुत रुचि है, बचपन से ही मैं उसको सुनते आ रहा हूँ, सो डेफिनेटली माई चॉइस विल बी
0: बॉलीवुड म्यूजिक।
1: बॉलीवुड म्यूजिक,
0: बहुत खूब, अमेजिंग। जाहिर से बात है, इसी वजह से तो बॉलीवुड म्यूजिक पूरी दुनिया पर राज करता है। बहुत ज्यादातर जो लोग हैं, पॉपुलेशन है जो म्यूजिक पसंद करती है, उनको बॉलीवुड तो पसंद आता ही आता है। बहुत बढ़िया, तो चलिए दोस्तों फिर आइए सुन लेते हैं शैलेंद्र जी के ही गाए हुए ये गीत, जिससे हमें शैलेंद्र जी के म्यूजिक के और पास जाने को मिल जाएगा। पेश करता हूं

0: भारत एचडी भारत एचडी
1: आ गया ये वापस। पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता ये, जितना दूसरी एंट्री पर करता है।